लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं, एकता की डोर में सबको बांधता। पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को।

महामाया तेरी सदा ही जय हो। तूने भक्ति का दान देकर एक भक्त का जीवन सफल कर दिया है। इस नाचीज को अपने चरणों की शरण देकर उसका जीवन खास बना दिया है। अब ये भक्त ताउम्र तेरे चरणों में रहना चाहता है, सदैव उसकी सेवा को स्वीकार करते रहना। हे दातिये,

नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए सिर्फ, ज्यादा

0: थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

सुनहरी आवाज 107.8 एफएम वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब। यू नो, तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बींग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर। उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। नए बिलीफ सिस्टम्स के साथ आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि अब हमें समझ में आया कि बिलीफ सिस्टम्स भी, या जिन पर हमारा पूरा जीवन खड़ा है, वो कुछ मान्यताएं हम खुद तैयार कर सकते हैं, खुद क्रिएट कर सकते हैं। सबसे बड़ी मान्यता जो अब हम क्रिएट कर रहे हैं वो ये कि खुशी यानी कि हैप्पीनेस मेरी अपनी क्रिएशन है। किसी भी स्थिति में, किसी भी समय मैं चाहूं खुश रह सकती हूं। अमेजिंग, व्हाट अ पावरफुल थॉट एंड व्हाट अ पावरफुल एक्सपीरियंस। आई थिंक आप सब अब उसे अनुभव कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि अब पिछली कड़ी से जो हमने बात करनी शुरू की है, सॉल्यूशंस पर आए। ये तो एक नया हमने बिलीफ सिस्टम किया कि मैं खुद अपनी खुशी क्रिएट कर रहा हूं। अब बाकी जो बिलीफ सिस्टम्स हैं उन पर काम कैसे करना है और कैसे नए बिलीफ सिस्टम्स को बनाते जाना है, और इसमें हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अमेजिंग, यू नो द वे नाउ लाइफ लुक्स। मतलब अभी तक पूरी तरह से डिपेंडेबिलिटी थी कि जो जो हो रहा है उसके आगे हम हताश थे, हमारे सामने कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक स्पार्क शुरू हुआ है, एक यू नो एक्साइटमेंट आई है कि यस नाउ आई कैन क्रिएट माय ओन लाइफ। सो थैंक यू सो मच। और ज्ञान की जहां हम बात करते हैं तो एक डेप्थ में जाकर हम समझ पा रहे हैं चीजों को। थोड़ा सा रिकैप लेते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे बिलीफ सिस्टम नए जो हैं उन्हें क्रिएट नहीं करने देते, क्या कुछ मुझे करना है।
1: हमने ये देखा कि जो हमारा स्ट्रेस है, टेंशन है, जिसको आज दिन तक हम समझते कि बाहर से आ रहा है, ये हमारी अपनी क्रिएशन है। अब वो तो समझ में आ गया, लेकिन अब अपना ध्यान कैसे रखें, यू नो क्या है creation, but then it's getting created. So what do I do that it doesn't get created? So the first thing that we saw is to practice being quiet. Andar jo ye sara din bahut shor chalta hai sankalpon ka, isko attention rakh ke धीरे करना है। और उसके लिए अगर अंदर नहीं हो रहा है तुरंत से, तो पहले यहां से शुरू करें। और हमने देखा कि अगर हम अभ्यास करें कि कम बोले, मीठा बोले, धीरे बोले, और कभी कभी मौन भी रखें। दूसरा हमने देखा कि बहुत सारी बातें हैं जो हमने पकड़ कर रखी हुई हैं। इट इज सिचुएशंस जो हुई, लोगों ने कुछ कहा, या मेरी अपनी अटैचमेंट्स, मेरे अपने बिलीफ, मेरे साथ गलत हुआ, आई एम द विक्टिम, यू नो दिस काइंड ऑफ थॉट्स हमने पकड़ कर रखी हैं, और शायद पूरी जीवन उसको पकड़ कर रखेंगे। और पकड़ने से और किसी का नुकसान नहीं होता,
0: मेरा ही होता
1: जाना, मैं ही दर्द में रहते हूँ। स्पेशली दिस फीलिंग ऑफ यू नो आई एम द विक्टिम, मेरे साथ लोगों ने बुरा किया, क्योंकि मेजोरिटी आर फीलिंग लाइक दिस। तो वो पकड़ के रखना इज वेरी डैमेजिंग फॉर मी। तो एक सिंपल तरीका है कि साइलेंस में बैठे, उस बात को ले, बात के दर्द में ना चले जाएं फिर से, डोंट लिव थ्रू द होल एक्सपीरियंस ऑल ओवर अगेन, लेकिन एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर उस सीन को देखें, समझें कि दर्द हम क्रिएट कर रहे थे, एंड लेट गो नाउ। कई बार कई भाई बहने कहते इतना इजी नहीं है, आई कैन नॉट लेट इट गो लाइक दिस। आप एक बार करो, दो बार करो, दस बार करो, फाइनली तो वो चला ही जाएगा।
0: लेकिन हो ये रहा है कि बार बार वही सिचुएशन भी आ जाती है फिर से।
1: वो सिचुएशन तब तक फिर से आएगी जब तक कि मैंने वो बात अंदर पकड़ी हुई है। यू सी वी सॉ पहले भी कि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो फिर से प्रेजेंट में क्यों क्रिएट होते, क्योंकि हम थॉट्स वही वाली फिर से क्रिएट करते, तो हम वही एनर्जी ट्रांसमिट करते, वही फिर मेरे साथ हो जाता है। एंड सपोज वो सिचुएशन कुछ और है जो बाहर से आ रही है, लेकिन अगर मैंने लेट गो किया है अपने हर्ट को, तो अब क्या होगा, भले वही वाली सिचुएशन आ सकती
0: है,
1: अब हर्ट नहीं होंगे। सी फॉर मी व्हाट इज द सिचुएशन, फॉर मी द सिचुएशन इज द रिस्पॉन्स दैट आई क्रिएट टू द सिचुएशन। सपोज आप यहां बैठकर कुछ बड़ा बुरा भला ऐसे कह रहे हैं, मुझ पर इफेक्ट क्यों हो रहा है,
0: मैं क्रिएटिंग
1: हर्ट। लेकिन जिस दिन वो मुझ पर इफेक्ट होना बंद हो गया, उस दिन मेरे लिए वो कोई सिचुएशन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट समवन सिटिंग देयर एंड saying what they feel like saying.
0: Is it like I switch off actually under se?
1: It's not I switch off, I change my perspective. Switch off agar hum kahenge to then I say ki maine jaise ki
0: apne aap block kar liya,
1: ha duniya se alag kar liya hai, main yahan sochna feel karna band kar deti hu. That's not true. Do tarah ke thoughts or feelings create kar sakte na, ya to hurt ke ya fir
0: happiness ke,
1: compassion ke. Is case mein
0: agar wo dusre

0: की अपनी पेन है.
1: आई एम सिटिंग हियर, आई एम वॉचिंग यू क्रिएटिंग यू नो समथिंग विच इज ट्रबलिंग यू. मुझे ये समझ में आ रहा है इनकी अपनी कुछ चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं. एक है गुस्सा होना, एक है नफरत करना, एक है दर्द में चले जाना, मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं, और एक है अपने दर्द को नहीं क्रिएट किया तो फिर सेकंड किसके बारे में सोचने
0: तो लग गया कि वो हो ये बेचारे को. हाँ, क्या
1: प्रॉब्लम है, क्या होता है, व्हाई आई एम नॉट एबल टू सी यू, व्हाई आई एम नॉट एबल टू फील एनीथिंग फॉर यू, कि ये क्यों दर्द में है, व्हाट कैन आई डू टू हेल्प और वट एवर, बिकॉज मैं ही तो दर्द में चले गई. तो जैसे ही मैं दर्द में चले गई तब मुझे एक ही दिखाई देता है, एंड दैट इज मी एंड माई पेन एंड माई हर्ट. बाकी कौन लोग मेरे आसपास हर्ट हैं, it doesn't matter. So then I really am not giving anything into relationships. I'm occupied with my own pain, and pain ko bhi main theek nahi kar pa rahi, main bas us dard mein jeevan ko jeete ja rahi. Lekin jab khud ka dard dheere dheere khatam hoga to energy stability ki hogi, switch off nahi hogi. Switch off matlab mera aapke sath connection finished. I have nothing to do with you. No, it's just that I will not create pain. So I will create love. See, hum kehte hain, I love you, I really, really love you. But when I'm creating pain, I'm not creating love. You know, even in a parent child, and then a husband, wife, I'm kehenge, but I love you. But there's so much of pain while we're saying that. There's so much of hurt. That's not energy of love. Ek formula jo hume yaad rakhna hai, ek time pe, wo sirf ek energy ho sakti hai. When we don't need anyone to tell us ki wo kaun si wali hai, wo hume khud अंदर पता चलता है कि ये अच्छी अच्छी वाली है, विच मेक्स मी फील गुड आफ्टर दैट, और इट मेक्स मी फील लो, एंड फिर वही वाली क्रिएट.
0: अगेन यू नो वी एक्चुअली लुकिंग एट द न्यू सेट ऑफ लाइफ एंड सेट ऑफ यू नो बिलीफ सिस्टम्स फॉर अस. द फर्स्ट वाज दैट आई क्रिएट एवरीथिंग, आई क्रिएट माई हैप्पीनेस, आई क्रिएट माई हेट्रेड, आई क्रिएट लव.
1: अगर पता चल जाता है, देखो अवेयरनेस के स्टेप्स क्या है, पता चल गया आई एम फीलिंग लो, तुरंत एक थॉट को चेंज करना है, आपकी फीलिंग तो अपने आप चेंज हो जाएगी. अवेयरनेस के साथ चलना शुरू करें, डोंट इग्नोर योरसेल्फ. अभी हम इग्नोर कर रहे हैं अपने आप को. आपका मूड अगर आज खराब मुझे दिखाई देता, आई एम अवेयर, मुझे पता चलता है. अगर आपका और मेरा थोड़ा भी कोई रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता नहीं चाहिए, थोड़ा भी रिश्ता है, तो मुझे पता चलता है कि आपका मूड ठीक नहीं है. सेकेंड स्टेप मैं क्या करूंगी, आपका मूड ठीक नहीं है आज, क्या हुआ, दिस इज कंसर्न, एंड देन इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प. अगर हम औरों के साथ ये कर सकते हैं, अपने साथ
0: तो मूड को मतलब ये वेरी ट्रू,
1: अपने साथ नहीं क्या, जिसके साथ पहला रिश्ता है, तो मेरा मूड ठीक नहीं है, आई डोंट इवन स्टॉप टू सी व्हाई माय मूड इज नॉट ओके, कौन सी वो थॉट है. जैसे आपको मैं पूछूंगी, किसने क्या कहा आपको जिससे यू नो आपका मूड ठीक नहीं हुआ, तो हम सोर्स तक जाने की कोशिश, इनफैक्ट हम सोर्स बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम ट्राई तो कर रहे हैं ना, आपको किसने क्या
0: कहा, सिचुएशन थी, क्या हो गया था, कैसे हुआ, यस
1: देन यू विल से यू नो देन दे सेड दिस, देन आई फेल्ट दिस, व्हाटएवर, एटलीस्ट वी टेक टाइम, एंड दिस इज हाउ अ रिलेशनशिप डेवलप्स.
0: एंड इनफैक्ट यू नो देन इफ आई एम गोइंग टू टेल यू कि उसने ऐसे ऐसे किया, तो आप जो थर्ड पर्सन है, यू विल बी एबल टू टेल मी कि नहीं उसने ऐसा इसलिए कहा होगा,
1: व्हाटएवर, बट दिस टेक्स टाइम ना. लेकिन सपोज आप आ रहे हो, आपका मूड ठीक नहीं है, लेकिन आई एम नॉट बॉदर्ड, एंड मैं पूछू भी नहीं, इट डजेंट इवन यू नो कम इन टू माई माइंड, नहीं है नहीं है, मुझे क्या करना, बैठे रहें दर्द में, काम तो करें ना, बैठ के काम करने आया ना आप यहाँ पर, भले आप दर्द में हैं, आप काम करो. What kind of relationship is this? There is no sensitivity towards the other person. So, इसलिए we are very, very sensitive to other people, but we're not very sensitive to ourselves. खुद को हम कहेंगे दर्द में है ना, टेंशन है, कोई बात नहीं, काम करो अपना. This is being so insensitive to yourself, कि रहने दो ना अंदर दर्द में, मेरे जीवन का लक्ष्य काम करना,
0: और उसका तो कुछ हो नहीं सकता ना. सबसे बड़ी बात हमें ये लगता है कि हमारे अपने दर्द का कोई इलाज नहीं है.
1: कितना टाइम लगेगा, सिर्फ दो मिनट, औरों की प्रॉब्लम डिस्कस करने में 10 मिनट लग सकता, लेकिन अपनी जब करेंगे ना अपने साथ, 2 मिनट्स, जस्ट टेक आउट 2 मिनट्स, सिट बैक, एंड कोई काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो 2 मिनट निकालने से कुछ रुक जाएगा.
0: हम दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बाकी सारी चीजें छोड़ देते हैं.
1: हम एक एक घंटा बैठ सकते हैं किसी और के साथ, कहीं अगर कोई प्रॉब्लम में है, और ये 2 मिनट अगर अपने साथ निकालते हैं, अपने को ठीक करते हैं, फिर काम करने जाते हैं, wouldn't the performance be very effective?
0: Of course, I'll be so light.
1: Yes. Yes. You know, when we're talking of this journey of self-transformation, jara bhi feel ho ki dard hai, uncomfortable hai, don't continue with it.
0: Take a pause.
1: Yeah, it is just 99 fever. Don't continue. Take something immediately. Nahi to wo sham tak badhta jayega, aur fir wo sirf mere tak na rehkar

0: آپ سوچو کوئی رشتہ ہے جس میں نہ ہم ٹائم دیتے، نہ ہم بات کرتے کبھی، نہ ہم ان کا دھیان رکھتے، نہ ہم ان پر ٹرسٹ کرتے، نہ ہم ان سے پیار کرتے، نہ ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے، وہ رشتے کا کیا ہوگا؟
1: It does not exist actually. That's
0: with the self. That is with the self. No time, no conversation, no love, no care, no trust. That's why I say vacuum hai andar, vacuum hai, khali pan hai. Kyun? Andar se koi apne aap se connectivity feel hi nahi ho rahi. Aur phir jab aisi baat sunte to kehte hain apne aap se rishta wo kya hota hai?
1: Let's check. Aur apne aap se rishta kahan tak
0: hai? Bahut feeling karta
1: hai. Aur aaj jaise samajh mein aaya ki matlab jis tarah se aapne wo sare jo baatein jo hum logon ke sath rishton mein dhoond rahe hote hain apne sath to humne aise kaam hi nahi kiya.
0: Jab tak apne sath nahi kaam karenge we're not doing justice outside. Hum nahi, I just can't love someone else without loving myself first. Kyunki jab tak yahan pyar nahi hai, you know, loving myself matlab mujhe smriti hai ki I am a loveful being, there is energy of love here, then that will flow with energy of pain here, giving love to others.
1: It cheating, is not possible.
0: Absolute cheating with myself and with other people jinko hum kehte ki I really love you,
1: I can do everything for you, mere se main apne aap ko bhula ke aapke liye kaam karti hu, you know kitni baar hum
0: belief kehte. system, ye to belief system bana liya na ki apne liye karna ये स्वार्थ है, दूसरों के लिए करना ये प्यार है, दूसरों के लिए करना बहुत प्यार है, लेकिन वो होगा नहीं,
1: वो हो ही नहीं रहा,
0: होगा नहीं
1: कभी. तो हमारे रिश्तों में कितना कुछ करने के बाद, थॉट्स भी देने के बाद, आई नो समवेयर यू नो नाउ देयर इज समबडी हू सेज कि अच्छा मैंने बात समझ गया, मैं समझ चुका हूँ कि थॉट पर काम होता है, तो मैं उनको बहुत अच्छे पॉजिटिव थॉट देता हूँ, बट अगर मैं अपने आप के अंदर ही पॉजिटिव नहीं हूँ.
0: सी मेनी पीपल आर सेइंग दिस कि अच्छा हमें समझ में आ गया कि जो रिश्ते हमारे थोड़े से ऊपर नीचे हैं, हमें बैठकर उनको गुड विशेस भेजने हैं, हमें उन खुद की स्थिति गुड विशेस भेजने की चीज ही नहीं है,
1: वो अपने आप चली जाती है. आई नो हम टेंशन में बैठ के यू नो कि मतलब
0: उनको गुड विशेस भेजनी है या यस यू आर अ लवफुल बींग, यू आर अ प्योर बींग, यू आर अ पीसफुल बींग, ये भेजने की चीज नहीं है. वाइब्रेशंस है जो यहाँ है, आप चाहो ना चाहो इट्स गोइंग टू स्प्रेड इन टू द एनवायरमेंट, एंड दैट्स वाई राजयोग टीचर्स अस की कुछ मेहनत नहीं है रिश्तों में. इट्स ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, एवरीबडी एल्स इज ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ. तो उसके लिए हर रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालें. सुबह का समय अपने आप के साथ 5-10 मिनट जरूर स्पेंड करें, इवन इफ यूर लेट. इवन इफ यूर लेट, यू नो हम सोचेंगे नहीं लेट हो गया तो वो लेट तो हर ऑलमोस्ट थोड़े दिन बाद होता ही रहता है, लेकिन जैसे भले लेट हो जाए फिर भी आप फटाफट तैयार तो होते ना, फटाफट नाश्ता तो कर, इसी तरह ये टाइम भी उसको एक अपनी उसमें फिट करना है रूटीन में कि माय डे स्टार्ट्स विद 5 मिनट्स फॉर माय सेल्फ, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इफेक्टिव डे. ये मुझे अपने आप को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, इट हैज टू स्टार्ट विद 5 मिनट्स ऑफ योर सेल्फ, एंड वो 5 मिनट अपने यहाँ थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करें, अपने थॉट्स को क्रिएट करें. सारा दिन में देखना मुश्किल लग रहा है ना, अवेयरनेस नहीं आ रही, तो दिन की शुरुआत वो क्रिएट करके होनी चाहिए. आई एम अ वेरी पावरफुल बींग, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द सिचुएशन, टुडे द डे इज गोइंग टू बी इन माई कंट्रोल. आज का दिन मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ पेशेंस, लव, चाहे कुछ भी हो जाए I am not getting irritated today. You know, it's planning how you're going to be today. So, jaise we plan what to do, hume aaj kya karna hai, let's start planning how to be. Isliye hum baar baar yehi yaad rakh rahe hain, hum human doings nahi hain, hum human beings hain. So, how am I going to be today? Because depending on how I'm going to be, That is what I will do. देखो आप कितनी भी अपनी डायरी प्लान कर लो कि आज ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, अगर आपका मूड खराब हो गया किसी चीज से, आपका तो पूरा शेड्यूल ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा सारा. और अगर करोगे भी 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, लेकिन वो मूड तो हर घंटे के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस करता है, और फिर वो पूरी मीटिंग्स डिस्कशंस जैसी होनी चाहिए उस लेवल पर नहीं जाते, क्योंकि आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ व्हाट टू डू. लेट्स स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ हाउ टू बी, यू नो दैट बीइंग पार्ट की भी एक डायरी, डायरी नहीं तो एक इंटरनल तो डायरी लिखना शुरू करें, और हर रोज एक चीज एटलीस्ट अपने लिए डिसाइड करें, क्योंकि वैल्यूज ऐसी चीज है एक से सारी इंटरकनेक्टेड है. आप एक चीज डिसाइड कर लो, आज चाहे कुछ भी हो जाए आई एम नॉट गेटिंग इरिटेटेड. अगर मेरे अंदर इरिटेशन की आदत है छोटी छोटी छोटी छोटी,

0: not getting irritated today. Today is stability. Totally. Ab subah decide kar liya, apne aap ko visualize kar lo. Ye karte hue, dekh lo achhi tarah se ki sara din driver ke saath office mein ye. Create that scene. This is programming for the mind. Aapne feed kar diya. Ab aap nikle apne sara din ke liye, to kai baar subah ki baat thodi si bhool jati hai, to fir har ek ghante ke baad ek minute. Break 1 minute after every 1 hour is for myself. Isko hum bhale bahut baar sun chuke hain, bahut baar bol chuke hain, lekin agar abhi tak nahi karna shuru kiya hai,
1: that's very powerful.
0: Lekin ab aap dekho, humne jab pichli baar ye discuss kiya, uske baad se aapne alarm lagana shuru kiya. Uske pehle humne kitni baar discuss kiya, lekin jab tak alarm lagana nahi shuru kiya, wo nahi hota hai. You know, it's not something like hum soche ha theek hai hum kar lenge, wo nahi hoga. We have to initially use some external aid, koi alarm, koi computer per reminder, put it into, it's like a homeopathy medicine.
1: And you know, ab kya hota hai, ab apne aap hi, I'm just like, now
0: absolutely.
1: Apne aap wo click kar jata hai na, start waiting ke bajega.
0: Yeah. Ab so wo, you know, now wo, kyunki body clock hai na, wo aapka reminder aapko a jayega, aur jaise hi aapko yaad aayega ek ghanta, utni der mein wo wahan se bajega.
1: You know, in fact, main ye exercises karne mein sabse zyada lazy hua karti thi, because mujhe lagta tha ki ye mujhe samajh mein to aa gaya hai. Aur aisa hi ek jo humne belief systems ko likhna shuru kiya hai.
0: Right.
1: Amazing hai jo aapne kaha tha ki wo, in fact, I would like to share ki hum sab शुरू कर दे, जस्ट टेक आउट दोस 5 मिनट्स, यू नो.
0: उससे पता है क्या होगा, जब जैसे बहुत सारे भाई बहने कह रहे हैं, हम सुनते हैं प्रोग्राम, वी बीन वॉचिंग इट फॉर ऑलमोस्ट वट एवर 2 ईयर्स, एंड अच्छा लग रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है अभी तक. तो एक ही स्टेप तो बचा, सुन भी लिया, समझ भी लिया, अंडरस्टैंड भी हो गया, एक्सेप्ट कर लिया. या दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि जर्नी है ना, शुरू शुरू में नहीं एक्सेप्ट किया था. बहुतों ने कहा कि ये कौन सी बातें हैं कि गुस्से के बिना काम होगा ये, पर धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे ट्राई किया, कभी रिजल्ट मिला, कभी थोड़ा नहीं मिला, लेकिन एक्सेप्ट होते गए. अब उसको अगर पूरी तरह से अपने जीवन में डालना है, थोड़े छोटे होमवर्क कर लेने चाहिए. बहुत कम टाइम लगाते हैं, 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, लेकिन दे कैन बी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग. इमेजिन, इतनी सी इन्वेस्टमेंट 5-10 मिनट की, और पूरी जीवन परिवर्तन हो जाए, रिश्ते बदल जाएं. इट्स नॉट टू मच ऑफ टाइम, इज इट?
1: एंड इट्स वंडरफुल, इट बिकम्स, यू नो, वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. जब हम खुद को देखें, हमारा ना सारा ध्यान बाहर से एक्चुअली हटने लग जाए.
0: तो उसी तरह हमने ये सीरीज शुरू की थी ना, अपना ध्यान रखना. दैट्स व्हाट वी स्टार्टेड, कि स्पिरिचुअलिटी को आज दिन तक हम कहते थे ध्यान करना. इट्स बेसिकली ध्यान रखना. अपना ध्यान रखते जाओ, रखते जाओ, बाकी सब चीजें विल जस्ट फॉल इनटू प्लेस. रिश्ते आपको पता ही नहीं चलेंगे कि कहां वो कॉन्फ्लिक्ट जो था वो खत्म होता गया, क्योंकि आपने उस चीज पर ध्यान रखना शुरू किया जहां कंट्रोल पॉसिबल है.
1: तो अब जो पहले थॉट बिना क्रिएट किए जो पेन आ जाता था, या पेन में क्रिएट कर लेती थी, वो अब नहीं हो रहा है. आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, क्योंकि मुझे ही प्रॉब्लम आई थी पहले कि थॉट कहां होता है, फीलिंग ही पहले आ जाती है.
0: True.
1: पर ये अगर थोड़ा सा एफर्ट करते हैं तो फीलिंग तक जा नहीं पाते, जाते नहीं है आप. सिचुएशन
0: देखो, इतनी सी मेहनत करने से हम उस स्टेज तक पहुंच गए हैं जहां वो फीलिंग आती नहीं, उससे पहले हमें पता चल जाता है, ओके, दिस इज थॉट, एंड चेंज करना, इट्स नॉट डिफिकल्ट. और इतनी सी मेहनत करने से आपकी हेल्थ ठीक, आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक, रिश्ते ठीक, करियर ठीक, दिस इज सक्सेस.
1: सबसे बड़ी बात है डिसीजन मेकिंग ठीक.
0: सो एवरीथिंग, यू सी, देयर विल बी वन हार्मनी. जो हार्मनी आज तक हम जीवन में ढूंढ रहे थे, वी सेड हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, दैट यूज टू बी द इश्यू, कि संबंधों में कैसे वो हार्मनी लेकर आए, वो कभी नहीं आ सकती. आप कितना भी ट्राई करो, जब तक इंटरनली देयर इज नो हार्मनी, ये स्मूथ फ्लोइंग होना चाहिए. एनर्जी फ्लो हो रही है, यहां इतना
1: ब्लॉक नहीं हो रहा, मतलब अदरवाइज वो जा नहीं रहा होता, और वो जो जा रहा होता है वो वही कचरा.
0: Keep doing this 1 minute. 1 minute में हम क्या कर रहे हैं, 1 मिनट रुकते साफ कर देते. फिर थोड़ी देर बाद अगर कुछ इकट्ठा हो गया, फिर 1 मिनट आता, फिर साफ कर देते. जैसे ये टेबल है, अगर हम इसको हर 1 घंटे के बाद साफ करें, विल दिस एवर गेट डर्टी? सी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इवन इफ अगर ये अभी गंदी हो चुकी है थोड़ी, लेकिन हर 1 घंटे के बाद इसको आप एक कपड़ा मारते जाओ, उसके बाद तो ये कभी गंदी दिखनी नहीं, क्योंकि इसकी रेगुलर सफाई हो रही है. यहां लास्ट कब सफाई की थी, याद ही नहीं, अक्यूमुलेटेड है. और बहुत प्राउडली बोलते हैं, 20 साल पहले वो बात हुई थी, मैं तो अभी तक नहीं भूला.
1: क्योंकि ये था कि दूसरों के ऊपर डिपेंड हो रहा था ना, कि दूसरे अभी भी 1 मिनट के लिए मैं आपसे यही कहूंगी, जो 1 मिनट वाला था, जब मैंने

0: अपने थॉट्स को देखना है। इसके लिए आपको ना कोई पोस्चर चाहिए अलग, ना पोजीशन, ना एनवायरनमेंट। जहां भी बैठे हैं, चाहे ऑफिस में चाहे घर पर, इट जस्ट डजंट मैटर। जस्ट सिट बैक एंड लुक एट योर थॉट्स एंड क्रिएट द मोस्ट पावरफुल ब्यूटिफुल थॉट्स। आई द मास्टर ऑफ दिस बॉडी, इस शरीर का मालिक, दैट कॉन्शियंट एनर्जी, creator of every thought and feeling. I am a beautiful being, pure, positive and powerful. This is me. ये मुझे कहीं बाहर नहीं ढूंढना है। मैं हूं ही वो शक्तिशाली, पवित्र, शुद्ध आत्मा, independent of everything around me. Absolute and complete. And as I create this thought, the vibration spreads to everyone around me. Om Shanti.
1: Om Shanti. आपसे विदा लेते हैं और आप सबसे भी विदा लेंगे, लेकिन अवेकनिंग का ये जो सफर है ये आगे भी चलता रहेगा। Om Shanti.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया। सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। इन दिनों हम बात कर रहे थे गुस्से की। हमने ये जाना कि गुस्सा जो है वो हमें कोई और नहीं करवाता, हम खुद गुस्सा कर रहे होते हैं। उसके बाद शांति की भी बात की, एक और एस्पेक्ट जिसे हम अपनी जिंदगी के उस एस्पेक्ट को ले रहे थे जब हम हर्ट हो जाते हैं, कैसे छोटी छोटी बातें जो हैं वो हमें हर्ट कर देती हैं और फिर अंदर ही अंदर हम उसे अपने पास रखते हैं। हर्ट के बाद हम क्या करते हैं, हम कभी रिवेंज लेना चाहते हैं, कभी हम ये कहते हैं कि हम उसे रिफॉर्म कर देंगे, कभी ये कहते हैं कि पनिश करना चाहिए, या फिर फॉरगिवनेस की बात आती है, फिर फॉरगेट करने की बात आती है। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस जो पूरा का पूरा हमारा एक जिंदगी जीने का तरीका है उसको एक नए एस्पेक्ट से देखते हैं। और इस पर बात करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, हर्ट होने के वो एस्पेक्ट हमने जरूर खूब डीपली देखे, क्योंकि यही एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो लोगों के पास आती है कि पता भी नहीं चलता कि कब हम किसकी बात से, किसी के होने से भी कितनी बार हर्ट होने लगते हैं, या हमें वाइब्स अच्छी नहीं मिल रही होती, या कभी कभी मतलब कोई चेहरा अच्छा नहीं लग रहा होता और समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो उसकी वो एस्पेक्ट हमें देखे कि हम किस तरह से उससे रिएक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वजह समझ में आती गई कि वो हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन एक छोटा सा आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा हम रिकैप करें कि क्या है जो एस्पेक्ट जो हमने देखा जो हम रिएक्ट करते हैं।
1: हम क्योंकि इस इल्यूजन में चलते हैं कि वो हर्ट आपने मुझे कॉज की है, तो जिम्मेवार आप हैं, तो आपको उसका रिजल्ट तो मिलना ही चाहिए। तो इसलिए नॉर्मल रिस्पॉन्स एक जो माइंड में आता है वो है रिवेंज लेने का। और छोटे छोटे रूप से हम बदला लेते हैं, जैसे हम बात करना बंद कर देते हैं, हम सहयोग देना बंद कर देते हैं, हम विड्रॉ हो जाते हैं, आप अपना करो मैं अपना, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं। और कई दिनों तक जैसे हमारा आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं,
0: फिर हम ये भी बड़ी आसानी से कहते हैं कि मैं आपको थोड़ा कुछ कह रहा हूं,
1: हाँ मेरा मन नहीं है ना, मतलब मेरा, बट एक्चुअली इंटरनली सबकॉन्शियसली इट्स अ वे ऑफ गिविंग यू पेन, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं आपसे बात नहीं करूंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और मैं चाहती हूं कि आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब आपने मुझे दर्द दिया तो आई हैव अ राइट कि मैं आपको अब दर्द दूं। तो रिवेंज बहुत अलग अलग

0: accept karna. You know, it's big time work. Because agar maine zimmewari accept ki, matlab mujhe ab apne upar work karna padega. Agar maine zimmewari accept ki, to maine ye bhi accept kiya ki galti meri thi. Kitna easy hai bolna ki galti aapki thi. Aapki thi, inki thi, iski wajah se thi. Lekin ye swikar karna ki galti meri thi, thoda sa bahut uncomfortable ho jata. To sabse pehla reason hum kyun karmic philosophy ko nahi use karte hai sara din mein, kyunki hum zimmewari lene ke liye ready nahi hai ki jo kuch ho raha hai wo meri wajah se, bhale is janam mein maine nahi kiya ho, lekin ab to janam ka concept hi samajh mein aa gaya na ki janam matlab kya, sirf costume change ho raha hai. Main atma to amar hu, to maine kabhi na kabhi to ye kiya tha, to bhi zimmewari meri ho jati. Dusra, कहीं ना कहीं ये भी हो जाता कि अंदर एक डर हमेशा बना रहता है कि ये जो मैं गलत कर रहा हूँ इसका रिजल्ट
1: मिलना है मुझे.
0: क्योंकि अगर मुझे कार्मिक फिलोसफी को पकड़ कर चलना है तो ये मेरे ऊपर हमेशा एक अटेंशन या एक हावी रहेगी ये बात कि ये जो तुम कर रहे हो बे, तुम्हें याद है कि इसका रिजल्ट मिलने वाला है. और जो कर रहे हो मतलब सिर्फ गलत काम नहीं,
1: थॉट्स.
0: If I remember, then every time I create a wrong thought, a negative thought, that bell will ring inside, which will say, do you know what you're doing? आपको पता है आप क्या कर रहे हो? ये energy जो आप create कर रहे हो, ये आपके पास वापस आने वाली है. And I don't like that. क्योंकि that means कि मुझे पूरा time attention में चलना पड़ेगा कि not to create any negative, waste, toxic thoughts, because I have to take responsibility jo create kiya, wo mere paas wapas aayega. So I conveniently, gyan hote hue bhi, I keep it aside. And I continue with my, jo sochna hai, jo karna hai, wo karte chao. Aur teesra, ek constant ye bhi attention rahega, ke jo kuch mere paas aa raha hai, wo result mera hai, to mujhe swikar karna padega. लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो स्वीकार करना बहुत इजी हो जाएगा. एक दिन के लिए, अगेन वी हैव टू ट्राई इट आउट, एक दिन के लिए करके देखें. सारा दिन में चल रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत कुछ हमारे साथ होता है, बहुत लोग बहुत कुछ बोल कर जाते हैं. जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ, ये जो कुछ आपको मिल रहा है ये आपका ही किए हुए का रिजल्ट है. वेरी इजी. हर थॉट जो आप क्रिएट कर रहे हैं, इट्स एनर्जी, वो वायुमंडल में जा रही है और वो वापस मेरे पास आएगी. और पहली बात तो वो है कि जब वो क्रिएट करते हैं तभी मुझे मिल जाती है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये अभी चुक तो हो रहा है, यू नो, ये मैंने ये कर्म किया था, ये उसका रिजल्ट मिल रहा है, या ये मैं एक नया कर्म कर रहा हूँ. नाउ देयर इज नो वे, देयर इज नो वे ऑफ नोइंग दिस, बट इफ आई रिमेन स्टेबल इनसाइड, मुझे हमेशा ये स्मृति रहती कि हर चीज जो हम कर रहे हैं, हर कर्म, राइट फ्रॉम थॉट लेवल, ये एक कॉज भी है तो ये एक इफेक्ट भी है. हर थॉट एक कॉज भी है और ये एक इफेक्ट भी है. क्योंकि मेरे पास अगेन कोई चार्ट नहीं है जो बताएगा कि ये पहले वाले का रिजल्ट है या ये अभी नया क्रिएट हो रहा है. तो मुझे दोनों चीजों की स्मृति रखते हुए अटेंशन रखनी पड़ेगी. अगर मैं किसी बात से हर्ट हो रही हूँ तो मुझे अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि ये एक इफेक्ट है, कि मैंने कुछ किया था उसका रिजल्ट मुझे अभी ये मिल रहा है. एट द सेम टाइम ये थॉट एक कॉज भी है कि अब जो ये मैं थॉट क्रिएट कर रही हूँ इसका इफेक्ट भी मुझे
1: मिलेगा, क्योंकि मैं हर्ट हो रही हूँ तो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो. ओहो, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी
0: केयरफुल. दैट्स व्हाई. सो यू नो, डोंट, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल गेटिंग कंफ्यूज्ड इन दिस कि अभी मैं इसको कैसे लूँ, कि ये अब मेरा चुक तो हो रहा है या नया क्रिएट हो रहा है. दोनों चीजें हो रही है. आई हैव टू रिमेम्बर एवरी थॉट, हर थॉट. और ये जितनी बार हम अपने आप को इसका कॉन्शियसली याद दिलाएंगे ये समझ में आता जाएगा. मे बी एकदम फर्स्ट टाइम इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन एवरी थॉट एक कॉज भी है और एक इफेक्ट भी है. वो एक एनर्जी है जो मुझे मिली है क्योंकि मैंने दी थी, एंड येट एट द सेम टाइम मैं थॉट अभी क्रिएट कर रही हूँ तो वो एनर्जी मैं ट्रांसमिट भी कर रही हूँ.
1: एनर्जी मुझे मिलेगी, क्या क्रिएट कर रही हूँ उस पर डिपेंड करेगा.

0: I remember another lady who had asked me this question ki उन्हें किसी से पैसे लेने थे और उन्होंने पैसे ने मना कर दिया. उन्होंने बहुत अच्छी दोस्त थी उनके, उन्होंने पैसे मना कर दिया कि नहीं हम दे चुके हैं या कुछ था. तो शी केम टू मी, आई वॉज वॉकिंग एंड शी सेड कि मुझे इस बात का जवाब दो कि क्या ये मेरा कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है या ये नया अकाउंट क्रिएट हुआ है. अब उनको चुपता करना पड़ेगा फिर आगे. मैंने उनका तो आप भूल जाओ. लेकिन मतलब मुझे ये लगा कि आपसे मैं पूछती हूँ कि इसका जवाब क्या होगा. मेरा जवाब ये था कि आपका हो सकता है जो भी था अकाउंट वो सेटल हो गया, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप इरिटेट होती रही क्योंकि ये थॉट आपके साथ है, या तो हम ये समझ लें कि वो अकाउंट सेटल हो गया तो देन फिनिश हो गया.
1: एग्जैक्टली
0: फॉरगेट हो गया कि खत्म हो गया बस. लेकिन अगर वो साथ साथ रहा कि उसने मुझे पहले पैसे नहीं दिए, मेरे देने हैं, तो एक नया अकाउंट क्रिएट हो.
1: तो दोनों चीजें हो रही है ना साथ साथ. सेटल भी हो रहा है तो हमें समझ में आता है कि ये इफेक्ट है, लेकिन एक कॉज भी है क्योंकि नेक्स्ट क्रिएट हो रहा है. उन्होंने नहीं दिया वापस, सेटल, लेकिन मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, क्रिएशन. अब इस समझ में लेना, पक्का कर लेना अपने साथ कि अब जो मैं डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी क्रिएट कर रही हूँ वो वापस आएगी.
0: तो अच्छा, एक बार क्रिएट हो गई, दो बार, हम एक्चुअली कंटिन्यूस क्रिएट करते रहते हैं, तो दो बार क्रिएट हो गई तो चलो तैयार हो जाएंगे हम. लेकिन कहीं जैसे ही समझ में आए, आई थिंक वी शुड स्टॉप दैट.
1: इसीलिए कार्मिक फिलोसफी हमारी बाकी सारे जो हमने रिस्पॉन्सेज देखे हर्ट को, वो सामने उसकी कोई उसकी आवश्यकता नहीं होगी अगर सिर्फ ये याद रहे कि जो हो रहा है वो मेरी ही करने का रिजल्ट है. फिर आप देखना, चलते फिरते सारा दिन कहीं ठोकर लग जाती है, कहीं गाड़ी से सर टकरा जाता है, कहीं गाड़ी ही किसी के साथ जोर से लग जाती है तो गाड़ी को बहुत जोर से लग जाता है. कितनी छोटी छोटी बातें होती है जो हम देखते हैं कि पहले मुझे घंटा घंटा वो बात डिस्टर्ब करती थी. यू नो, कल ही मेरे साथ हुआ कि मेरी गाड़ी को जोर से लग गया, बड़ा सारा, मतलब बहुत बड़ा डेंट आ गया उसके अंदर, बहुत जबरदस्त. मे बी अर्लियर आई वुड टेक अ कपल ऑफ आवर्स टू फॉरगेट दैट इंसिडेंट, यू नो, एंड बिकॉज इट वॉज अ बिग वन, यू नो, काफी बड़ा है. तो इट्स अ न्यू कार एंड इट्स अ बिग वन. तो पहले बार बार मैं शायद उसको देखती रहूं, अच्छा इतना बड़ा, तो मेरी गलती थी, ये था वो था, मतलब इट्स ओके, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन कि ठीक है आगे से कैसे चलाना है. लेकिन एक है वो हो गया तो वो एक इफेक्ट खत्म हुआ. अब बार बार सोचना उसके बारे में, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये हो गया, दिस इज क्रिएटिंग न्यू थॉट्स. अब नेगेटिव एनर्जी तो ना क्रिएट करो, और वो तो सेटल हो गया. अब नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करना मतलब, और अभी तो भोगना हो ही रही है थोड़ी सी, अब उसकी भोगना तो और बहुत ज्यादा,
0: वो आएगी, वो वापस
1: आएगी. तो ये अंडरस्टैंडिंग से चलने से हमें आधा मिनट लगता है बात को फिनिश करने.
0: इनफैक्ट यहाँ एक और मैं आपसे बात शेयर करना चाहूंगी कि ज्यादातर लोगों के साथ जब एंगर, जब हम इस प्रोसेस में हैं कि गुस्सा नहीं करना है और गुस्सा कर देते हैं, उसके बाद अब उसके साथ फिर रहते हैं कि उफ गुस्सा क्यों किया, गुस्सा क्यों किया. सो आई थिंक अगेन दैट इज क्रिएटिंग मोर, यू नो,
1: दैट्स व्हाई जितना जल्दी हो उसको स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि हमें रियलाइज करना होगा कि अब जो क्रिएट कर रही हूँ वो भी वापस आएगा. तो पहला वाला जो वापस आया वो पसंद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी फुल स्टॉप लगा दो, नहीं तो अब जो क्रिएट कर रहे हो वो भी थोड़े टाइम के बाद फिर वापस आए. लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मेरा बिलीफ सिस्टम है कि लोग मुझे हर्ट करते हैं, जो कि बहुत स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम है. ये इतना स्ट्रांग बिलीफ है कि बार बार सुनने और समझने के बावजूद कि हम उसको क्रिएट करते हैं, मुझे औरों ने हर्ट किया, उन्होंने जो ये बात की वो मुझे अच्छी नहीं लगी. अब ये कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस में फिट हुआ हुआ है, और सबकॉन्शियस में बिलीव्स के फॉर्म में ये पास्ट से हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ये बिल. अब क्या होगा, एवरी टाइम मेरी नेचर बन जाएगी रिएक्टिव बनने की, आपकी वजह से ये हुआ.
0: और मैं कहूंगी मेरा नेचुरल रिएक्शन,
1: मेरा नेचुरल, क्यों नेचुरल रिएक्शन है, क्योंकि वो यहाँ पर रिकॉर्डेड है. तो एवरी टाइम समबडी सेज समथिंग टू मी, आपकी वजह से हुआ, आपकी ना, एवरी टाइम आई से आपकी वजह से हुआ, वो जो रिकॉर्डिंग है वो और भी स्ट्रांग, और भी स्ट्रांग होती जाएगी. अब क्या होगा, एवरी टाइम मैं आपसे मिलती हूँ तो मेरा वो जो इम्प्रेशन रिकॉर्ड किया हुआ है वो वापस स्क्रीन पर पॉप अप हो जाता है, और मेरा बिहेवियर उसी तरह आपके साथ होता है. आपकी वजह से मुझे तकलीफ हुई, आपकी वजह से मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ दर्द हुआ, तो मेरा जो रिलेशनशिप है आपके साथ वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म होने लग जाता है, और मेरा जो संस्कार है वो स्ट्रांग होने लग जाता है.
0: जी हाँ, हर कोई जो दूसरा है.
1: अब क्या होगा, आप जब मिलेंगे तब तो वो इमर्ज हो ही जाएगा, धीरे धीरे वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपसे जुड़ा हुआ भी कोई मिलेगा.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवरलास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: में खो जाए, मस्त हो जाए।
1: लारा।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी न कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी, तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकेंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: FM रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे हैं यशस्वी भारत कार्यक्रम, और आज के हमारे गेस्ट का हम स्वागत करेंगे। सबसे पहले यशस्वी भारत के इस खास मेहमान का स्वागत इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि ये वैसे तो खास है ही, लेकिन इन्होंने अपनी खासियत के द्वारा एक बहुत बड़े समाज के उस वर्ग का जीना आसान किया है जिनके प्रति लोगों

0: की कई भ्रांतियां होती हैं। अक्षय भटनागर एक ऐसा नाम है जिसने अपने नाम का यथार्थ परिचय लोगों को दिया है। और अक्षय भटनागर जी के साथ उनकी माता जी प्रतिभा भटनागर जी भी आज हमारे साथ है। आप दोनों का हम हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार अक्षय जी, नमस्कार प्रतिभा जी।
1: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: प्रतिभा जी आप कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ।
0: तो हमारा यशस्वी भारत कार्यक्रम बड़ा खास है क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए हम हमारे श्रोताओं तक उन लोगों को पहुंचाते हैं, उन लोगों की कहानियां पहुंचाते हैं जो कि कुछ भी करके किसी भी एक फील्ड में किसी भी एक एस्पेक्ट में जीवन का कुछ करके एक उदाहरण तैयार किया है और वो इतने उदाहरणीय बने हैं कि भारत सरकार ने राष्ट्रपति सम्मान द्वारा उनको सम्मानित किया है। तो हमारे अक्षय भटनागर जी जो है वो न केवल राजस्थान का गौरव है लेकिन साथ ही साथ भारत में भी उन्होंने अपना यश फैलाया है। आपने खेलों के द्वारा एक विशेष व्यक्तित्व है, आप एक स्पेशल चाइल्ड होने के बावजूद भी आपने खेल के द्वारा अपना नाम, अपने परिवार का नाम और राजस्थान का नाम आगे बढ़ाया है, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय जी आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी फेवरेट हॉबीज क्या है, आपको क्या क्या करना पसंद है?
2: चेस खेलना पसंद है।
0: अच्छा, और कब से खेल रहे हैं आप चेस?
2: 2 साल से। हाँ, तो चेस ही खेलता हूँ सिर्फ।
0: और पहले क्या क्या खेलते थे?
2: पहले शॉटपुट खेलता था, जेवलियन, डिस्कस।
0: और ये सब खेलने में आपका रुचि कैसे हुआ? लोग तो ज्यादातर क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो आपकी रुचि जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, शॉटपुट थ्रो, इन सब में कैसे आई?
2: सही,
0: आपको किसने बताया कि ये खेल बहुत अच्छा होता है, ये खेलना चाहिए? आपके माता पिता ने बताया?
2: हाँ।
0: तो दोस्तों अक्षय जी के साथ उनकी माता प्रतिभा जी भी हमारे बीच में है, आइए सुनते हैं उनसे कि अक्षय जी की कहानी क्या रही है अब तक की। प्रतिभा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने न केवल अक्षय जी को अक्षय बनाया लेकिन तमाम अक्षय जो आज भारत में है उन सब तक आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है अपने बेटे के जरिए कि कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और जहां उम्मीद की रोशनी है वहां पर जरूर उजाला होता है और उस उजाले से फिर सिर्फ उस एक व्यक्ति, उस एक परिवार का नहीं लेकिन समाज का दिग्दिशा बदल सकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले रेडियो मधुबन के पूरे परिवार की तरफ से।
1: थैंक यू सो मच जो आप हमें ये अवसर दिया।
0: आपसे जानना चाहेंगे आपकी कहानी साथ ही साथ अक्षय जी की कहानी, क्योंकि ये कहानी तो जुड़ी हुई लगती है बिल्कुल, इसलिए अगर आप सुनाए ये कहानी तो बहुत अच्छा होगा।
1: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि हमारा जीवन तो इसी के आसपास ही गुजरता है। 92 में इसका बर्थ हुआ था और 2-3 साल तक तो हमें ज्यादा कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ था, लेकिन हाँ स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट इसका नहीं हुआ था जैसे कि दूसरे नॉर्मल बच्चों का होता है। बोलना नहीं सीख पाता था, अपनी बात नहीं बता पाता था, लोगों से मिक्सअप नहीं होता था, हम अगर कोई पूछे तो जवाब नहीं देता था। तो हमें लगा कि क्या सुनाई नहीं देता क्या इसको जो ये जवाब नहीं देता। फिर हम इसे एक बार हॉस्पिटल भी ले गए, वहां पे इसका ऑडियोमेट्री टेस्ट हुआ, तब पता चला कि सुनाई देने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वहाँ पे एक स्पेशल एजुकेटर थी जो स्पेशल स्कूल में भी जाया करते थे, उन्होंने बताया कि इससे सुनाई देने की समस्या नहीं है बल्कि इसे ऑटिज्म है। ये 96 की बात है, 96 में आप खुद भी समझ सकते हैं कि ऑटिज्म को लेके क्या जानकारी थी, जब आज 2024 में ही जानकारी बहुत ही कम है, या तो जिनके बच्चे ऐसे हैं उन्हें पता है या फिर जो इस फील्ड में काम करते हैं या डॉक्टर्स, इवन सारे डॉक्टर्स तक को आज भी नहीं पता ऑटिज्म के बारे में इन डेप्थ नॉलेज।
0: आई थिंक नॉलेज से भी ज्यादा ज्ञान होना एक चीज है लेकिन समझ होना उस चीज के बारे में ये बहुत बड़ी चीज होती है। कईयों को पता भी होगा ऑटिज्म क्या है, उसके मरीज या जो लोग उससे ग्रसित हैं वो कैसे होते हैं ये सब पता होगा मोटा मोटी, लेकिन वास्तव में उसको समझ पाना ये थोड़ा मुश्किल होता है। और मैं समझता हूँ आपके परिवार के लिए भी ये मुश्किल रहा होगा।
1: बहुत मुश्किल, क्योंकि देखिए ये सच्चाई है कि कोई भी पेरेंट्स ऐसा बच्चे की कामना नहीं करते, ना कोई ऐसा प्रे करते कि हमें कोई चैलेंज्ड बच्चा दीजिए, तो ये हर पेरेंट्स के लिए बहुत ही डिसहार्टनिंग होता है कि किस तरीके से हमारे साथ मतलब ऐसे बच्चे का जन्म हुआ। और उनके लिए ये ज्यादा तकलीफ देनी होता है कि हम ऐसे बच्चे को पालेंगे,

0: बल्कि तकलीफ सबसे ज्यादा इस बात की होती कि ये बच्चा खुद कितने संघर्षों के साथ अपना जीवन निकालेगा, ये सबसे बड़ा है। जब तक हम हैं तब तक तो ठीक है, हम बहुत फूलों की तरह से इन्हें रखेंगे, लेकिन दिक्कतें जो इस समाज में आती है इन बच्चों को, वो एक कड़वी सच्चाई है कि इनकी लाइफ में अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वो ये समाज की जागरूकता का अभाव है। अगर समाज जागरूक हो, संवेदनशील हो, तो शायद इतनी तकलीफें ना हो इनके जीवन में भी और हमारे जैसे अभिभावकों के जीवन में भी।
1: और विशेष करके भारत जैसे देश में जहां पर इस प्रकार के केसेस को समझ पाना हमारे समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि इस विषय में जानकारी का अभाव है। इस विषय में जानकारी का अभाव तो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के द्वारा या हमारे नीतियों में भी कुछ ऑटिज्म से रिलेटेड पेशेंट्स के लिए स्पेशल प्रावधान हो, ऐसा भी बहुत कम देखा जाता है। तो जब 92 में अक्षय जी का जन्म हुआ और जब आपको कुछ वर्षों में पता चला कि ये एक, मैं कहूंगा समस्या नहीं कह सकते अब इसको, क्योंकि ये एक प्रकार का चुनौती है, क्योंकि समस्या जो है वो हमें कुछ, वो हमारे प्रॉब्लम्स की वजह से आती है, लेकिन चैलेंजेस जो है वो हमको और ऊंचा उठा सकती है, हमें और पक्का बना सकती है। तो इस चुनौती का फिर सामना कैसे किया, कैसे अक्षय जी की परवरिश में आपने क्या क्या चीजें निहित की जिसकी वजह से आज अक्षय जी आज इतने आगे बढ़ पाए हैं?
0: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑटिज्म को लेकर के जो लोगों का समझ है उसका दायरा बहुत कम है इवन आज भी, और सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने यही था 96 में। हम खुद जब ये शब्द हमने सुना तो मेरे लिए शब्द एकदम अनजाना था कि इसका मतलब क्या होता है, और जब मैंने डिक्शनरी में इस वर्ड का मीनिंग पढ़ा आकर के घर पे, तो उसमें था कि अपनी मनमानी करने वाला, डिक्शनरी में यही कुछ था। तो मैंने कहा इससे क्या मतलब निकलता है, लोग बाग होते हैं जो अपनी मनमानी करते हैं,
1: कोई करता है अपनी मन की।
0: हाँ, फिर उन्होंने मुझे जो इसकी थेरेपी थी उन्होंने एक किताब दी थी मुझे कि आप ये घर जाके पढ़िएगा। मैं वो पढ़ रही थी तो उसके अंदर एक एक लाइन जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही थी लग रहा था हाँ अच्छा ऐसा ही तो करता है, हाँ ऐसी जिद करना, अपनी बात नहीं समझा पाना, बहुत ज्यादा टेंशन एंग्जायटी। फिर एक जगह मैंने पढ़ा एक दो पेज के बाद इट इज नॉट क्यूरेबल, आई वॉज टोटली सेटल्ड। आप समझ सकते हैं कि कोई भी अपने बच्चे के मामले में ये शब्द नहीं सुनना चाहता। तो मेरी भी वही एक सामान्य जो इंसान होता है उसी की तरह से मेरी भी प्रतिक्रिया थी। फिर लगा कि ऐसे तो कैसे चलेगा, और आगे पढ़ो देखते हैं कुछ और निकलता है क्या। जब उस मतलब बहुत ज्यादा एकदम फट पड़ी थी मैं, लेकिन फिर आगे हिम्मत जुटाई और आगे पढ़ना शुरू किया तो कुछ लाइनों बाद ही लिखा था बट इट इज मैनेजेबल। तो लगा अच्छा मैनेज तो हो सकता है, तो थोड़ी सी उम्मीद जगी। हालांकि ये जो दौर था और ये वाला जो मूवमेंट था ये बहुत भूल नहीं सकती मैं उस मूवमेंट को, लेकिन अब कब तक हम इसी वाले सिचुएशन में रहते। दो चार दिन बाद अपने आप को जब संभाला, क्योंकि मैं देख रही थी कि मेरे डिप्रेस होने या रोने धोने से घर का वातावरण भी एकदम डिसअपॉइंटमेंट हो चुका है वहाँ पे,
1: और मुझे लगता है वो प्रभाव अक्षय जी पर भी पड़ता होगा ना। क्योंकि वो दिल से तो आपसे जुड़े हुए हैं और वो भावनाओं को समझ सकते हैं कि वो तो साधारण किसी भी व्यक्ति के साथ होता है कि अगर उसके अभिभावक स्पेशली उसकी माँ जब उदास होती है उस व्यक्ति पे, उस बच्चे पर उसका असर अक्सर दिखता है। माँ अगर रोती है तो बच्चे के आंसू अपने आप ही आ जाते हैं, माँ उदास है तो बच्चा भी उदास हो ही जाता है। तो माँ का तो कनेक्शन डायरेक्टली दिखता है बच्चे के साथ। तो आपको इस वजह से अपने को उभारना भी था इस समस्या से।
0: उसी टाइम
1: कौन से ऐसे टिप्स आपने अपनाए अपने लिए जो कि आज मान लीजिए किसी माँ को जो सुन रही है या कोई पिता जो सुन रहा है इस एपिसोड को, जब उसके सामने कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो आपने क्या क्या चीजें की जो उनके लिए मददगार हो सकती है उनके जर्नी में?
0: सबसे पहला कि स्वीकार करो कि हाँ आपके बच्चे के साथ एक चुनौती है, क्योंकि अगर हम डिनायल मोड पे आएंगे तो हम वो प्रयास नहीं करना चाहेंगे जो हमें करने चाहिए, और हम जितना देर लगाएंगे उतना ही बच्चे की परिस्थितियां बद से बदतर होती जाएंगी। तो स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है कि हाँ हमारे बच्चे के साथ कोई चैलेंज है, अब हमें इसके ऊपर काम करना है। दूसरी चीज, हम खुद जाने कि ये दिक्कत क्या है और इसके ऐसा क्यों होता है और हम क्या कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, तभी आपकी परिस्थितियां बदलेगी। अगर सिर्फ अपनी किस्मत को या भगवान को दोष देना शुरू किया तो उसका कोई हल नहीं।

0: निकलने वाला। और तीसरा ये है कि जो भी परिस्थितियां हैं तो कुछ ऐसे लोगों को संपर्क करिए या मिलिए जो कि इस दौर से गुजर चुके हो या उन्हें कुछ नॉलेज हो। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ कोई ऐसा नहीं मिला जो इस दौर से गुजर चुका हो, क्योंकि 96 की बात है, तब तक ज्यादा अवेयरनेस थी नहीं, और उस टाइम तक अगर कानून की भी बात करें तो कोई ऐसा कानून था ही नहीं इन बच्चों को लेकर के जो था, तो हमें वो तो कोई नहीं मिला। लेकिन हाँ, इस फील्ड में काम करने वाले लोग जरूर हमें मिले और जिन्होंने हमें गाइड किया कि ठीक है बच्चे के साथ जो भी है, लेकिन वो स्पेशली एबल्ड है, यानी उसके साथ कुछ खासियतें भी हैं जो शायद आप और हम में नहीं होती, तो उन खासियतों को ही पता लगा करके और उस बच्चे को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ से मैं मानती हूँ कि पेरेंट्स अगर इस चीज को मान ले और इस तरीके से आगे बढ़े तो मान के चलिए उनके बच्चे भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं और लोगों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं।
1: ये बहुत जबरदस्त तीन बातें आपने बताई। एक तो सत्य को स्वीकार करना, जितनी देर तक हम सत्य को नकारेंगे सत्य का जो बल है वो हमको बलवान नहीं बनाएगा, हम किसी एक सपने के सहारे बैठे रहेंगे और वो सपना हमें बल नहीं देता, सत्य हमें बल देता है। तो स्वीकार करने की शक्ति। दूसरा जो आपने बताया कि खुद को ज्ञान से भरना या इन्फॉर्मेशन से भरना कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, और तीसरी बात ज्ञानियों से अनुभवियों से मिलना। ये तीन चीजें जो आपने बताई, मैं समझता हूँ ये केवल ऑटिज्म के क्षेत्र में नहीं, किसी भी क्षेत्र में ये काम कर सकती हैं। आपने जैसे जीवन का एक मंत्र दे दिया। मैं यहाँ जानना चाहूंगा कि आपने उस दौरान अक्षय जी में कौन सी वो चीजें देखी जो कि उनकी खासियत थी।
0: जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी अपने सारे जो भी श्रोता है कि ऑटिज्म के लक्षण क्या होते हैं, ताकि वो अगर कहीं आसपास देखे या अपने बच्चे में कुछ ऐसा देखे तो समझ सके कि हाँ इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है, क्योंकि तभी हम इन बच्चों को सहयोग दे पाएंगे। तो इससे कुछ खास लक्षण होते हैं, जैसे कि नजर से नजर मिला के बात नहीं कर पाते ये लोग, अपनी ही दुनिया में मगन होते हैं, और बच्चों की तुलना में इनका जो बोलचाल की भाषा या समाज के साथ मिलना, लोगों के साथ मिलना जुलना, उसमें इन्हें थोड़ा दिक्कत होती है, झिझक होती है या ये अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं कुछ चीजों को लेकर के। खास तौर पे इमोशनली और सेंसरी इनको चैलेंजेस थोड़े ज्यादा होते हैं, जैसे किसी को हो सकता है कि रोशनी से दिक्कत हो, तेज लाइट से दिक्कत हो, शोर से दिक्कत हो, तो वो अपने कानों के आगे हाथ लगा लेगा, आंखों के आगे हाथ लगा लेगा, या किसी को कोई गोदी ले या छुए तो हो सकता है वो तब अनकंफर्टेबल महसूस करे। यानी कि जो हमारे ये फाइव सेंसेस होते हैं, ये हो सकता है कोई एक एरिया चैलेंज में हो और इस वजह से हमारे बच्चों को अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ये कुछ खास इसकी विशेष वो होती है लक्षण। फिर ये हुआ कि मैंने अक्षय में क्या विशेषताएं देखी, तो जब मैं, जैसा मैंने बताया कि पहले तो हमें इसको समझना ही शुरू किया कि हाँ, फिर तो वो पूरी किताब ही पढ़ डाली क्या क्या करना चाहिए, जो गाइडेंस हमें मिला और फिर जो स्पीच थेरेपिस्ट ने हमें गाइड किया, तो अपने आप को ट्रेंड करके और फिर मैंने इसके साथ काम करना शुरू किया कि कैसे आई कॉन्टेक्ट बढ़ाऊं, कैसे इवन इसको अपना नाम तक बताना नहीं आता था। वो ईकोलेलिया वाली सिचुएशन थी कि अगर ऐसे बच्चों से पूछा जाता है आपका नाम क्या है, तो वो वही रिपीट करते हैं आपका नाम क्या है। तो हमें ट्रेनिंग ली कि जवाब कैसे इनसे मिले जो हम चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती है जब आप अपनी बात नहीं बता पाते, इवन अपने पेरेंट्स को भी, तो ऐसे बच्चे से फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, रोते हैं, क्योंकि जब आप अपनी बात नहीं समझा पाएंगे तो फिर फिजिकल भी होते हैं कि गुस्से में कोई चीजें उठाना, फेंकना या फिर चिड़चिड़ा होना। तो वो सारी चीजों के लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चे को अपने जो नीड्स हैं वो एक्सप्रेस करना सिखाएं। तो वो चीज मैंने फिर शुरू करी इसके साथ बकायदा ट्रेनिंग लेकर के, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ा। मुझे कुछ एक चीजें इसमें जो जब इसको जान लिया और समझ लिया कि हाँ ये इसका चैलेंज है, तो फिर वो मैं ढूंढती थी कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे ये खुश होता है या ये कहीं पे ध्यान देता है। तो वहां मैंने देखा कि ये टीवी देखता है, तो बहुत लंबा समय तक टीवी देखता है, उसमें भी ये क्या देखता था, क्रिकेट मैच आता था तब। ये तब की बात है जब ये मुश्किल से 5-1 साल का होगा, क्योंकि 92 में इसका जन्म हुआ था, 96 में पता चला। एक साल तो हमें, मतलब 5-7 महीने तो हमें सोचने समझने में और स्वीकार करने में ही लग गए, फिर उसके बाद चीजें ढूंढना, एक्सप्लोर करना कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो देखा कि वहां बड़ा कंफर्टेबल और शांति से बैठता है, जबकि पढ़ाई ये करता नहीं था कोई भी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं था, फोकस ही नहीं।

0: मैंने देखा कि अगर इसका क्रिकेट में इंटरेस्ट है और दूसरे एड आते हैं तो उसमें इंटरेस्ट, तो वहां मैंने इससे कम्युनिकेशन डेवलपमेंट शुरू किया कि कोई एड आ रहा है तो ये क्या आ रहा है अक्षय, ये कार आ रही है, ये चॉकलेट देख वो ब्राउन कलर की, वो स्मॉल तो वो बिग, और क्रिकेट मैच आता था तो अरे ये इंडिया है, उस टाइम ये कोई कंट्रीज के नाम नहीं जानता था क्योंकि स्पीच ही नहीं थी ढंग से, तो ये लेकिन वो इसका इंटरेस्ट एरिया था क्रिकेट और एडवर्टाइजमेंट, तो वहां हमने इससे बात करना शुरू किया, तो धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ और ये चीजों को ध्यान भी देने लगा और रेस्पॉन्ड भी करना सीखा।
1: जी ये काफी लंबा सफर है और मैं तो समझता हूँ एक एपिसोड कभी भी इस पे काफी नहीं होता है, इसमें बहुत बातचीत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपसे दोबारा सवाल पूछूंगा, उसके पहले मैं अक्षय जी से सवाल पूछना चाहूंगा। अक्षय जी आप राजस्थान के पहले वो व्यक्ति हैं जो ऑटिस्टिक होने के बावजूद भी एक स्नातक हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आपने पढ़ाई की है तो, और आप जॉब भी करते हैं।
2: हाँ हाँ हा।
1: आपको पढ़ने में सबसे अच्छा क्या लगता है?
2: नहीं बताऊं।
1: अच्छा, और जॉब में आपको क्या पसंद है?
2: टाइपिंग।
1: टाइपिंग आप कितना तेज टाइप कर लेते हैं?
2: ज्यादा तेज तो नहीं कर पाते, ठीक ठीक स्पीड।
1: जी वेरी गुड। और आपके कितने दोस्त हैं जो आपके
2: लिए? तो कोई भी नहीं है।
1: अच्छा, टाइपिंग के लिए कोई भी नहीं है?
2: नहीं अभी बता नहीं, दोस्त शायद एक ही जाना होगा शायद।
1: अच्छा, उनका नाम क्या है? आप रेडियो में श्रोताओं को अपने दोस्त के बारे में बताना चाहेंगे?
2: नहीं नहीं अभी, ये भी जो इलाहाबाद में रहती है ना, बॉय फ्रेंड जो इलाहाबाद में रहती है।
1: ओके, जो इलाहाबाद में रहते हैं वो आपके दोस्त हैं?
2: हाँ हाँ, जो इलाहाबाद की जो लेती रहती है वो है दोस्त।
1: जी बहुत बढ़िया। और आपने, आपको क्रिकेट बहुत पसंद था बचपन में?
2: क्रिकेट क्रिकेट खेलना पसंद था, 2006 तक इसके बाद में छोड़ दिया था। क्रिकेट अकेट में वहाँ पिच पे पानी फेंकता था पिच पे।
1: और क्या क्या करते थे बताइए जरा?
2: और है ना, मेरे को मैं ना तेज बॉल से डरता था, फील्डिंग से डरता था, भागता था फील्डिंग से तेज बॉल आ रही, मैं हार जाता था और मैं हार के खेलता था, जो तेज बॉल आती थी तो डर जाता था, हार के खेलता था।
1: जी, और इसलिए फिर आप क्रिकेट से अलग, फिर आपने डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट थ्रो, जेवलिन थ्रो खेलना शुरू किया?
2: हाँ हाँ हाँ।
1: और उसमें तो फिर आपको अवार्ड मिला, उसमें आपको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, आपको बहुत कुछ मिला, उसके बारे में बताएंगे?
2: हाँ हाँ हाँ। और है ना, और सबसे पहले है ना मुझे स्टेट अवार्ड मिला था, मैंने पैरा एथलीट जीत लिया था, 800 मीटर का ब्रॉन्ज मेडल जीता, 1500 मीटर का गोल्ड मेडल जीता और उदयपुर में डांस का थर्ड प्राइज जीता।
1: कैसे जीत लिया आपने इतना सारा? कितना मेहनत करना पड़ा आपको? हार्डवर्क करना पड़ा?
2: क्योंकि बीए ग्रेजुएशन।
1: हाँ, क्योंकि आपने उसके लिए पढ़ाई की, मेहनत की।
2: हाँ, और इसके बाद मुझे नेशनल अवार्ड मिला था, केविन के मास्टर अवार्ड मिला था, फिर जयपुर अवार्ड मिला था, ब्रांड एम्बेसडर बना था।
1: तो कैसा लगा जब आपको अवार्ड मिला?
2: सही लगा।
1: और लोग? हाँ जी।
2: और है ना, जो सितंबर 2019 में मैं वहाँ गया था मुंबई, भाई ना यूथफुल चौक को रोल मॉडल आइकन अवार्ड मिला था।
1: और उसमें मुंबई में कैसा लगा आपको जब आप गए थे?
2: मुंबई में सही तो लगा, पर मुंबई में वहाँ पे भीड़ बहुत ही, रात को ट्रैफिक जाम लग गया था, बारिश आ गई थी।
1: जी, मुंबई की बारिश तो बहुत फेमस है और मुंबई की भीड़ भी उसके बारिश से ज्यादा फेमस है। और हाँ। और कहाँ कहाँ गए आप? मुंबई भी गए हैं और कहाँ गए?
2: और अहमदाबाद गया था, सोमनाथ मंदिर गया था, दीघा द्वीप में सी गया था, अहमदाबाद में काकरी लेक गया था इसके बाद।
1: जी, तो सोमनाथ मंदिर देखा आपने, आपको कैसा लगा? हाँ, वो
2: सही लगा।
1: आपको पता है सोमनाथ मंदिर जो है भारत के पहले पहले मंदिरों में से एक है, तो आप तो हाँ। बहुत भाग्यशाली है कि आपने सोमनाथ मंदिर देखा हुआ है।
2: हाँ, और इसके बाद मैंने ना टैलेंट हब में डांस का इसमें से प्राइज जीता था, रायपुर में नेशनल मेडल जीता था, जोधपुर में स्टेट गोल्ड मेडल जीता।
1: क्या बात है। आप कैसा डांस करना पसंद करते हैं? कौन से गीत पे डांस करना पसंद करते हैं?
2: क्या,
1: कौन से गाने पे आप डांस करते हैं?
2: दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड माल हारी।
1: हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया।
2: और है ना, और इसके बाद है ना, मैंने बेंगलोर में नेशनल मेडल जीता, पटना में ब्रॉन्ज मेडल जीता।
1: जी, आपको ये सब किसने सिखाया? इतना सारा खेलना, डांस करना, पढ़ाई, ये इतना सारा किसने सिखाया? मुझे तो इतना सारा कुछ नहीं आता।
2: मम्मी ने करवाया था, पापा मम्मी ने।
1: हाँ। आपके पापा मम्मी को अगर मैं बोला उनको डांस करना आता तो वो तो बोलेंगे हमें नहीं आता, आपको कैसे आ गया? आपने कैसे सीखा?
2: हाँ, अभी डांस मैंने डांस क्लास में सीखा।
1: अच्छा।
2: और इसके बाद मैंने ना

0: 2022 में चेन्नई गया था, निक बैड था प्रोग्राम
1: जी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना सारा टैलेंट एक व्यक्ति में केवल भगवान ही भर सकता है, ना उसके माता पिता उसमें भर सकते हैं, ना उसके टीचर्स भर सकते हैं, ना उसके दोस्त भर सकते हैं, ना वो खुद अपने आप में इतने टैलेंट भर सकता है। ये केवल ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है तभी संभव होता है। तो अक्षय जी, दोबारा हम आपसे बात करेंगे, तब तक हम एक बार प्रतिभा जी से भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना? प्रतिभा जी, जैसे कि अक्षय जी ने बताया और आपने भी पहले इस चीज का जिक्र किया कि ऑटिस्टिक बच्चों में खासियत ढूंढना बहुत जरूरी होता है, और यहाँ तो ढूंढने की आवश्यकता नहीं, यहाँ तो भरमार है खासियत की। केवल पढ़ाई नहीं लेकिन खेलकूद भी, खेलकूद नहीं लेकिन सांस्कृतिक उपलब्धि भी, हर प्रकार का इनमें एक, मैं देखता हूँ एक पूरा स्पेक्ट्रम है, पूरा रेंज है इनके पास। ये रियली बहुत बड़ा गिफ्ट मानता हूँ मैं। आपका क्या विचार है इस बारे में?
2: ऑटिज्म को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है बेहतर तरीके से, यानी कि स्पेक्ट्रम बहुत सारी चीजें एक साथ प्रभावित होती है लाइफ की, और इसी तरह से बहुत सारे टैलेंट भी हो सकता है जैसे अभी आपने जिक्र किया, पर ऐसा नहीं है कि ये टैलेंट शुरू से ही था। हम खुद ढूंढना शुरू किया कि आखिर इसे क्या पसंद है, तब जैसा मैंने बताया इसे क्रिकेट पसंद, तो फिर हमने उस क्रिकेट के जरिए इसकी सारी पढ़ाई करवाई, वरना मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या कभी पढ़ाई कर पाएगा जीवन में, कैलकुलेशन नहीं आता।
1: ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अगर क्रिकेट के जरिए कोई पढ़ सकता है तो क्रिकेट खेलने से बच्चों को मना नहीं करना चाहिए। साधारण तौर से कोई पढ़ ही नहीं सकता है क्रिकेट के जरिए, लेकिन आपने क्रिकेट के जरिए पढ़ाया जी।
2: क्रिकेट से एक ऐसे पढ़ा कि जब ये टीवी देखा करता था तो इंडिया के साथ ऑब्वियसली कोई ना कोई अपोजिट कंट्री होती थी, तो ये उस कंट्री का नाम जानने लगा, फिर इसको ये कंट्रीज के नाम धीरे धीरे सारे आ गए, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, जो भी अपने होते थे ये, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। फिर आप देखिए मैथ्स कैसे सीखा, जो काउंटिंग करना नहीं जानता था, मैं थक गई थी कि शायद कभी जिंदगी में नहीं कर पाएगा ये मैथ्स, तो एक जैसे ये मैच देखता था तो एक ओवर में कहता था अब उसको इतने रन बनाने, तो मैंने कहा एक ओवर में कितनी बॉल हुई, तो बोलता है 6, तो उसको पता चला कि 6 बॉल होती है। फिर धीरे धीरे इसको ये कि 6 बॉल पे कितने रन बनाने हैं, या इस मतलब 140 रन बनाने तो कितने हिसाब से, तो ये बताता था। इसको उस टाइम कोई आइडिया नहीं था मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का, वो मैंने बताया कि ऐसे डिवाइड कर दो, धीरे धीरे टेबल सीखना शुरू किया इसने, तो वो सारी पढ़ाई इवन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज वो सब इसने क्रिकेट से सीखी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डेवलपमेंट हुआ तो फिर वो बाकी पढ़ाई भी आसान हो गई इसकी। तो वो टीवी का ये सदुपयोग किया, हम लोग क्या टीवी के जरिए बच्चों को आइडल बना देते हैं, लेकिन हमने टीवी से लर्निंग शुरू करी। और ये जो डांस वगैरह था इसके लिए हमें इसके साथ जूझना पड़ा, हर जगह इसके साथ मैं जाती थी और वहां जब तक ये सीखता था टीचर को पहले बताते थे, क्योंकि इन बच्चों में इंस्ट्रक्शन जो है वो लेना थोड़ा दिक्कत होता है इनको, क्योंकि अपनी दुनिया में मगन होते हैं, तो हो सकता है कि कॉन्सेंट्रेट होकर के सुने ना, तो टीचर को मैं बताती थी, तो फिर मैं खुद इसे रिपीट करती थी। तो धीरे धीरे मतलब पुश करना होता है इन बच्चों को, तब जाके आप जान पाओगे कि इनका इंटरेस्ट कहाँ है। और इवन हमें डेवलप करना पड़ता है, इसका ना डांस में इंटरेस्ट था ना गेम्स में था, हमें पुश करना पड़ा और मोटिवेट करना पड़ा कि देखो अक्षय जैसे इनके नाम आते हैं वैसे आपका भी आएगा, फिर अपन वहां चलेंगे, घूमने का शौकीन ये शुरू से था। तो हमें सभी, मैं अपनी बात नहीं कर रही, सभी पेरेंट्स को अगर आप बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनका इंटरेस्ट ढूंढना भी पड़ेगा, और अगर नहीं है तो डेवलप भी करना पड़ेगा, और साथ में आपको पूरा डेडिकेटेड होकर के इनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो यकीन मानिए कोई ऐसी वो नहीं है दिक्कत कि आपका बच्चा आगे ना बढ़े, हो सकता है कोई पढ़ाई में, कोई म्यूजिक में अच्छा होता है, कोई डांस में होता है, तो सबके लिए कुछ ना कुछ अलग होता है, वो हमारे साथ भी है, कोई किसमें इंटरेस्ट है।
1: आई थिंक ये बात आपने बहुत अच्छी बताई कि चाहे कैसा भी बच्चा हो, चाहे किसी विशेष परिस्थिति से जूझ रहा हो या साधारण बच्चा हो, हर बच्चे में कुछ न कुछ एक तोहफा ईश्वर भेजता ही है। उस तोहफे को पहचान पाना ये माँ बाप का, उसके आसपास के लोगों का पहला कर्तव्य है, ये उनका ड्यूटी बनता है कि हम पहचाने हमारे आसपास में बच्चों में कौन कौन सी चीजें हैं जिनके जरिए उनको हम उनका आत्मसम्मान बढ़ा सकते हैं, उनका उनके प्रति खुद के प्रति जो सम्मान है वो बढ़ा सकते हैं। मैं कहीं पर पढ़ रहा था वो ये था कि अगर कोई भी आपको सम्मान नहीं देता है, दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है जो मैंने आज पढ़ी और मैं चाहता था कि इसको किसी के साथ शेयर करूं, लेकिन कौन किसके साथ शेयर कर सकता है ये पता ही नहीं चलता। था, लेकिन भगवान कुछ ऐसा ड्रामा बना देता है कि आज इसको शेयर करने का मौका मिल रहा है, वो भी अक्षय जी और प्रतिभा जी के साथ। मैंने पढ़ा था कि भले कोई भी आपका सम्मान न करे, याद रखना ईश्वर आप पे पूरा भरोसा रखता है। तो आप सोचिए, अगर ईश्वर आप पे भरोसा रखता है तो फिर किसी के सम्मान की क्या आवश्यकता है। उस भरोसे के दम पर हम कितने भी बड़े परिस्थिति को, चुनौती को पार कर सकते हैं। जैसा भरोसा प्रतिभा जी ने ईश्वर पर रखा, ईश्वर ने उन पर रखा, तभी उनके परिवार में एक ऐसा तोहफा भेजा, और उस तोहफे का कदर समझ करके उस तोहफे को आज इस मुकाम तक पहुंचाना कि भारत में कई बच्चे उनके जैसे बच्चे जो हैं उनको देख करके, उनसे सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ऐसे एक माँ के लिए वाकई में हमारे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद निकलता है। ऐसे परिवार के लिए हमारे दिल से बहुत बहुत उद्गार निकलता है। प्रतिभा जी, यहाँ पर मुझे एक और चीज सुनने का मन करता है कि ऐसी कई चीजें होंगी अक्षय जी की जो कि वो खुद से करना पसंद करते हैं, जो कि आपने या किसी और ने उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया है, उन्होंने खुद ही पिकअप किया है उस चीज को। ऐसी कौन सी नेचुरल उनकी फेवरेट्स हैं?
2: जैसे डांस हुआ, इसको ये बाकी सारी चीजें हो सकता है ये मेरे कहने से करता रहा हो, लेकिन डांस इसमें जब एक बार शुरुआत हो गई, हालांकि उसमें भी हमें इसको लगाना पड़ा, पर अब जो शुरुआत होगी तो एक यही ऐसी चीज है जो ये पूरे दिल से करता है। और इसके लिए अगर कहा जाए तो स्टेज तोड़ू परफॉर्मेंस होती है इसकी, और इसमें अपना पूरा स्ट्रेस भूल जाता है। मैं कहती हूँ कि हमारे बच्चों को हम जितना एक्सपोजर देंगे और जितना इंटरेस्ट डेवलप करेंगे ना, इनकी लिए लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी। क्योंकि जैसा मैंने बताया, इसमें पहले से बहुत सारे एंग्जाइटी स्ट्रेस के इश्यूज होते हैं, तो अगर आपको कोई अपनी रुचि और ऐसा शौक डेवलप करने का एरिया मिल जाए, बहुत फायदा होता है हमारे बच्चों को। और दूसरा, हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं और अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, तो ऐसा
1: और लोगों की खुशी देखते हैं वो हाँ, देखते हैं कि लोग खुश हो रहे हैं उनको देख करके हाँ। और वो खुशी एक ऐसी चीज है, वो एक ऐसा बेबाक मूक भाषा है जो कि व्यक्ति समझ हाँ। लेता है कि कोई व्यक्ति मेरे से जेन्युइनली खुश हो रहा है या कोई व्यक्ति दिखावे से खुश हो रहा है। खुशी को छुपाया नहीं जा सकता, खुशी पहुंच ही जाती है जी।
2: बिल्कुल, और इनकी जिंदगी में खुशी की सबसे ज्यादा जरूरत है
1: जी। एक और चीज जो मुझे यहाँ जानना है कि जैसे एक होता है कि डांस करना खुद में दूसरों के लिए, दूसरा होता है कंपटीशन। ये जो खेल में ये जाते हैं, यहाँ पे कंपटीशन या दूसरे लोग भी हैं या एग्जाम देने बैठते हैं, जनरली लोगों को एग्जाम से डर लगता है या कंपटीशन से डर लगता है, या जैसे ये प्रतियोगिताएं हो रही हैं, खेलकूद की भी प्रतियोगिताएं हो रही है, इसमें एक लेवल ऑफ एंग्जाइटी होता है कि भाई क्या होगा अगर मैंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, किसी ने मेरे से बेहतर परफॉर्म कर लिया तो थोड़ा सा ईर्ष्या भी आ जाता है। कभी इन चीजों को कैसे डील करते हैं आप?
2: शायद ये गॉड गिफ्ट है कि ऐसे बच्चों के अंदर ईर्ष्या की भावना मैंने देखी नहीं है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल भी हूँ, मैं बेसिकली साइकोलॉजिकल काउंसलर और स्पेशल एजुकेटर हूँ, तो मैंने देखा नहीं कि ज्यादा इन लोगों में कोई ईर्ष्या जैसी होती है। हाँ, कई बार एक घबराहट सी, वो तो हम में भी होती है, पर इनमें शायद कमी देखी है मैंने, वो घबराहट भी है, तो अपना कर करा के, क्योंकि अपनी दुनिया में लीन होते हैं, तो जो इनको करना है करा और आ गए वापस। बस हम इधर उधर देख करके ज्यादा टेंस होते हैं, लेकिन ये तो अपने टारगेट पे फोकस रखते,
1: ये एकदम अर्जुन की तरह होते हैं जो एक टारगेट पे फोकस होते हैं, बाकी हम जो होते हैं हम खुद को सामान्य समझते हैं, लेकिन हम बगैर जरूरी गैर जरूरी चीजों से इतने प्रभावित हो जाते हैं और हम फिर खुद को सामान्य कहते हैं। ये बहुत बड़ा सीखने जैसा पार्ट है इनके जीवन से।
2: बिल्कुल, और बस एक चीज जरूर है कि इनको एक मॉरल सपोर्ट होना जरूरी है। जब ये कहीं अकेले जाते हैं या कोई नई जगह जाते हैं, तो वो फियर ऑफ एंग्जाइटी और फियर ऑफ न्यूनेस की कोई नई जगह वो जरूर इनमें रहता है, तो हम पहले से मेंटली प्रिपेयर इन्हें कर दें, अगर कि हम यहाँ चल रहे हैं और यहाँ ये होगा, चीजें पहले से इनके लिए स्पष्ट अगर कर दी जाए तो दिक्कतें थोड़ी कम होती
1: है जी। अमूमन ये देखा गया है कि व्यक्ति जब किसी समस्या से जूझता है और जब उस पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे बड़ी खुशी होती है, बट अक्षय जी के और इनके जैसे कई बच्चों के केस में ऐसा होगा कि वो विजय प्राप्त करके भी उतने ही खुश है जितना समस्या में होते हुए खुश होते हैं, क्योंकि वो उससे काफी परे रहते हैं और उनके लिए वो मोमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है जिस मोमेंट में वो होते हैं, वो इतना पीछे का याद नहीं रखते जी। जब इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा था या जब इनको स्टेट लेवल रिकॉग्निशन मिल रहा था, तो उसके लिए आपने इनको कैसे प्रिपेयर किया? क्योंकि राष्ट्रीय सम्मान के लिए तो व्यक्ति को एक डेकोरम के साथ पहुंचना होता है, एक मेंटल प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो उसके लिए कैसे आपने प्रिपेयर

0: थोड़ी सी उस घटना को बताएं।
1: हाँ, ये हमारे लिए एक सपना था जो सच हुआ, कभी सोचा ही नहीं था। उस टाइम तो जब हमने इसके साथ काम करना स्टार्ट किया तो छोटी छोटी चीजों के लिए हम जूझ रहे थे कि कैसे हाँ करना सिखाएं, कैसे ना करना सिखाएं, कैसे चीजें मांगना सिखाएं। तो कहाँ सोचा था कभी कि कोई नेशनल अवार्ड या स्टेट अवार्ड मिलेगा, पर जब जब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो पता चला भाई ये तो बहुत ही स्पेशल है। और पढ़ाई भी शुरू हुई इसकी। और आपको इसका मैं बताना चाहूंगी कि CBSE में उससे पहले कभी ऑटिस्टिक बच्चा, मतलब ये स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कई सुविधाएं मिलती हैं, पर जब ये 9th में अपीयर हुआ तब इसका फॉर्म भरना था और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट था हमारे पास, लेकिन ऑटिज्म उस टाइम CWSN में जुड़ा हुआ नहीं था। तो वहां हमने इन लोगों को CBSE को लेटर भेजा और उन्होंने पहली बार अक्षय के कारण ऑटिज्म को चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड में जोड़ा, तो वहाँ एक शुरुआत हुई। फिर उसके बाद हमारे राजस्थान में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में जो ऑटिज्म था इसके बारे में, क्योंकि उस टाइम तक कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं थी, तो इनको MR यानी मेंटल रिटार्डेशन में डाला जाता था। तो वहाँ हमारा एक संघर्ष शुरू हुआ कि वुमेन राइट कमीशन में एक वाद दायर किया, तब वहां से शुरुआत हुई। करीब 3 साल बाद उन लोगों ने माना कि 99 में एक एक्ट आ चुका है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, जिसके जरिए ऑटिज्म एक डिसेबिलिटी अलग मानी गई है। तो हमारा यही कहना था कि कम से कम जो डिसेबिलिटी है उसका सर्टिफिकेट जारी किया जाए, कहीं और डिसेबिलिटी का ना किया जाए। तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए जब हम उलझ रहे थे तो हमने कहाँ सोचा था कि कोई नेशनल अवार्ड मिलेगा, लेकिन जब इन बाधाओं को पार करते हुए आगे आए धीरे धीरे धीरे धीरे, तो चीजें एकदम सामने आती गई और वहां पता चला कि कई चीजें ऐसी है जिनके लिए काम करना जरूरी है, क्योंकि जितने भी नियम थे कानून थे वो सब शारीरिक जो हमारे दिव्यांग साथी होते हैं उनके हिसाब से बने हुए थे 95 का एक्ट। फिर उसके बाद में हमारा बड़ा संघर्ष स्टार्ट हुआ कि इनको भी वो चीजें पहुंचानी है, वो सुविधा जो इनके लिए जरूरी है। तो एक बेसिक नीड जो इनकी पूरी हो, रीजनेबल अकोमोडेशन जिसे हम कहते हैं, कि इनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के हिसाब से चीजें कुछ फेवरेबल हो, तब जाकर के फिर वो संघर्ष शुरू हुआ। कई नियम भी बने हमारे राजस्थान में और उसके बाद फिर पढ़ाई इसका, मतलब इसको कॉलेज में आपको आश्चर्य होगा, इसको कॉलेज में एडमिशन देने से ही मना कर दिया था कि जो हमारे जयपुर के कॉलेज थे, दो कॉलेज ने मना किया जब हम एडमिशन के लिए गए, बोले हम इन बच्चों को एडमिशन नहीं देते। ये 2011 की बात है। फिर हमने इसको लेकर के कमिश्नर कोर्ट होती है वहां पे वाद दायर किया। मतलब हमें हर जगह संघर्ष करना पड़ा क्योंकि ये ज्यादातर पहला रहा हर चीजों में, तो जो पहला होता है उसके संघर्ष ज्यादा होते हैं
0: जी।
1: कोई दरवाजा खोलना है तो बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है।
0: लेकिन इनकी वजह से कितने लोगों के लिए दरवाजा खुल गया,
1: वो बहुत एक संतुष्टि का विषय कि ये एक कारक बना जिसकी वजह से बाकी बच्चों को भी एक सहज रास्ता मिल रहा है। तो ये बहुत खुशकिस्मत है कि शायद इसके जरिए ही और बच्चों की भी तकलीफें कम हो रही है। और जब इसने ग्रेजुएशन किया तो ये राजस्थान का पहला ऑटिज्म प्रभावित ग्रेजुएट बना। तो कहाँ तो एडमिशन ही नहीं दे रहे थे कॉलेज वाले, और एक कॉलेज ने हिम्मत करके एडमिशन दिया तो वहाँ उसने इतिहास रच डाला। फिर जाके जब इसे नेशनल अवार्ड आगे मिला तो वो हमारे लिए एक बहुत गर्व का विषय था। मतलब कोई भी माँ बाप और खुद ये बहुत एक्साइटेड था। और आप कह रहे कैसे प्रिपेयर किया, तो हमने इसे बताया कि आपको नेशनल अवार्ड मिल रहा है जो कि सबसे बड़ा अवार्ड होता है अपने हिंदुस्तान का, और वहाँ पे जो अपने प्रेसिडेंट है वो देंगे आपको अवार्ड। तो पूरी ड्रेस वगैरह एक हफ्ते पहले से शॉपिंग की तैयारियां शुरू हुई कि मुझे ये तो कपड़ों का बड़ा शौक है, तो जैकेट कुर्ता ये लूंगा और इस तरह से पूरी ड्रेस की चार तीन इवेंट थे, तो तीनों के लिए अलग अलग इसके लिए कपड़े लेने इसको अपनी पसंद के। और फिर जब हम दिल्ली गए तो वहाँ हर चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हमने इसे किया था, और मुझे लग रहा था शायद ये स्टेज के ऊपर हो सकता है घबराए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये बहुत कंफर्टेबल होकर के वहां गया और इसने बल्कि वहां पैर छुए, जो अपने वेंकैया नायडू जी थे उनके पैर छुए, तो एक बहुत अच्छा लगा। और जब हॉल पूरा गड़गड़ाहट से गूंज उठा, तालियों की गड़गड़ाहट से, तो कितना गर्व महसूस हुआ वो कोई भी पेरेंट्स और हम सोच सकते हैं कि वो कितना गर्व की बात है। तो रोल मॉडल का पुरस्कार मिला
0: जी। ये आप जब सुना रहे हैं तो आपके आवाज में जो खुशी है, आपके आवाज में जो गर्व है, वो मेरे कानों तक नहीं मेरे दिल तक पहुंचा, तो मैं समझता हूँ मैं श्रोताओं के भी दिल तक पहुंच रहा है। यहाँ मैं अक्षय जी से सवाल पूछना चाहूंगा। अक्षय जी, जब आप दिल्ली गए राष्ट्रपति जी से पुरस्कार लेने के लिए, तब आपको कैसा लगा?
2: वकैया नायडू थे।

0: हाँ फिर क्या हुआ, कैसा लगा वो?
1: सही
0: याद है
1: लगा।
0: वो टाइम याद है कैसे क्या क्या हुआ था?
1: हाँ, राष्ट्रपति से अवार्ड मिला था 3 दिसंबर 2018 को नेशनल, क्योंकि
0: क्यों मिला था?
1: बीए ग्रेजुएशन।
0: अच्छा, और
1: कौन?
0: दिल्ली में मिला था आपको या बॉम्बे में मिला था?
1: दिल्ली
0: दिल्ली में। कैसे गए थे आप दिल्ली?
1: प्लेन से
0: कैसा लगा प्लेन का सफर?
1: सही लगा।
0: बादलों में से देखने में अच्छा लगता है?
1: हाँ, और है ना, और है ना, मैं ना जून है ना 2022 में वहां बैंगलोर गया था वहां।
0: बैंगलोर भी गए हैं आप 2022 जून में,
1: हाँ,
0: और बैंगलोर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा?
1: बैंगलोर तो अच्छा लगता है। बैंगलोर कई बार जा चुका हूँ, तीन ती, तीन तीन चार चार बार।
0: अच्छा, आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है?
1: बैंगलोर,
0: बैंगलोर। आप बैंगलोर बार बार जाना चाहेंगे?
1: हाँ
0: और जयपुर में सबसे अच्छा क्या लगता है? जयपुर तो बहुत सुंदर है अपने आप में, पूरा दुनिया आता है जयपुर देखने के लिए। आपको जयपुर में सबसे अच्छा क्या लगता है?
1: हवा महल,
0: हवा महल। वेरी गुड, उसको तो देखने के लिए।
1: हवा महल ही विशाल जीपी, टी
0: अच्छा, और बैंगलोर में सबसे अच्छा क्या लगता है? टी
1: गार्डन। हाँ
0: गार्डन। और दिल्ली में
1: हाँ
0: क्या क्या अच्छा लगा आपको?
1: कुतुब मीनार।
0: कुतुब मीनार अच्छा लगा। और राष्ट्रपति भवन में जब आप गए तो जब आपको पुरस्कार दिया तो सबने ताली बजाई,
1: हाँ
0: और आपके मम्मी बता रहे थे कि वो टाइम इतने लोगों ने इतनी खुशी दिखाई, वो कैसा लगा आपको वो समय?
1: सही लगा।
0: ऐसा फिर से होने वाला है फ्यूचर में?
1: हाँ, और इसके बाद है ना नवंबर 2022 में वहाँ ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन गया था,
0: ब्रिस्बेन
1: ओपनिंग
0: गए थे आप ऑस्ट्रेलिया
1: सेरेमनी।
0: में।
1: वहाँ जेवलिन में सिल्वर मेडल जीता, डिस्कस में गोल्ड मेडल जीता, शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीता।
0: वेरी गुड, आप तो देश में नहीं विदेश में भी जाकर के आपने कितने
1: मैं तो
0: मेडल
1: पहला
0: जीते हैं।
1: फॉरेन कंट्री ऑस्ट्रेलिया गया हूँ।
0: पहला फॉरेन कंट्री ऑस्ट्रेलिया गए हैं, बहुत बढ़िया। और अकेले गए थे या मम्मी पापा भी साथ में थे? अच्छा,
1: वहाँ इंडिया का टाइम अलग, ऑस्ट्रेलिया का टाइम अलग अलग, 4.5 घंटे का डिफरेंस है आगे घड़ी।
0: वाह, 4.5 घंटे का डिफरेंस है। तो आपके साथ आपके मम्मी पापा भी गए थे?
1: केवल मम्मी गई थी, पापा को छुट्टी नहीं मिलती ऑफिस की।
0: देखो, पापा अगर आपके जैसे खेल कूद में थोड़े होशियार होते तो उनको भी छुट्टी मिल जाती है ना?
1: हाँ, और इसके बाद है ना फरवरी 2023 में अलवर में स्टेट गोल्ड मेडल जीता था।
0: वेरी गुड। जब आप विदेश में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, तो आपको वहां पर जब आपने खेला तो वहां पर तो और भी लोग थे, सिर्फ इंडियन लोग नहीं थे, विदेश वाले भी थे, तो आपको कैसा लगा?
1: सही। और है ना जो जून में फ्रांस में इंटरनेशनल होने वाला था ना, मेरे को भी फ्रांस से जाना चाहिए था, मेरे को मम्मी के साथ जाना चाहिए था फ्रांस।
0: तो अभी आप आएंगे, यहाँ पैरालंपिक्स होने वाला है उसके लिए आएंगे फ्रांस में?
1: कब?
0: पैरालंपिक्स फ्रांस में है ना, ओलंपिक्स के बाद पैरालंपिक्स होता है, तो उसके लिए आप आने
1: ओके।
0: वाले हैं? आप फ्रांस आना चाहते हैं? फ्रांस बहुत अच्छी जगह है, आना चाहते हैं?
1: हाँ, आना चाहते हैं मैं।
0: बिल्कुल, हमारी तो शुभेच्छा है कि आप देश का नाम हर देश में जाकर के रोशन करें। इंडिया कैसा
1: हाँ,
0: लगता है
1: सही
0: आपको? भारत कैसा लगता है?
1: लगता है, इंडिया सही है। अच्छा लगा।
0: अच्छा, और आप विदेश में ऑस्ट्रेलिया भी गए और इंडिया में भी रहे, तो आपको इंडिया में कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी?
1: इंडिया में बैंगलोर और चेन्नई।
0: अच्छा, और इंडिया का?
1: और है ना लास्ट ईयर मई में वहाँ चेन्नई गया था, डिपेंड प्रोग्राम था, पॉन्डिचेरी भी गया था वहां से लौटते टाइम।
0: आप तो मेरे से भी ज्यादा घूमे हुए हैं, सबसे ज्यादा आपने इतना घूमा है पौंडीचेरी। आप तो एक एक शहर का नाम ऐसा बता रहे हैं जैसे मेरे को लग रहा है पूरा इंडिया का मैप बनता जा रहा है मेरे सामने। एक चीज आप
1: मैं
0: बताइए, आपको भारत की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? भारत आपको क्यों पसंद है?
1: क्योंकि इंडिया ऐसे ही है पसंद, इंडिया तो।
0: हाँ, क्योंकि इंडिया तो इंडिया है, इंडिया जैसा कुछ भी नहीं है ना?
1: और है ना मैं तो चेन्नई कई बार जा चुका हूँ, 3 बार।
0: और आपको खाली टाइम में क्या करना पसंद है?
1: क्या?
0: जब आप खेल नहीं रहे हैं, जब आप डांस नहीं कर रहे हैं, जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो जब आप फ्री होते हो उस टाइम पे आप क्या करना पसंद करते हैं?
1: खाली टाइम क्या करते हो? मेडिटेशन।
0: वेरी गुड, आपको मेडिटेशन भी करना आता है? कैसे
1: हाँ,
0: करते हैं आप मेडिटेशन, बताएंगे हमारे श्रोताओं को?
1: ईयर प्लग लगा के,
0: फिर क्या करते हैं आप उसमें?
1: लगा के मेडिटेशन
0: 10 मिनट कर लेते हैं आप मेडिटेशन?
1: 10 मिनट।
0: वेरी गुड, 10 मिनट तो कई लोग साधारण चुपचाप बैठ भी नहीं सकते, आप तो मेडिटेशन कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है।
1: हाँ, और इसके बाद है ना लास्ट जून में कैलकाटा वहां भी गया था।
0: अच्छा, कलकत्ता भी आप होकर के आए हैं, आपने पूरा भारत घूम लिया है।
1: हाँ,
0: अच्छा, अभी अब फिर हम वापस प्रतिभा जी से बात करते हैं, फिर आपके पास आएंगे है ना?
1: अभी और है ना, और इस साल है ना केबीसी में जाने की बारी है। इस साल कौन बनेगा करोड़पति में?

0: अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पे।
1: वो तो आप पक्का जाएंगे और आप ही करोड़पति बनेंगे।
0: आगे एवे इस साल केबीसी में सिलेक्शन हो जाए, वहाँ वहाँ मोम कई जाने को फिर से मिले मुझे केबीसी में, कौन बनेगा करोड़पति।
1: बिल्कुल, हमारी शुभेच्छा है, उसमें जरूर जाएं। और जिस दिन आप जाए उस दिन बारिश नहीं होना चाहिए बॉम्बे में, और भीड़ भी कम होनी चाहिए उस दिन।
0: फिर मुंबई में बारिश तो अक्टूबर में चली जाती है, बारिश सितंबर के लास्ट वीक में।
1: लेकिन हम मुंबई वालों को बोलेंगे कि अक्षय जी आ रहे हैं तो बारिश नहीं करवाएं, ठीक है ना?
0: बारिश तो हाँ।
1: अभी हम मम्मी से बात करते हैं। प्रतिभा जी, आपको मैं समझता हूँ, अगर आप आज बैठ करके इस बात को सोचें तो अक्षय जी के इस विशेष चुनौती ने न केवल उन्हें विशेष बनाया लेकिन आपके परिवार को भी बहुत विशेष बनाया है। और उनके जरिए जिन अनुभवों को आपने किया है, मैं समझता हूँ भारत में किसी भी सामान्य परिवार में ऐसे अनुभव नहीं होते हैं। भले वो चुनौती वाले अनुभव हों, लेकिन चुनौतियों के अलावा जो खुशी के क्षण हैं, जो गौरव के क्षण हैं, वो भी इतने नहीं होते जितने आपके परिवार में है। आपने इस पूरे जर्नी में, आपने, आपके हस्बैंड ने किस तरीके से खुद को तैयार किया या कैसे आपने खुद को प्रिपेयर किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
2: जैसा कि मैंने बताया, स्टार्टिंग में जब पता चला तो एकदम टूट गए थे, लेकिन फिर वही डिसाइड किया कि जीवन में दो रास्ते हैं, या तो हंस हंस के चीजों का सामना करो या फिर रो करके सब कुछ खत्म कर दो, तो पहला रास्ता ज्यादा सही है। और फिर यही ठाना कि जैसे इसकी बहन है वो इससे 5 साल बड़ी, कि जैसे उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं वैसे इसको भी बढ़ाना है। और फिर हमारी जो यात्रा शुरू हुई वो आज दिन तक जारी है। मैं एक बात सारे ही लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में कोई ऐसा विशेष बच्चा है तो आपकी जिंदगी असाधारण बन जाती है, जिसमें चुनौतियां भी बहुत ज्यादा होती है। खुशी के पल तो बहुत थोड़े आते हैं कभी कभी, जो हमारे को जीने के लिए एक जिसे कहते हैं ना सपोर्ट सिस्टम है और ऑक्सीजन की तरह से है, बल्कि चुनौतियां बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि समाज में इन लोगों के प्रति जागरूकता का अभाव है। और दूसरे समाज का जो माइंड सेट है वो भी कुछ ऐसा है कि हम जो ये लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, खासतौर पर ऑटिज्म और बौद्धिक दिव्यांगता के बारे में अगर मैं बात करूं तो लोगों को लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, और लिटरली इनके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो अपने आप ही पेरेंट्स को बहुत ज्यादा तोड़ता है। लेकिन हमें बस यही है कि हम अपने बच्चों को जितना हो सकता है आगे बढ़ाएं और समाज की सोच भी बदले। और मैंने फिर यही शुरू किया कि पहले तो खुद कानून पढ़ा, और कानून पढ़ने के बाद इनके अधिकारों के लिए जंग छेड़ी, और हर जगह, चाहे वो हमारा खुद का राजस्थान हो या भारत सरकार, हर जगह अपनी बात पहुंचाई और रखी, और चीजें सकारात्मक हुई। ऐसा नहीं है नहीं होता, लेकिन हाँ बहुत बरसों लगते हैं चीजें चेंज होने में। तो थोड़ा सा सिस्टम अगर हमारे इन बच्चों को लेकर के संवेदनशील हो तो वो बहुत अच्छा है। और आज मैं वही कर रही हूँ कि मैं राजस्थान में गेस्ट फैकल्टी के रूप में जितने भी सरकारी संस्थान है, चाहे वो हमारा ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल हो जयपुर का, या फिर राजस्थान पुलिस अकेडमी हो, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान हो, खुद सचिवालय हो जहाँ मेरा बेटा पोस्टेड है, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किए खासतौर पे, जिसमें हम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करते हैं कि नया जो दिव्यांग अधिकार कानून आया है 2016 में उसकी जानकारी देके, इसमें 21 विकलांगताएं हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, उसकी जानकारी देते, ताकि जो बच्चे या जो व्यक्ति अगर स्कूलों में पढ़ रहे थे उन्हें वो सारे अधिकार मिले जो इन कानून के जरिए उन्हें मिले हैं, या फिर अगर किसी कार्यस्थल पर या ऑफिस में कोई दिव्यांग काम कर रहा है तो वहां भी उसके प्रति जो एक रवैया है कर्मचारियों और अधिकारियों का, वो संवेदनशील होना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने जो सब कुछ सहा है और सामना किया है उसके बाद हमने यह जाना कि जागरूकता ही सबसे बड़ी पहली और सबसे बड़ी चीज है। आज अगर हम जागरूक हो जाएंगे तो नजरिया हमारा जो सोचने का नजरिया वो जरूर बदलता है। और अब हम उसी दिशा में लगे हुए हैं, हमारी अपनी खुद की हम संस्था है जो कि अभिभावकों के द्वारा ही शुरू की गई है, और हम जगह जगह ये प्रोग्राम करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम भी करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं।
1: संस्था का नाम भी बताएंगे, संस्था का नाम थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को।
2: हाँ, हमारी जो संस्था है उसका नाम है सपोर्ट फाउंडेशन फॉर ऑटिज्म एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारे राजस्थान का अधिकारियों का प्रशिक्षण संस्थान है, इसके करिकुलम में जो इनको ट्रेनिंग दी जाती है अधिकारियों को, वहां कर्मचारियों को, उसके ट्रेनिंग करिकुलम में हमने ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को डलवाया, ताकि जो ट्रेनीज आए, देखिए जो नियम

0: के शब्दों में स्ट्रैटेजीज में चेंजेस ला सकते हैं, लोगों में चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि मैं कहूँ आप थोड़ा ठीक से इनके साथ पेश आए और एक सरकारी अफसर अपने नीचे के अधिकारियों को कहे कि आप इनसे ऐसे पेश आए, तो जरूर असर करता है।
1: बिल्कुल सही है।
0: इसमें एक और चीज मुझे ये जानना था कि जैसे आप ट्रैवल भी करते हैं इनके साथ और घर का माहौल या सिटी का माहौल तो इनका जाना पहचाना माहौल होता है, तो ये उसको कई तरीके से खुद ब खुद ही डील कर सकते हैं। लेकिन जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे फ्लाइट में चाहे ट्रेन में, जहां पर बहुत सारे अनजान चेहरे हैं और बहुत सारे अनजान एक्सपीरियंसेस हैं, फॉर एग्जांपल लंबा सफर ट्रेन का हो या फिर फ्लाइट का, अचानक से हवा में उड़ना, ये सब चीजें जब होती हैं तो उसके लिए आप इनको कैसे प्रिपेयर करते हैं या उस समय इनका कैसे वो होता है?
1: शुरुआत में तो बहुत दिक्कत आती थी जब ये छोटा था, तो इवन हमें ट्रेन में भी कहीं जाना होता था तो जैसे जयपुर से दिल्ली, तो वो 5-6 घंटे भी हमारे लिए बहुत बैड एक्सपीरियंसेस देके जाते थे कि कैसे हम इसको शांत करके बिठाएं या कंफर्टेबल फील कराए। फिर धीरे धीरे हमें समझ आने लगा कि इनको एंगेज करना जरूरी है, तो कुछ ना कुछ चीज इसके हाथ में हम देते थे जिससे ये अपना टाइम पास करता था, और फिर धीरे धीरे इसकी आदत होने लगी जैसे जैसे समझ बढ़ती। ये सिर्फ अच्छे के साथ है, सभी बच्चों के साथ है, इवन हम लोगों के साथ, कि धीरे धीरे जैसे हमें एक्सपोजर और हम बाहर जाते हैं तो हम अभ्यस्त होने लगते हैं। और इनकी तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि अपनी एक खोल में ही बंद रहते हैं, जब बाहर निकलते तो उन्हें घबराहट होती है क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो हमें वो सिखाना है कि सोसाइटी के साथ जाके कैसे इंटरेक्ट करना है। हालांकि मैं ये नहीं कहती कि 100% ये कर पाते, लेकिन ये आगे निकले तो सही, हम इन्हें मौका तो दें और जितना बाहर लेके जाएंगे वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। अभी से कहीं कोई ज्यादा इतनी दिक्कत नहीं होती, चाहे वो एयर ट्रेवल हो, ऑस्ट्रेलिया जब हम गए तो करीब 15-16 घंटे से भी ज्यादा का सफर रहा था हमारा, जो मेरे लिए बहुत टायरिंग था, लेकिन ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि मुझे जाना है। ये होता है कि कई बार ओवर एग्जेशन, घर में तो एक कंफर्ट जोन में रहते हैं पर बाहर जाते हैं तो समय पे कई बार खाना भी नहीं मिल पाता, टाइम पे रेस्ट नहीं मिल पाता, और एक जो एंग्जाइटी आप बोल रहे हैं घबराहट लोगों से मिलने में वो होती है, तो वो इसे ऐसा नहीं, इसे नहीं होता, होता है, लेकिन हम किसी न किसी तरह से उन चीजों को मैनेज करते हैं, खुद भी मैनेज करने की कोशिश करता है। इसीलिए मेडिटेशन जब ज्यादा दिक्कत में होता है तो खुद अपनी ईयर प्लग लगा करके मेडिटेशन करता है ताकि अपने आप को रिलैक्स फील करे। अब जो भी परिस्थितियां उसमें किस तरीके से अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जिया जाए वो तो हमें सिखाना ही होगा अपने बच्चों को। और बस तो यही है, मैं इस प्रोग्राम के जरिए पूरी सोसाइटी से जो भी सुन रहे हैं मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी। एक लेख था जिसके अंदर से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑटिज्म और बौद्धिक दिव्यांगों के लिए या किसी भी दिव्यांग के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती, तो उसका जवाब ये था समाज। यानी ये समाज है हमारा जो इनके लिए इतना दुराग्रह रखता है या बाधाएं खड़ी करता है या इन्हें ह्यूमिलेट करता है, जो इनके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ का कारण होता है और ये मानसिक और शारीरिक रूप से ज्यादा टूटते हैं। तो इस समाज को इन लोगों की तकलीफें समझनी ही चाहिए और इनके साथ एक संवेदनशील व्यवहार करना बहुत जरूरी है। और ये बात तो किसी के साथ भी हो सकती है, तब भी तो हमारा व्यवहार बदलेगा ना, तो क्यों ना हम इन ऐसे बच्चों और युवाओं को अपने परिवार के सदस्य जैसा मान सम्मान दें और उनकी तकलीफों को समझें।
0: ये आपने एक बहुत ही बड़ी बात कही कि सबसे बड़ी समस्या व्यक्ति के लिए उसके तन से कम उसके मन में ज्यादा आता है और वो मन की समस्या जो है उसके जन जो उसके आसपास में होते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। समाज अगर थोड़ा समझदार बन जाए तो किसी के लिए भी रहना या उस अपनी परिस्थितियों से पार हो पाना मुश्किल नहीं है। आपके परिजनों ने भी इसमें आपको बहुत साथ दिया या कैसा रहा उनका शुरू शुरू का या आज कैसा है, कैसा रहा आपका सफर?
1: हम लोगों की पहले तो जॉइंट फैमिली थी, तो मेरे जो फादर इन लॉ थे वो खुद एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे, हालांकि वो ऑटिज्म वगैरह का तो नहीं सुना था उस टाइम किसी ने भी, 96 की बात है तो नेचुरली इतना ज्यादा कुछ पता ही नहीं था, पर उन्होंने काफी सपोर्ट किया। और उसके बाद फिर जब हम न्यूक्लियर फैमिली के रूप में शिफ्ट हो गए फादर इन लॉ के बाद, तब मेरे हस्बैंड ने पूरा कोऑपरेट किया और मेरी जो डॉटर है वो भी इसको बहुत गाइड किया करती थी, बल्कि इसने इसके अंदर जो भी एम्बिशियस आई वो सब उसको देख के ही आती थी, जैसा दीदी ने किया वैसे ही मैं भी करूंगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए टर्निंग पॉइंट रहा। दूसरे जब मैं ये मानती हूँ कि जब आप कोई संघर्ष शुरू करते हो और आपने कोई एक टारगेट बना लिया है तो एक तो फिल्म का

0: पहला था ये कि जब आप किसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो जो सारी कायनात है वो उसी दिशा में आपको सपोर्ट करती है। ये सच्चाई मैं अपने जीवन से ये मानती हूँ कि हमें कहीं ना कहीं ऐसे भगवान के भेजे हुए एंजल्स मिले जिन्होंने हमें हमारे इस रास्ते को थोड़ा आसान बनाया। और अगर समाज में जागरूकता का अभाव कम है लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ना जानते हुए भी संवेदनशील है, तो वही है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। समाज के लोग अगर हमारे साथ जुड़ते हैं और ये सिस्टम भी इन चीजों को लेकर के थोड़ा अपनी जो दायित्व है उसको बेहतर तरीके से जाने समझे तो चीजें इतनी दिक्कत ना हो जो हम कहते हैं कि दिव्यांगता एक अभिशाप है, शायद वो ना रहे अगर हम इन चीजों पे गौर करें और ध्यान दें।
1: अभी आपने लोगों को एक ऐसा महामंत्र दिया जो कि मैं समझता हूँ हम जानते हैं लेकिन कभी उस पर हम गौर नहीं करते हैं, और जितना हम इस पर गौर करना भूल जाते हैं इतना हम हमारे आसपास में ऐसे लोगों के लिए समस्या खड़ी कर देते हैं। तो ये जो एक सद्भावना है दिल में, ये होना दिमाग में, ये समझ होना कि मैं अपने आप को किस प्रकार से रखूं ताकि सामने वाले को मदद मिल सके, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी सहायता हो सके, ये बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे अक्षय जी के पास उनकी बहन है और भी लोग हैं जो उनको प्रेरित करते हैं, ऐसे श्रोता साथियों आपके भी आसपास में कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं, अगर आप उनके लिए एक सहयोगी बनकर के उभरते हैं तो उनको बहुत बहुत सुकून मिलेगा कि कोई है हमारे साथ खड़े होने वाला। अभी हम वापस जाएंगे अक्षय जी के पास कुछ सवाल पूछने के लिए। अक्षय जी, आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
2: छोले भटूरे पिज्जा।
1: छोले भटूरे पिज्जा, वेरी गुड। इंडिया का भी है और विदेश का भी है। और रंगों में सबसे अच्छा रंग क्या लगता है? रंगों में सबसे पसंदीदा रंग कौन सा?
2: हरा कलर।
1: हरा क्यों पसंद है आपको?
2: क्योंकि अदानी हो जाए।
1: अच्छा, और जगह में तो आपने बताया आपको बैंगलोर सबसे ज्यादा पसंद है ना?
2: और है ना, दिसंबर में वहाँ भी गया था, जमशेदपुर सफल अवार्ड मिले थे मम्मी के साथ।
1: जमशेदपुर भी गए हैं हम तो। आप जितनी भी जगह जाते हैं हर जगह का आपको कुछ न कुछ अच्छा लगता होगा, है ना?
2: हाँ, और है ना, लास्ट में मुझे समाज से अवार्ड मिला था ग्लोबल एक्सीलेंसी।
1: हाँ, और आप अपने जैसे जो साथी हैं आपके या आप जानते हैं जिनको आप जो भी सुन रहे हैं आज, उनको अगर आप कुछ बोलना चाहें, कुछ गुड विशेस देना चाहें या कुछ उनको अच्छा बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे?
2: पता नहीं
1: क्या करना चाहिए, अगर कोई खेलने जा रहा है तो उसको क्या करना चाहिए?
2: मेहनत करनी चाहिए।
1: और आप मेडिटेशन करते हैं तो लोगों को मेडिटेशन भी करना चाहिए, है ना?
2: हाँ।
1: मेडिटेशन करते तो आपको कैसा लगता है?
2: सही
1: लगता है। आप भगवान से भी बातें करते हैं?
2: क्या
1: भगवान से बात करते हैं आप?
2: हाँ।
1: क्या बोलते हैं आप उनको?
2: मालूम नहीं, बता नहीं हूँ क्या बोलते
3: हैं।
2: करते हैं ना, मेरा मन अच्छा ये सब।
1: और आप कभी माउंट आबू आए हैं?
2: एक ही बार आए हो माउंट आबू।
1: माउंट आबू तो आपके घर के ज्यादा नजदीक है, आपको माउंट आबू जल्दी आना चाहिए। आप माउंट आबू आएंगे तो आप हम लोगों से सबसे मिल सकते हैं वहाँ पर।
2: आप कब आए माउंट आबू?
1: आप जब बोलेंगे।
2: इसी साल?
1: हाँ बिल्कुल, इस साल आना जरूरी।
2: सितंबर।
1: माउंट आबू में पहाड़ है, झरने हैं, जंगल है, जानवर है। जानवर पसंद है आपको? कौन सा जानवर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
2: पता नहीं, हम
1: शेर, टाइगर, डॉग, कैट।
2: और घर पे पेंटिंग भी करता हूँ, चेस भी खेलता हूँ।
1: आपकी पेंटिंग कभी आप दिखाइएगा हमें जरूर।
2: और है ना, मेरा 20 तारीख को दूसरा टूर्नामेंट है चेस का, झाला नाम में।
1: अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, चेस खेलना आपको किसने सिखाया?
2: ब्रिज कोच ने सिखाया था, चेस के सर ने, टीचर ने, कोच ने।
1: चेस में तो इतना सोचना पड़ता है, मेरे को ही कभी कभी ऐसा लगता है कि बाप रे मेरे से नहीं होगा। आपने कैसे कर लिया इसको? डिफिकल्ट है चेस या आसान है?
2: आसान है।
1: सबके लिए या सिर्फ आपके लिए?
2: सबके लिए।
1: देखिए श्रोता साथियों, अक्षय जी कह रहे सबके लिए चेस खेलना आसान है।
2: और है ना, चेस में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट खेलूंगा, फिर स्टेट, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल खेलूंगा चेस में।
1: बिल्कुल, हम सबकी ये शुभकामना है कि आप इंटरनेशनल तक जाएं, और केवल चेस में ही नहीं जो भी चीज आप करें उसमें आप पूरे विश्व भर में भारत का नाम रोशन करें। आखिरी सवाल आपसे ये पूछना था कि आपको आपके नाम का मतलब पता है? अक्षय शब्द का मतलब पता है?
2: पता नहीं।
1: अक्षय मतलब वो जो कभी भी फिनिश नहीं होता है, जिसका कभी एंड नहीं होता है, जो हमेशा चलता रहता है।
2: और मेरे को इस ड्रेस हो रहा है एनजाइटी हो रही है।

0: परेशानी में हूँ।
1: हाँ, लेकिन आप तो इतने बहादुर हैं ऑलरेडी, आपने इतना सब कुछ किया तो आपकी एंजाइटी, आपकी परेशानी जल्दी खत्म हो जाएगी। हम सब आपके साथ हैं।
0: कितने दिन में?
1: बहुत जल्दी, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे खत्म हो जाएगी। हम सब आपके लिए गुड विशेष रखते हैं, हम सब आपके लिए अच्छा अच्छा सोच रहे हैं और भगवान भी आपके लिए अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, तो आपकी एंजाइटी, आपकी परेशानी एकदम ऐसे चुटकी बजाते खत्म हो जाएगी। ठीक है ना प्रतिभा जी? अक्षय जी से बात करके तो बहुत अच्छा लगा और आपसे बात करके भी बहुत कुछ जानने सीखने को मिला। आप अगर कोई ऐसा मैसेज देना चाहें हमारे श्रोताओं को जो एक माँ के तौर पे आप देना चाहती हैं या एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पे आप देना चाहती हैं और एक दोस्त के तौर पे देना चाहती हैं, तो क्या वो मैसेज होगा?
0: एक इंसान के तौर पर ही मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि माँ एक इंसान है, सोसाइटी में भी हम लोग सब एक इंसान है, तो हमारे अंदर हम कितनी ही ईश्वर की पूजा करते हैं तो ईश्वर भी हमें यही कहता है कि हर इंसान को इंसान के प्रति बहुत प्रेम और दयालु होना चाहिए। वही चीजें हमें रखनी चाहिए। हमारे घर में ही कोई दिव्यांग हो तभी हमारी सोच बदले, ये जरूरी नहीं है। हमें वैसे भी ऐसे इंसानों के प्रति जिन्हें ज्यादा प्रेम और स्नेह की जरूरत है उनके प्रति संवेदनशील होना ही चाहिए। यही ईश्वर की शायद सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि हम ही इन्हें जाने अनजाने में न जाने कितना दुख और तनाव दे जाते हैं जो इनके दिमाग में घर करता रहता है, और वो इनके अभिभावकों को बहुत तोड़ता है और इन्हें तो खैर तोड़ता ही तोड़ता है। और अगर एक सच्चाई देखा जाए, क्योंकि मैं इस फील्ड में बरसों से काम कर रही हूँ, हमारे जैसे अभिभावकों का सबसे बड़ा जो दुख है या सोच है वो यही है कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि ये लोग इस समाज से इतना नहीं लड़ सकते या जूझ सकते जैसा आप और हम कर सकते हैं। तो वो ऐसा समाज हम क्यों ना बनाए जहाँ पे इन लोगों के लिए जीना थोड़ा आसान हो, चीजें थोड़ी बेहतर हो। फूल अब आप हम देखते हैं कि अलग अलग रंग के फूल भगवान ने बनाए, तो ऐसे इंसान भी यार अलग अलग है, किसी में कोई कमी है तो वो खूबी भी तो है साथ। तो ऑड वन आउट वाला हमारा जो रवैया है वो नहीं, वो जो भी है जैसा भी उसको हम बहुत आगे बढ़ावा दें, दिल से उसको एक सपोर्ट करें और उसकी बाधाएं दूर करें, ऐसे समाज की हम कल्पना करें। और ये असंभव नहीं है, ये हो सकता है, सिर्फ अपने को चेंज करना है।
1: ये एक मुझे याद दिलाता है इस चीज का कि भविष्य का डर हर एक को होता है, चाहे वो दिव्यांग हो या ना हो, भविष्य से लोग अक्सर डरते हैं। और इसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि उनको अपने में उतना भरोसा नहीं होता या अपने आसपास में इतना वो भरोसा देख नहीं पाते हैं कि उससे वो कनेक्ट कर सके। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि कुछ लोगों को विशेष आवश्यकता होती है भविष्य की प्रूफिंग करने की, तो कभी आपका भी संकल्प चलता है ऐसा कि क्या ऐसा किया जाए या कुछ ऐसे आइडियाज सामने रखे जाए जो समाज अपने में धारण करे, जिससे अक्षय जी और या उनके जैसे जो एक समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उनको सहयोग मिल सके?
0: जी हाँ, हम लोग देखिए जैसा मैंने बताया कि समाज का नजरिया कैसे चेंज हो, तो पहली चीज तो अवेयरनेस, उस पर हम डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं। और हर जगह हम सिर्फ दिव्यांगों और दिव्यांगों के अभिभावकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सामान्य जन ब्यूरोक्रेसी जैसा मैंने बताया, इन सबको हम जिसे कहते हैं कि इंक्लूसिव सेटअप में काम करते हैं, ताकि वो भी हो, दिव्यांग भी हो, और वो लोग समझे जो ब्यूरोक्रेट्स है, राजनेता है, सरकार के प्रतिनिधि और समाज के लोग, सब जुड़े हमारे बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ, उनकी सुने, उनको समझे, इसके प्रोग्राम हमारे करते रहते हैं। और अभी फिर 3 अगस्त को हमारा जयपुर में जवाहर कला केंद्र में ऐसा ही प्रोग्राम है म्यूजिकल, जिसके अंदर हमारे दिव्यांग बच्चे भी गाएंगे, उनके अभिभावक भी गाएंगे, और सामान्य जो शौकिया कलाकार है वो भी है ना, इन लोगों के साथ मिलके इनका हौसला बढ़ाने वाले हैं। तो ये तो हम जागरूकता के लिए कर रहे हैं। और रही बात दूसरा कि हम इस पे भी काम कर रहे हैं, करीब 7-8 महीनों से कुछ पेरेंट्स इस चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं हमारे साथ, कि कुछ ऐसा कम्युनिटी लिविंग का हम करें जहाँ पे ऐसे पेरेंट्स एक साथ रहे और फिर एक दूसरे के साथ ज्वाइंट फैमिली की तरह से अगर रहे, तो कल को हम कोई एक पेरेंट्स ना भी रहे तो कम से कम दूसरे ही उनके बच्चों को संभाले। पर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, आर्थिक भी संसाधनों की कमी है, होती है, तो पर उम्मीद करते हैं कि एक दिन इस दिशा में कुछ कर पाए और सरकार से भी इस दिशा में हम चाहेंगे कि कुछ मदद मिले और कुछ ऐसे संवेदनशील लोग जो कि अच्छे अच्छे चीजों से जुड़े हुए हैं वो भी इस दिशा में हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए सोचे कि कुछ हो सके। हम तो अपने लेवल पे कर ही रहे हैं प्रयास, पर बिना समाज की कुछ भी चीज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो सबको इन चीजों के बारे में

0: समझना ही चाहिए।
1: और पूरा विश्व एक परिवार जब हम ये कहते हैं तो इसे कहने की बात नहीं, इसको समझने और दिल से इसको जीने की बात है। पूरा विश्व, पूरा समाज हमारा परिवार है, और इस वजह से अगर कोई भी चाहे तो कुछ भी एक बदलाव ला सकता है। किसी का डायरेक्ट कनेक्शन होना इसमें आवश्यक नहीं है। प्रतिभा जी, आपसे बात करते हुए बहुत बहुत अच्छा लगा। आप वाकई में बहुत प्रतिभावान हैं, इस वजह से ईश्वर ने आपका नाम आपके माता पिता के द्वारा प्रतिभा रख पाया और आपको ही चुना अक्षय जी का नाम अक्षय रखवाने में, क्योंकि जैसे कि उनका नाम का अर्थ है अक्षय, जिसकी कभी जो कभी क्षय नहीं होता। एक ऐसा स्पिरिट, एक ऐसा जज्बा जो लोगों को छू जाता है और उन लोगों को भी प्रभावित करता है कि वो भी आगे बढ़े। आपको वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं चाहूंगा कि आप कभी दोबारा हमारे साथ जुड़े और भी ऐसी जो अनुभव की बातें हैं वो हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि इस विषय में जागरूकता लाना वाकई में हमारा कर्तव्य बनता है और इस कर्तव्य को रेडियो मधुबन जरूर निभाना चाहेगा। उम्मीद करेंगे कि आप इसका अवसर हमें जरूर देंगे।
0: नहीं बिल्कुल, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि रेडियो मधुबन तो वैसे इतने अच्छे कार्यों से जुड़ा हुआ है, और जो ब्रह्म कुमारी संस्थान है मैं उसके बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। अक्षय हर शनिवार को वहाँ जाता है, पहले तो ये रोज जाया करता था। जब ये बहुत ज्यादा तनाव में था तो वहाँ जो दीदी है उन्होंने इसको बहुत संभाला, और जो मुरली करवाते हैं उसके जरिए इसको बहुत मॉरल सपोर्ट मिला, और आज भी जैसा इसने बताया वही ये सुनता है। तो आपके जरिए तो वैसे ही बहुत अच्छे स्पिरिचुअल के काम हो रहे हैं कि किस तरह से हम हमारा पर्सनैलिटी ग्रोथ और हमारी एक सोच विचार बहुत पवित्र हो। तो आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा अवसर आपने हमें दिया, और आपके श्रोताओं के जरिए हम सीधे कनेक्ट हो पाए अपनी बात कहने के लिए। और यकीनन अगर आप दोबारा भी कभी हमें बुलाना चाहेंगे तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि आप हमारे इस जागरूकता मिशन में आप हमारे सहयोगी बन रहे हैं। सच में दिल से बहुत बहुत आभार।
1: आभार तो ऊपर वाले का जिसने इस सुंदर दिन का एक पहले से प्लानिंग किया हुआ था, और मैं समझता हूँ हमारे श्रोता साथियों को वो मासूमियत, वो प्यूरिटी, वो पवित्रता, वो निश्चलता वो भा जाएगी जब वो इस एपिसोड को सुनेंगे, क्योंकि ईश्वर का जो प्यार है या ईश्वर का जो स्वरूप है वो इसी निश्चलता में है, वो इसी बेदाग सादगी में है जो कि अक्षय जी में है। और इस सादगी को संभाल करके उसको आगे बढ़ाने में जो आपने, आपके परिवार ने मदद किया है, उसके लिए मैं समझता हूँ ईश्वर भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता रहेगा। आपका, अक्षय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय जी थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ बात किए हमको बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा? फिर दोबारा कभी आप बात करना चाहेंगे हमारे साथ? बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जो आप मेडिटेशन करते हैं ना, कान में लगा करके सुनते हैं, वो जरूर करते रहिएगा, उससे आपका एंग्जायटी, आपकी परेशानी एकदम ऐसे खत्म हो जाएगी। ठीक है,
0: नमस्ते।

0: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों की गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करते हैं। हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपको चिंतन की एक नई दिशा देना। तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें। ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन। आप सुन रहे हैं ज्ञान चिंतन। हमेशा की तरह आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। बदलती हुई जीवन शैली, तेज होती रफ्तार और बढ़ती अपेक्षाओं के इस दौर में एक विचार बार बार हमारे मन में प्रश्न बनकर उभरता है, क्या आधुनिक सुविधाओं के बीच हम सच्चा सुख पा रहे हैं? शायद इसी प्रश्न का उत्तर छिपा है एक सरल लेकिन गहरे सूत्र में, सरल जीवन उच्च विचार। हाँ मित्रों, यही है हमारा आज का विषय, सरल जीवन उच्च विचार। आज का युग अत्यंत तेज, चमकदार और प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है। चारों ओर सुविधाओं की भरमार है, तकनीक ने जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ साथ तनाव, असंतोष और बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में महात्मा गांधी द्वारा दिया गया यह विचार पहले से अधिक कहीं प्रासंगिक प्रतीत होता है। सरल जीवन का अर्थ अभाव या त्याग नहीं है, बल्कि आवश्यकता और अनावश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करना है। आज हम अक्सर वही खरीदते हैं जिसकी हमें वास्तव में जरूरत नहीं होती, केवल दिखावे या दूसरों से आगे निकलने की चाह में। अधिक वस्तुएं, अधिक खर्च और अधिक अपेक्षाएं, यही आज के तनाव का बड़ा कारण बनती जा रही हैं। सरल जीवन हमें सिखाता है कि कम में भी संतोष पाया जा सकता है और सादगी में भी सुख छिपा है। वहीं उच्च विचार जीवन को सही दिशा देने का कार्य करते हैं। उच्च विचार का अर्थ है सकारात्मक सोच, नैतिक मूल्यों में विश्वास और मानवता के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण। आज जब स्वार्थ और त्वरित सफलता की होड़ है, तब उच्च विचार हमें ईमानदारी, करुणा, सहनशीलता और सहयोग जैसे गुणों की याद दिलाते हैं। आज की युवा पीढ़ी पर कैरियर, प्रतिस्पर्धा और सफलता का विशेष दबाव है। इस दौड़ में मानसिक शांति और संतुलन अक्सर पीछे छूट जाता है। सरल जीवन उच्च विचार का सिद्धांत यह समझाता है कि सफलता केवल धन या पद से नहीं मापी जाती, बल्कि आंतरिक संतोष और मानसिक शांति से भी आंकी जाती है। पारिवारिक जीवन में भी यह सूत्र अत्यंत उपयोगी है। संवाद की कमी, अपेक्षाओं की अधिकता और समय का अभाव रिश्तों को कमजोर बना रहा है। सरल जीवन अपनाने से समय मिलता है और उच्च विचार अपनाने से संबंधों में प्रेम, सम्मान और समझ बनी रहती है। पर्यावरण के संबंध में भी यह विचार अत्यंत आवश्यक है। अति उपभोग ने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है। यदि हम सरल जीवन अपनाएं और उच्च विचारों के साथ संसाधनों का उपयोग करें, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी सरलता और उच्च विचार दीर्घकालिक सफलता का आधार बनते हैं। ईमानदारी, पारदर्शिता और संवेदनशील नेतृत्व न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाता है। प्रिय श्रोताओं, अंततः सरल जीवन उच्च विचार कोई पुरानी कहावत नहीं, बल्कि आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब जीवन सरल होता है तो मन शांत होता है, और जब विचार ऊंचे होते हैं तो जीवन सार्थक बनता है। आइए हम सब अपने दैनिक जीवन में इस सूत्र को अपनाएं और स्वयं भी सुखी बने तथा समाज को भी सकारात्मक दिशा दें। इन्हीं विचारों के साथ मैं विवेक जैन आपसे विदा लेता हूं। अपने भीतर जाकिए, स्वयं को जानिए और इस यात्रा का आनंद लीजिए। फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि यह चर्चा आपके मन को स्पर्श कर गई होगी और इसने नए विचारों को जन्म दिया होगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर एक नई सोच और विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, खुश रहें, खुशियां बांटें। नमस्कार।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं,

0: नमस्कार, मैं हूं पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी, वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: ओम शांति। थैंक यू सो मच।
1: आपसे मेरी बात हो रही थी अबाउट दैट आर्टिकल जो न्यूज़पेपर में पढ़ा था,
2: ऑल इन द माइंड।
1: हाँ, तो उसका थोड़ा कुछ रह गया है आगे का एक स्टेप,
2: sure.
1: वो पढ़ना चाहूंगा। थॉट इज मोर पावरफुल देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, कलर और साउंड। इट इज द स्टार्ट ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। थॉट कैन ट्रांसफर without any boundaries of time, space or distance. As we all know, when light travels through space, by the time it reaches us, it takes a long period of time and it also diminishes. It's the same with sound. But thought has no such limiting factor. Sitting here, I can transfer a thought across the globe.
2: हम कितनी बार ऐसा सोचते हैं ना कि वो तो हमारे सामने थोड़ी है, अभी वो तो बहुत दूर है, क्या उनके बारे में भी सोची हुई बात उन पर असर करेगी? वो दूसरे शहर में है, दूसरे देश में है, अभी वो अपने ऑफिस में है, हम घर पे हैं, क्या अभी भी असर करेगी उनके ऊपर जो हम सोच रहे हैं? The science is now giving us the answer.
1: But science has said one step ahead also, jo ki hamare

0: पहले से शास्त्र में भी लिखा था इस लाइन में तो उसने बोल दिया अक्रॉस द ग्लोब कि जिसके बारे में नहीं सोचू मैं वैसे भी मैं बैठकर एक गंदी सी थॉट समझो बहुत ही एक क्रूअल थॉट एंग्री थॉट वायलेंट थॉट्स भेजू तो वो जो वीकर माइंड्स है वो कैच कर ही लेते हैं अननोन वीकर माइंड्स
1: बिकॉज हमारी थॉट्स वाइब्रेशन है यूनिवर्स में
0: जी
1: इट्स लाइक हम ही एनर्जी क्रिएट करते हैं और हमें ही उसके अंदर जीना है और वो सब उसके प्रभाव में आने वाले हैं तो माय एवरी थॉट दैट्स व्हाई नॉट ओनली जस्ट अफेक्ट्स मी इट अफेक्ट्स द पर्सन फॉर हुम इट वाज क्रिएटेड एंड इट अफेक्ट्स द यूनिवर्स इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं ना हर संकल्प का थॉट स्व पे सामने वाली आत्मा पर मतलब जिसके लिए सोचा है और प्रकृति पर हर चीज पर उसका प्रभाव पड़ेगा तो व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड
0: मैं अगर सिर्फ छोटे से घर की बात करूं मैं अपनी समझो बहू के बारे में गलत सोचूं तो बहू के साथ साथ वो बेटे के पास भी जाएगी उसके पति के पास भी जाएगी मेरी वाइफ के पास एटमोस्फेयर कितना पूरे घर का वातावरण खराब होता है
1: पूरे घर का वातावरण तो एटमोस्फेयर खराब होता
0: एक
1: है
0: एक एग्जांपल दो वैसे अगर उसको एक्सपैंड करते जाओ तो वहां से पूरा ग्लोबल मतलब वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड
1: इसीलिए परमात्मा कहते हैं आपका हर थॉट सृष्टि को या तो सतो प्रधान बना सकता है या तमो प्रधान बना सकता है
0: ओ लास्ट टाइम जब आप पढ़ रहे थे मुरली में तो आपने कहा था कि आप बच्चे जो है जगत परिवर्तन करने
1: विश्व
0: वाले
1: विश्व कल्याणकारी आत्माएं
0: ओके नाउ आई अंडरस्टैंड द मीनिंग देखो किस चीज का मीनिंग कब समझ में आता है
1: विश्व कल्याणकारी आत्मा इसलिए नहीं कि आप विश्व को चेंज कर देंगे वी कैन चेंज द वर्ल्ड लेकिन व्हेन वी चेंज देन वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड
0: ऑलमोस्ट लाइक चेंजिंग ऑल्सो हेल्पिंग द चेंज
1: यस एब्सोल्युटली आज आप देखो अगर ओवरऑल सब लोग चाहते हैं कि एक यू नो वर्ल्ड ऐसा हो जहां पीस है हार्मनी है लव है क्या ये युद्ध चल रहा है क्यों झगड़े चल रहे हैं क्यों गलत हो रहा है एवरीवन वांट्स दैट इंटेंशन बहुत अच्छी है भावना बहुत अच्छी है लेकिन वो चाहने से नहीं होगा ना सिर्फ उसके लिए कुछ करना पड़ेगा
0: तो जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से हम लोग करें
1: अपनी कैपेसिटी मतलब आपकी कैपेसिटी कितनी अच्छी थॉट क्रिएट करने की है तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थॉट क्रिएट करना आपकी कैपेसिटी कितनी पावरफुल थॉट क्रिएट करने की है अपनी कैपेसिटी से थॉट क्रिएट करना आर थॉट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू मेक द वर्ल्ड व्हाट द वर्ल्ड इज टूडे आज हम सब जिम्मेवार हैं इस विश्व की हालत के लिए
0: तो शायद इसीलिए लोग जब कहते होंगे ना कि जो ऋषि मुनि वगैरह सब जो मेडिटेशन में बैठकर पूरी धरती के ऊपर प्यार
1: बिल्कुल
0: भेज रहे हैं
1: तपस्या का वाइब्रेशन
0: तो मैं सब हंसता था उनके ऊपर
1: परमात्मा
0: बैठ के तेजपुर बैठ के हमको भेज रहे
1: परमात्मा हमेशा कहते हैं कि द्वापर युग से जितने भी संत महात्माएं ऋषि मुनि सब जिन्होंने तपस्या की तो परमात्मा हमेशा कहते उनकी तपस्या ने उनकी पवित्रता की शक्ति ने इस सृष्टि को थमा के तो रखा कि एक तरफ नेगेटिव एनर्जीज भी तो कितनी बढ़ी ना द्वापर युग से वायलेंस टेरर हेट्रेड ये सब बढ़ा लेकिन परमात्मा कहते इनकी पवित्रता की शक्ति इनकी तपस्या की शक्ति ने सृष्टि को थमा कर रखा
0: जैसे कहते हैं ना घर में इस औरत ने इस बहू आकर पूरे घर को इसने अकेले ने संभाल लिया
1: yes.
0: जैसे किसी घर में कोई मतलब स्पिरिचुअलिटी नहीं है ना भक्ति है ना कुछ है चल रही है लाइफ तो कोई एक बहू आ जाती है और धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करती
1: तो
0: है
1: एक जना आता है ना एक जना पूरे घर के वातावरण को चेंज करता है
0: ईदर वेज
1: हम या तो उसको सतो प्रधान बना सकते या हम उसको तमो प्रधान बना सकते हैं आज हम अपनी दुनिया को भी या तो स्वर्ग बना सकते हैं या हम नर्क बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हम यहाँ क्या बना रहे हैं जैसी हमारी यहाँ संकल्प वैसी सृष्टि ऐसे ही नहीं कहा जाता कि संकल्प से सृष्टि रची इस लाइन में कितनी पावर है संकल्प से सृष्टि रची जब हम कहते हैं संकल्प से सृष्टि रची इट डजंट ओनली मीन कि एक संकल्प आया तो सृष्टि बन गई यू नो बिकॉज हम उस लाइन को ऐसे लेते हैं

0: संकल्प से सृष्टि रची,
1: हाँ,
0: कि एक थॉट क्रिएट किया, दुनिया बनाते हैं और दुनिया बन गई। संकल्प से सृष्टि रची मतलब जैसा आपका संकल्प वैसी आपकी सृष्टि, संकल्प से सृष्टि रची। तो जैसे,
1: ओ, हाँ, जैसे जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि,
0: क्योंकि जैसा संकल्प वैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।
1: ओके,
0: सिंपल, जैसा थॉट वैसा एटीट्यूड वृत्ति, जैसा एटीट्यूड वैसा नजरिया दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये सिर्फ एक नहीं है ना, क्योंकि शास्त्रों में क्या कहते हैं, ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची, परमात्मा कहते हैं आपके सबके संकल्प से सृष्टि रची। ब्रह्मा मीन्स रचयिता, क्रिएटर। हर आत्मा अपने संकल्प का क्रिएटर है, हर आत्मा अपने संकल्प का क्रिएटर है। जैसा संकल्प हम क्रिएट करेंगे वो वाइब्रेशंस रेडिएट होंगे। अब क्योंकि एक बहुत बहुत बहुत बड़ा, इनफैक्ट हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस बॉडी कॉन्शियसनेस में है, अहंकार वश संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्योंकि हम में से मेजोरिटी के थॉट्स वैसे हैं, आज हमारी सृष्टि वैसी है, जिसको हम कहते हैं कलयुग है। हम इसको कहते हैं कलयुग है। अगर हमें सतयुग चाहिए, हमें वो न्यू ब्यूटिफुल वर्ल्ड क्रिएट करना है, तो वो वर्ल्ड अपने आप नहीं आएगा। एवरीबडी सेज यू वॉन्ट अ न्यू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड मीन्स अ बेटर वर्ल्ड। वी आर डूइंग सेमिनार्स, वी डूइंग प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट, सोशल वर्क, क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड। हमें एक नई दुनिया लानी है, हम सबको लानी है।
1: लोग समझते हैं न्यू वर्ल्ड मीन्स कि पूरा खत्म हो जाएगा, आग लग जाएगी, मर जाएंगे, फिर नई दुनिया। इट्स लाइक अ न्यू ईयर और चेंजिंग ओवर अ न्यू लीफ।
0: वेरी ट्रू, और विच मीन्स कि आज जैसा हम सोच रहे हैं उसका रिजल्ट ये सृष्टि ऐसी है। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि एक डिफरेंट सृष्टि हमें चाहिए, एक बेटर वर्ल्ड हमें चाहिए, फिर हम अपने आप से पूछें बेटर वर्ल्ड में हमें क्या चाहिए। What am I talking about when I'm saying better world, क्या चाहिए better world में?
1: सारी दुनिया तो शांति मांग रही है ना,
0: शांति मांग रही है,
1: पीस मांग रही है।
0: आज छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल में प्रोजेक्ट बनाते हैं, वी नॉट अ बेटर वर्ल्ड, बड़ा प्यारा सा एक ग्लोब बनाएंगे, उसमें सब लोग हाथ पकड़ के खड़े हैं। वी वॉन्ट अ बेटर वर्ल्ड,
1: नो बडी वॉन्ट स्ट्रेस।
0: ठीक है, बेसिकली जब हम कहते हैं बेटर वर्ल्ड तो हम कहते हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, राइट, यूनिटी हो, हार्मनी हो। छोटे छोटे बच्चे भी ये डायग्राम बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं। अब सिर्फ उसको एक लाइन और नीचे लेके जाना है, द वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय माय थॉट्स। ये सृष्टि मेरे संकल्पों से बनती है, तो जैसी सृष्टि चाहिए वैसे संकल्प क्रिएट करना शुरू कर देते हैं।
1: अब समझ में आया मुझे, वेरी गुड। मैं इतने दिन से सोच रहा था, मैंने किताब में पढ़ा था कि लाइफ इज द मैनिफेस्टेशन
0: ऑफ योर थॉट्स,
1: तो मुझे आज एकदम क्लियर हो गया।
0: एंड नॉट ओनली द लाइफ, योर लाइफ,
1: आई एम टॉकिंग अबाउट माई लाइफ,
0: हमारी लाइफ इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ आर थॉट्स। वो तो हम देख ही रहे हैं इतने दिन से, वो तो प्रैक्टिकल दिखता है। दिस वर्ल्ड इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ आर थॉट्स, सृष्टि की क्वालिटी। क्योंकि इट्स वेरी इजी टू सिट बैक, अपने अपने ड्राइंग रूम में बैठे और शिकायत करते रहे दुनिया के बारे में, दुनिया ऐसी है जी, दुनिया ऐसी है जी, वो लोग वैसे हैं, वो ऐसे हैं, यहाँ टेरर हो रहा है, यहाँ वायलेंस है, वो युद्ध कर रहा है। दिखने में कुछ लोग करते हुए दिखेंगे वो, कि ये कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ लोग भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सृष्टि पर तमो प्रधानता अति को पहुंच चुकी है, एक्सट्रीम पर पहुंच गई है। आज प्रकृति भी, प्रकृति में भी वो सत्व प्रधानता नहीं रही जो पहले थी।
1: नेचुरली
0: है ना,
1: हमारी वजह से,
0: हमारी
1: थॉट्स की वजह से,
0: हमारी थॉट्स की वजह से। तो अब प्रकृति को भी सत्व प्रधान बनाना है, इस दुनिया को भी सत्व प्रधान बनाना है। तो इट्स वेरी इजी टू से टेररिज्म खत्म करो, हम चाहते हैं कि दुनिया में टेररिज्म खत्म हो। Yes, हम चाहते हैं कि दुनिया में टेररिज्म खत्म हो, उसके लिए काम भी करें, लेकिन उससे भी सूक्ष्म एक काम जो हम सब करें, अपने मन का टेररिज्म पहले खत्म करें। जब तक हम मन के अंदर का टेरर खत्म नहीं करेंगे, बाहर कोई किसी और पे हमला करता है, हम यहाँ सारा दिन अपने पे अटैक करते हैं, जब अगर हम सब अपने अंदर के टेरर को खत्म करें, इस दुनिया से टेरर खत्म हो जाएगा।
1: मैं थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था ऑन पोल्यूशन, सीधा मेरा थॉट

0: दे रहे हैं हम अवेयर हैं कि मैंने आशीर्वाद दिया, लेकिन जब हम आशीर्वाद का ऑपोजिट देते हैं हम अवेयर नहीं होते, क्योंकि हमें क्या लगा था कि अगर ये आशीर्वाद है कि तुम्हारा सब अच्छा हो, तो हमने सोचा था आशीर्वाद का ऑपोजिट क्या होगा कि तुम्हारा सब बुरा हो। तो ऐसा तो हम किसी के लिए जल्दी जल्दी तो क्रिएट नहीं करता ऐसे कोई भी। तो हमने कभी रियलाइज नहीं किया कि हम कभी आशीर्वाद का ऑपोजिट भी क्रिएट करते हैं। लेकिन आशीर्वाद का ऑपोजिट ओनली मीन्स एन एनर्जी जो दूसरे को डिसएम्पावर करेगी।
1: मीन्स
0: एक ब्लेसिंग क्या होती है? एक एनर्जी जो दूसरे को एम्पावर करेगी। हम महात्माओं के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं, राइट? अब वो हम उनके पास क्यों जाते हैं? कि वो हमारी कैपेसिटी से भी ज्यादा एक पावरफुल थॉट हमारे लिए क्रिएट कर देते हैं, हमारे बारे में क्रिएट करते हैं। सपोज आप एक काम शुरू करने वाले हैं नया, ठीक है, आप कितने आशीर्वाद लेकर आएंगे काम शुरू करने से पहले? कहते हैं ना हम बड़ों का, पेरेंट्स का, महात्माओं का, कहते आशीर्वाद लेकर आते हैं फिर काम शुरू करेंगे, ठीक। अब आप गए उनके पास, चाहे माता पिता के पास चाहे संत महात्माओं के पास, तो उन्होंने थॉट क्या क्रिएट करनी है हमारे लिए?
1: भला हो,
0: हाँ,
1: आपका अच्छा हो,
0: हाँ,
1: जरूर अच्छा होगा फल।
0: तो सफलता आपकी ये निश्चित है। तो जैसे ही वो हमारे लिए वो थॉट क्रिएट करते हैं, अगर हमारे माइंड में कोई एक एलिमेंट ऑफ डाउट भी था सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट या सक्सेस ऑफ द बिजनेस या सक्सेस ऑफ द मैरिज, यू नो, रिश्ते में भी लोग पहले आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो जैसे ही महात्मा जी आशीर्वाद देते हैं ना, उसके बाद हमारा माइंड एकदम साइलेंट हो जाए, जी उन्होंने कह दिया
1: अब हो जाएगा।
0: ये एक्चुअली उनके कहने से तो होने नहीं वाला है, ये उनके कहने से हमने क्या लगता है उन्होंने कहा तो वहां मैजिक होगा। उनके कहने से बिजनेस में मैजिक नहीं होता है,
1: आपके मन में।
0: उनके कहने से जिसने उस ब्लेसिंग को रिसीव किया उसके मन में मैजिक क्रिएट हो जाता है कि उसका मन यहां था, अब वो एक पावरफुल ब्लेसिंग बनने से वो यहां पहुंच गया, विच मीन्स उन्होंने अपनी ब्लेसिंग से हमें एम्पावर कर दिया। अब सपोज वो ही महात्मा जी कहें आपको, जब आप जाए उनके पास और वो कहे देखो करके शुरू करो, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट, इतना भी इजी लग नहीं रहा है जो आप करने की सोच रहे हो, फिर भी करके देखो, कर लो, लेकिन ध्यान रखना पिछली बार तो तुम्हारा गड़बड़ हो गया था सारा काम, वही गलती फिर से मत करना इस बार, देखो फिर क्या रिजल्ट निकलता है, कोशिश करके देखते हैं क्या होता है।
1: लोहे का काम तुमको सूट नहीं करता, हाँ, है तुम केमिकल में चले जाओ, हाँ, लेकिन ठीक है ट्राई कर लो।
0: अब ये थॉट
1: कितना वीक करेगी मुझे,
0: हाँ, तो इसका मतलब उनकी थॉट या तो हमें एम्पावर कर सकते हैं या हमें डिसएम्पावर कर सकती है। अब उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम्हारा बुरा हो, तुम असफल हो, ऐसा नहीं बोला।
1: अच्छा,
0: हम ये कहते हैं ना आशीर्वाद या श्राप, तो श्राप ये नहीं होता तुम असफल हो, तुम फेल हो जाओ, तुम्हारा बुरा हो, श्राप ये नहीं है। श्राप मीन्स हमारी कोई भी ऐसी थॉट या एनर्जी जो हमें और सामने वाले को डिसएम्पावर करती है, एंड ब्लेसिंग मीन्स हमारी कोई भी थॉट और एनर्जी जो हमें और सामने वाले को एम्पावर करती है।
1: लेकिन सिस्टर से मोटिवेशन 100% हो,
0: हाँ,
1: तो कोई दुनिया का बंदा,
0: हाँ,
1: कोई ऐसी थॉट नहीं है,
0: हाँ,
1: जो आपको डिसएम्पावर,
0: वो इसलिए क्योंकि हम उस समय इतने एम्पावर्ड हैं, हम सेल्फ इतना एम्पावर्ड है जो हमें उस समय किसी और की थॉट का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा।
1: अगर ऐसा होता तो मैं जाके आशीर्वाद मांगने भी नहीं जाता, मतलब मैं बैठा हूँ डायरेक्ट बात करता भगवान से, मेरा काम होगा।
0: वेरी ट्रू। लेकिन ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स का ऑपोजिट जो हम देख रहे हैं कि सारा दिन में हमारी नॉर्मल थिंकिंग, ब्लेसिंग्स मांगने जाने की बात नहीं है, हमारी जो नॉर्मल थिंकिंग है एक दूसरे के लिए, अपने लिए, नॉर्मल रोज, वो रोज की हमारी थिंकिंग या तो एक ब्लेसिंग बन सकती है या एक ब्लेसिंग का ऑपोजिट बन सकती है, या तो वो किसी के लिए एक दुआ बन सकती है या वो किसी के लिए एक श्राप बन सकती है, डिपेंडिंग ऑन वो मुझे और उनको या एम्पावर करती है।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. मी स्मिता जयकर, आनंदी रहा, आनंद वाटा.
1: नमस्कार, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ.

आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं डिजिटल जागरूकता के ऊपर। आज का हमारा विषय है डिजिटल जागरूकता। आज के इस डिजिटल युग में विशेष रूप से शिक्षा, संचार और मनोरंजन के लिए हमारी जो तकनीक हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के चलते हमारी दिनचर्या कई बदलाव इसमें आई है। हालांकि इस तकनीक के विकास के साथ साथ हमें डिजिटल जागरूकता और वेलनेस की आवश्यकता है। इसकी हमें महसूसता भी हो रही है। डिजिटल वेलनेस का मतलब है तकनीक का संतुलित और समझदारी से उपयोग करना, ताकि मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सके। एक होता है डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है हम सभी जो शारीरिक स्वास्थ्य, स्वच्छता के लिए जो भी हम खाने से पहले अपने हाथ धुलाई करते हैं, रोजाना सुबह स्नान करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, वैसे डिजिटल युग में अगर हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो डिजिटल स्वच्छता अपनाने की जरूरत है। मोबाइल के उपयोग के बाद हमें उसमें कैद नहीं होना है, बल्कि उससे बाहर निकलना है। हमें अभिमन्यु नहीं बनना चाहिए जो चक्रव्यूह के अंदर तो घुस गया पर निकल नहीं पाया, बल्कि हमें क्या बनना है, अर्जुन। अर्जुन की तरह बनना है जो घुसकर निकलना भी जानता है। एक होता मानसिक स्वास्थ्य। लगातार स्क्रीन पर समय बिताते रहने से तनाव, चिंता और अवसाद का खतरा बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर तुलना करने, नकारात्मक समाचारों के संपर्क में आने से अत्यधिक जो है सूचना के बाहर से मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। डिजिटल वेलनेस को अपनी दिनचर्या में हमें अपनाने से क्या होता है, मानसिक स्थिति को संभालने में मदद मिलती है। एक होता शारीरिक स्वास्थ्य। लंबे समय तक बैठने और स्क्रीन के सामने रहने से शारीरिक जो है स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। यह मोटापा, आंखों की समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसमें एक और बात होती है सामाजिक संबंध। डिजिटल युग में लोग एक दूसरे से संवाद करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, लेकिन इसने वास्तविक जीवन में सामाजिक संबंधों को भी क्या किया है, प्रभावित किया है। अक्सर लोग वर्चुअल इंटरेक्शन को प्राथमिकता देते हैं, जिससे वास्तविक मित्रता कमजोर होती जा रही है और संबंधों में दरार आ रही है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर आपसे आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हमारे आगे की चर्चा जारी रखते हुए हम चलते हैं। आज का हमारा विषय है डिजिटल जागरूकता। एक होता है डिजिटल वेलनेस के लिए सरल उपाय, अतिरिक्त एप्स हटाएं। डाउनलोड किए गए 70% एप्स हमारे उपयोग में नहीं आते हैं। एप्स की जो संख्या है जितनी अधिक होगी वे मोबाइल को क्या करेगा, मोबाइल और दिमाग पर उतना ही अधिक जगह लेंगे, मोबाइल उतना ही अधिक अव्यवस्थित हो जाएगा। जो ऐप हम ढूंढना चाहते हैं वह अधिक कठिन हो जाएगा। कम एप्स अधिक स्पष्टता और उच्च उत्पादकता का होता है। एक होता है कि लोग ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका न करना अधिक लाभदायक है। ये हमें लाभ देगा कि हम इसका इस्तेमाल बिल्कुल ही ड्राइविंग के दौरान जो है बंद कर दें। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन के कारण ध्यान भटकने से या तो खुद का या तो दूसरों को चोट पहुंचाने का कारण बन रहे हैं। यदि हम बात करने में व्यस्त हैं तो हमारी आंखें देख रही है लेकिन देखते भी देख नहीं रही है, क्योंकि मस्तिष्क दृश्य को उतनी सटीकता से ग्रहण नहीं कर रहा है जितना उसे करना चाहिए। यही कारण है कि गाड़ी चलाते समय संदेश भेजना, देखना और बात करना, विशेषकर उनके लिए जो भावनात्मक रूप से क्या है आवश्यक हो, जो खतरनाक होता है। जो इसमें क्या होता है, एक होता है वेबसाइट घड़ी का प्रयोग करें। इसमें हम ज्यादातर क्या होता है, लोग बिस्तर पर सिर के पास मोबाइल रखकर इसे अलार्म के रूप में उपयोग करते हैं। यह आदत जो है मोबाइल से निकलने वाले जो हानिकारक रेडिएशन के कारण हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर हमारी नींद को क्या करता है, प्रभावित करती है। एक पारंपरिक जो है अलार्म घड़ी खरीदें, इसमें क्या करना है स्नूज लगा दें और जो अपने आप वो रुक जाती है, उसे कार्य क्षमता न हो और आपको अलार्म बंद करने की बंद करने के लिए भी जागने के लिए मजबूर न करे। एक होता है स्क्रीन फ्री, नाश्ता दोपहर और रात का भोजन करें। हमारा मन मस्तिष्क और शरीर एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, लगातार एक दूसरे से संवाद करते रहते हैं। जब हम स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और खाने से ध्यान हटा देते हैं तो अपने मस्तिष्क को बता रहे होते हैं कि हमारे लिए सूचनाएं खाने से अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम खाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मस्तिष्क जो है पेट को संकेत भेजता है कि भोजन महत्वपूर्ण है, इसलिए भोजन को ठीक से पचाने और इसे ऊर्जा में बदलने के लिए आवश्यक पाचन जो है पाचक रस उत्पन्न करें। इसी कारण से भारतीय संस्कृति में मौन रखकर भोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है डिजिटल जागरूकता। होता है एक समय में एक गैजेट, हमें क्या करना है, एक समय में एक गैजेट का ही उपयोग करना है। मानव मस्तिष्क एक ही समय में दो कार्य नहीं कर सकता, अधिकतम जो भी उपयोगिता के लिए एक साथ कई गैजेट का उपयोग करने के बजाय एक समय में एक गैजेट का उपयोग करना सीखें। नोटिफिकेशन बंद करें, सूचनाएं जो है बंद करने से बड़ा अंतर आ सकता है। हर बार जब फोन पर कोई सूचना आती है तो यह ध्यान भटकाती है और उस ध्यान को एकाग्र करने में क्या होता है, में मानसिक ऊर्जा का एक हिस्सा बर्बाद हो जाता है। जितनी अधिक सूचनाएं प्राप्त होगी भटकाव उतना ही अधिक होगा और उत्पादकता जो है कम होगी। इसे कुछ दिनों तक आजमाएं और सकारात्मक प्रभाव स्वयं देखें। एक होता है इंटरनेट उपयोग करने की सीमा निर्धारित करें। सोशल मीडिया अत्यधिक जो है उलझाने वाला है। इसकी उलझाने की प्रकृति के कारण हम यह निर्णय नहीं कर पाते कि हमने स्क्रीन के सामने कितना समय बिताया है। बिना सोचे समझे स्क्रीन पर उंगली घुमाना, लक्ष्यहीन तरीके से घूरना और बिना रुके देखना समय की बर्बादी है। हम अपने खाते यानी कि अकाउंट जो होता है, एक खाते की जांच करने के लिए केवल 2 मिनट खर्च करने की इच्छा से शुरुआत करते हैं और अंततः 2 घंटे खर्च कर देते हैं। एक होता है स्क्रीन नीचे की ओर रखना। हाँ, फ्लिप जो होता है मोबाइल कवर, उसका जो कवर को उपयोग करें, इससे अधिक सूचना मिलने पर ध्यान भंग नहीं होगा। यदि मोबाइल पर फ्लिप कवर नहीं है तो फोन की स्क्रीन वाला जो हिस्सा है हमेशा नीचे की ओर रखें। इससे हमारा जो बार बार मोबाइल संभालने का आकर्षण कम हो जाता है। एक होता है डिजिटल जो उपवास, इसे कुछ दिनों के लिए बंद रखने के लिए हमें क्या करना है। उपवास में कैंसर रोधी गुण होते हैं। डिजिटल उपवास से कैंसर रोधी इसमें गुण होते हैं। हर हफ्ते एक पूरे दिन के लिए सभी प्रकार के स्क्रीन से दूर रहकर और प्रियजनों से प्रियजनों के साथ रहें, उनके साथ समय बिताकर डिजिटल उपवास करने से मदद मिलती है। शुरुआती कुछ घंटे बहुत अधिक बहुत मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम स्क्रीन मुक्त समय का आनंद लेना शुरू कर देंगे। मस्तिष्क को अपने सर्वोत्तम कामकाज और विकास के लिए डिजिटल साइलेंस की आवश्यकता होती है। एक होता है स्क्रीन पर टाइम का जो एक कंट्रोल करना। स्क्रीन टाइम कंट्रोल ऐप इंस्टॉल करें। यह क्या करता है, स्मार्टफोन पर अंतर निहित जो सुविधा है वो प्रत्येक ऐप के लिए स्क्रीन समय को सीमित करना, समय बर्बाद किए बिना स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में काफी मदद कर सकता है। एक है प्रत्येक मिनट के बाद

प्रत्येक मिनट के बजाय हमें क्या करना है, घंटे में सोशल मीडिया चेक करें। कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इसकी जांच करते हैं। लगातार जांच करने की इच्छा को कम करें। कम करके हम क्या करते हैं, उत्पादकता जो है वो काफी हद तक हम बढ़ा सकते हैं। अनुभव और रिसर्च से पता चलता है कि पहले 20 सेकंड में जांच करने की इच्छा सबसे अधिक होती है। यदि हम इन पहले 20 सेकंड पर काबू पा सकते हैं, तो मन को उस ऐप से हटाना आसान हो जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग भी शुरू करने से पहले यह तय करें कि कितना समय ऑनलाइन में बिताना है। समयबद्ध खरीदारी अनावश्यक तनाव, समय और धन खर्च को कम करने में मदद कर सकती है। यदि हम सोशल मीडिया की लत पर काबू पाने के बारे में गंभीर हैं, तो सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया हमें ऐप में लंबे पासवर्ड का उपयोग कर ताकि करें उससे, ताकि इससे क्या फायदा होगा, जब भी हम उस ऐप को चेक करना चाहें तो पासवर्ड टाइप करना पड़े। तो लंबा जो हम रखते हैं अपना पासवर्ड, तो उसको टाइप करने में हमें समय लगता है, तो हम सोच समझ कर टाइम से ही उसका उपयोग करेंगे। एक होता है प्रत्येक दिन कम से कम 45 मिनट व्यायाम करें, या सप्ताह में कम से कम 4 दिन शारीरिक व्यायाम। वो शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है। ये इंटरनेट की लत के विकल्प या सहायक उपचार के रूप में व्यायाम काफी कारगर है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अवसाद चिंता को कम करने जैसे मनोवैज्ञानिक लाभ है। एक होता है सोने से पहले, सोने से कम 1 घंटे पहले मोबाइल फोन का उपयोग न करें। इसका प्रयोग न करने से सो जाने के लिए हमारे जो मस्तिष्क और शरीर को आराम करने की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क मेलाटोनिन जो नामक एक नींद हार्मोन होता है जारी करता है, जो शरीर को आराम देने में मदद करता है। लेकिन जब हम देर रात तक मोबाइल पर लगे रहते हैं, देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, फिर खेलते हैं, तो मस्तिष्क मेलाटोनिन के जो स्त्राव होते हैं वो देरी करता है, और परिणाम स्वरूप नींद आने में देरी होती है। गहरी नींद और पर्याप्त नींद के लिए सोने से कम 1 घंटे पहले हमें किसी भी प्रकार की स्क्रीन से दूर रहना चाहिए। किसी मुद्रित पुस्तक से कुछ भी पढ़िए। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है डिजिटल जागरूकता। एक होता मोबाइल फोन का प्रयोग कम से कम जागने के एक घंटे बाद तक ना करें, है ना। भारतीय संस्कृति में क्या है, जागने के बाद पहले एक घंटे में प्रार्थना करने, जप करने, कुछ सकारात्मक पढ़ने आदि के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसका कारण यह है कि इस पहले घंटे के दौरान हम जो भी भोजन जो भी कुछ हम करते हैं, जो भी भोजन और दिमाग को हम खिलाते हैं, वो क्या होता है, वह सूक्ष्म रूप से हमारे पूरे दिन को प्रभावित करता है। यदि इस दौरान दिमाग का को हम व्हाट्सएप से, फेसबुक से आदि से हम अगर बेकार की सूचनाओं से अगर हम दूर रखें, न भरें ये सब, अगर हम ये भर देंगे तो बाकी जो दिन भर का जो मूड है वो अच्छा नहीं रहेगा। सोशल मीडिया का उपयोग करते समय इसकी प्रभावशीलता और नकारात्मकता के प्रति जो भी जागृत है, नकारात्मक सामग्री से दूरी बनाए और सकारात्मकता को बढ़ावा देने वाले संदेश

तो हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना है, जितनी भी बातें इसका हमें बहुत मुख्य रूप से हमें इसका ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: दे ओ मेरा रंग दे बसंती जो लावे रंग दे बसंती जो।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहां नहीं कर सकते। क्यों? स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई? क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ख्वाबों के सफर इस कार्यक्रम में। जी हाँ, मैं हूँ आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूँ ये प्रोग्राम, रेडियो प्रोग्राम ख्वाबों का सफर। और हमारे साथ आज के खास मेहमान इस एपिसोड में जुड़ने वाले हैं विभा जी। जी हाँ विभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार सनी, आपको और हमारे ख्वाबों का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: जी, बहुत ही अच्छा लगा आपके अंदाज को देखकर, हमें खुशी हुई। और मैं चाहूंगा कि अब कार्यक्रम की शुरुआत में जो आप सुनाने वाले हैं, किस गीत को लेकर आई हैं और कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं?
1: पहला गाना है मेरे पास, ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे। ये बहुत ही सुंदर गाना है और
0: क्या बात है।
1: ये रखी दुनिया तक एक दूसरे के साथ होने का वादा किया जा रहा है। इस गाने में प्यार है, प्यार के भाव है, अपनायत है और साथ निभाने का अटूट वादा है। जमाना अगर कुछ भी कहे तो क्या, मगर तुम न कहना हमें बेवफा। बिछड़ के चले जाएं कहीं, ये ना समझना मोहब्बत नहीं। ब्यूटीफुल सॉन्ग।
0: जी, ये 1954 का जो फिल्म है शर्त, इस एल्बम का ये गाना है। तो मुझे लगता है कि उस समय का 50s का, मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कौन हीरो थे, किसने गाया था, लेकिन फिर भी इसके संगीतकार और गीतकार के बारे में तो बता ही सकता हूँ। HS बिहारी साहब ने इसे लिखा था, हेमंत कुमार साहब ने इसे आवाज दी थी और हेमंत कुमार साहब ही इसके संगीतकार भी रहे। तो चलिए, ये बहुत ही खूबसूरत गाना है जो आपने याद कराया कार्यक्रम की शुरुआत में। मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को बहुत ही अच्छा फील कराएगा। तो आइए सीधे गाने की तरफ चलते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही प्यारा सा गाना आपने सुना, सफर 1917 में आई फिल्म का आपने गाना सुना, और इस फिल्म के कलाकार थे राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, फिरोज खान और अशोक कुमार। जी हाँ, उस समय ये गाना जो है बहुत पॉपुलर रहा और इस सफर एल्बम का जो सभी गाने जो है बहुत ही हिट थे। लेकिन हम लोग आज जो आपको गाना सुना है वो भी एक मोटिवेशनल गाना है, जैसे कि विभा जी ने बताया। और ये जो है फिल्म विशेष असित सेन के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी और बहुत ही अच्छा फिल्म था ये उस समय, जिसे आप अगर टाइम मिले तो जरूर देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा है फिल्म। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि अगला गाना कौन सा है विभा जी आपके पास?
2: अगला गाना मैं लेके आई हूँ, गजल है और गजल फिल्म से ही है।
1: अच्छा,
2: बड़ी बहुत ही खूबसूरत गजल है, नगमा और शेर की सौगात किसे पेश करो। और इसमें सुनील दत्त जो एक लेखक होते हैं, और इसमें शायरी बहुत बहुत ही दिल लुभाने वाले अंदाज में की हुई है।
1: अच्छा।
2: उसमें मोहब्बत है, अपनापन है और बहुत ही खूबसूरत शायरी है इसमें। शौक आंखों के उजालों को लुटाऊं किस पर, मस्त जुल्फों की ये रात किसे पेश कर।
1: क्या बात है, चलिए बहुत ही प्यारा सा गजल आपने याद कराया है, अच्छा लगा। आज तो हम लोग जैसे मोटिवेशनल है, गजल है और एक सूदिंग गाना आपने शुरू में हेमंत दा का हेमंत दा का सुना के आपने एक नया मोड़ ही दे दिया इस एपिसोड को। तो आइए, ख्वाबों के सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। मैं हूँ आपका हम सफर सनी और मेरे साथ हम सफर है विभा जी, और बहुत ही प्यारे कलेक्शन उनके पास है जिसको एक एक करके वो सुना रही है। और डर मुझे भी लगता फासला देखकर, पर मैं बढ़ गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: जी हाँ साथियों, इस एल्बम का गजल आपने सुना, शाहिद लुधियानवी साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, मदन मोहन साहब का संगीत से सजा ये गाना आप सुन रहे थे और आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब विभा जी की तरफ चलते हैं, एक और कौन सा गाना उनका है उनके पास।
2: ये बिल्कुल ही लड़कपन वाला गाना लेके आई हूँ मैं।
1: अच्छा,
2: लाइन कुछ के डिफरेंट है, आप खुद ही अंदाजा लगाना इसमें क्या है। मैंने लड़ गई है तो मनवा में कसर कमाई भी करी, इस तरह इसके लफ्ज भी आपको उसकी बारीकी में जाना पड़ेगा। और इसमें दिलीप कुमार बिल्कुल, अगर आप उनको पिक्चराइज करोगे जैसे वो धोती पहने हुए वो डांस करते हुए मटकते हुए गा रहे हैं, जब किसी से नैन लग जाते हैं तो मन में कुछ होता है, इसके भाव ये हैं।
1: अच्छा,
2: बेकरारी सी होती है अपने साधन से मिलने के लिए। तो दिलीप कुमार पूरी मस्ती में शरारत के साथ इस गीत को गा रहे हैं। और कोई गवा मनवा मेरे तिरछी नजर का हल्ला, गौरी को देख बिना निंदिया न होगा।
1: चलिए, बहुत ही अच्छा आपने इसका जो भाव है वो सुनाया। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को जो है एक जिज्ञासा हो गया होगा कि पहले गाना सुन लेते हैं। तो चलिए सीधे गाने की तरफ, खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: लागा गोरी गुजरिया से

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही अच्छा गाना आपने सुनाया विभाजी गंगा जमुना इस एल्बम से। और इस फिल्म की एक बात ये रही कि जब इसका सेट तैयार करना था, एक पूरा गांव बसा दिया था डायरेक्टर साहब ने, और ऐसा वो माहौल तैयार किया था। और इसमें जो गाना आपने अभी बताया सुनाया, ये गाना भी एक गांव के इस माहौल में बनाया गया है और उसका ही फ्लेवर इसमें दिया गया है। तो ये गंगा जमुना इस एल्बम से था और शकील बनाई साहब ने लिखा हुआ, मोहम्मद रफी साहब का मस्ती भरा आवाज में ये गाना था, नौशाद साहब का संगीत से सजा। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें, एंड मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा ही लग रहा होगा। और इतना मस्ती भरा गीत सुनकर किसको अच्छा नहीं लगेगा, है ना?
2: जी बिल्कुल बिल्कुल जी। आप बताएं आपको कैसा लगा?
1: हाँ, मुझे मेरे पैर थिरक रहे थे। चलिए, अब अगला गाना कौन सा लेकर आई हैं आप?
2: आपके पैर कंटिन्यू थिरक तो रहे, इसलिए गाना अगला भी मैं मस्ती वाला ही होगी।
1: अरे
2: मैंने दिल है वही तू है जहाँ, बहुत सुंदर गाना है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
2: इसमें है कि जब मैन मिल जाते हैं फिर चैन का
1: पड़ता
2: है, बस फिर तो एक प्रीतम चाहिए और प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे का साथ, बहुत ही सुंदर गाना है।
1: जी जी जी, बहुत ही अच्छा गाना आपने याद कराया है। बसंत बहार इस एल्बम से है, जो 1950s और 60s के बीच में ये फिल्म आई थी, ब्लैक एंड व्हाइट ही थी। और शैलेंद्र साहब ने इस गीत को लिखा है, लता एंड मन्नाडे साहब ने इसे गाया है, शंकर जयकिशन का संगीत से सजा। नए मिले चैन कहा, दिन है वही तू है जहां, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुना रहे हैं। और बसंत बहार इस एल्बम का जो कलाकारों की अगर बात करें तो उस समय भरत भूषण साहब बहुत ही पॉपुलर थे और उनके साथ निम्मी जो है वो भी पॉपुलर रही। ओम प्रकाश और कुमकुम इस फिल्म के कलाकार रहे और ये फिल्म भी जो है एक अलग स्टोरी जो है बताई गई थी। और ये फिल्म जो है एक इसकी जो स्टोरी है वो एक इंग्लिश फिल्म है, अंग्रेजी स्टोरी को ट्रांसफर किया गया था और हिंदी में उसको पिक्चराइज किया गया था। तो चलिए फिर इसके बाद ये लैंग्वेज जो है बदलता गया, फिर हिंदी में बना, तो फिर उसके बाद इस कहानी को कन्नड़ा वाले ने भी अपने उपन्यास के माध्यम से उसको वापस रिलीज किया किसी और नाम से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: ये मैं अगला गाना भी मस्ती भरा ही दूंगी क्योंकि इसमें वो किशोर कुमार के छोटे भैया आलोक कुमार और शशिकला के साथ ये गाना गा रहे हैं और उनकी स्टाइल से भी बिल्कुल ही किशोर कुमार की तरह हुआ करती थी। मैंने तो मारे मजेदार के जनाबे आली, तुमको हमको तुमसे है प्यार और जनाबे आली। इसमें वो शशिकला की आंखों की तारीफ कर रहे हैं और ये आंखें बोलती हैं, उनकी एक जुबान होती है उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी पूरी एनर्जी के साथ अपनी प्रेमिका की तारीफ करते हुए ये दोनों ही नाचते हुए गा रहे हैं और कुल मिला के इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है और बहुत ही चुलबुला गाना
1: है। क्या बात है, क्या बात है। चलिए मुझे लगता है आप जंगली फिल्म का ये गाना याद करा है, 1961 में जो फिल्म रिलीज हुई थी और इसमें शम्मी कपूर साहब हीरो थे, सायरा बानू, शशिकला, ललिता पवार ये और भी कलाकार इस फिल्म में थे और ये एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और इसमें सारे ही गाने हिट है। लेकिन अभी जो गाना आपने सुनाया है वो भी आपने याद किया जो गाना वो भी बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए सीधे गाने की तरफ चलते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर आप सुन रहे हैं। और नयन, तुम्हारे मजेदार हो जाना बे आली, आपने इस गाने को एंजॉय किया। हसरत जयपुरी साहब का लिखा था और आशा भोसले मुकेश साहब ने सिखाया था। शंकर जयकिशन साहब का संगीत से सजा ये गाना था। तो आशा करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा। और विभा जी,
2: जी
1: कैसे हैं आप?
2: जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और गाने को एंजॉय कर रही हूँ। और थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा एक हल्का फुल्का थोड़ा सा सैड सॉन्ग है। नैना दर से रिमझिम रिमझिम पिया तोरे आवन किया। मेरे ख्याल की ये जो नैन है ना, ये भी अपने प्रीतम को हमेशा सामने ही देखना चाहते हैं, इसलिए ये थोड़े कभी बरस भी पड़ते हैं और कभी ये डिमांड करते हैं कि बस 24 घंटे प्रीतम सामने हो।
1: चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और ये जो आपने गाना याद कराया है, एक सस्पेंस फिल्म थी उस समय 1964 के करीब ये फिल्म रिलीज हुई थी, वो कौन थी। ये फिल्म जो है नाम से भी थोड़ा सा अलग ही लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक थ्रिलर है, सस्पेंस है। तो मनोज कुमार पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना, ये फिल्म भी। तो आइए सुनते हैं इस गाने को, उसके बाद फिर इसके बारे में बातें करते हैं। खुश रहो, खुशियां बांटो।

कहते हैं सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है, सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया की बात बताती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, वो कौन थी इस एल्बम से जो 1964 में रिलीज हुई थी, राजा मेहंदी अली खान का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, मदन मोहन का संगीत से सजा आपने गाना सुना। और ये फिल्म, जैसे मैंने

0: एक थ्रिलर फिल्म थी, बहुत ही सस्पेंस वाली फिल्म थी। लास्ट तक वो गुत्थी जो है खुलती नहीं है और बहुत आखिरी में वो पता चल जाता है हमें, फिल्म अगर आप ध्यान से देखते हैं तब। और इसमें मनोज कुमार को एक डॉक्टर का रोल दिया है और एक रहस्यमय औरत से उसकी मुलाकात हो जाती है और फर्स्ट उसके बाद वो उसी रहस्य को सुलझाने में, पूरी फिल्म में अपना टाइम उन्होंने उस रहस्य को सुलझाने में लगाई थी। तो ये एक राज खोसला साहब के डायरेक्शन में बनी बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि हम लोग बहुत बहुत आगे आ गए हैं, यानी कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे आ गए हैं। जी विभा जी, कैसे हैं आप?
1: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा आपने कहा आखिरी मोड़ पे है, ये आखिरी गाना है मेरे पास। नैना है जादू भरे, ओ गोरी तेरे, नैना है जादू भरे।
0: अच्छा,
1: तो ये जादू ही होता है आंखों में, जिसे प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे की तरफ से चले आते हैं।
0: ओ
1: तो जादू ही सा नृत्य होता है एक दूसरे के बहुत करीब लाने का। तो ये बहुत ही खूबसूरत गाना है। हम पे छुप छुप के जुल्म करे, ओ गोरी तेरे, नैना करे, नैना है जादू करे।
0: चलिए, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है और आज बहुत सारे गाने आपने जो भी सुनाए वो आंखों से जुड़े हुए थे, हमें भी अच्छा लगा। एंड अभी आखिरी जो गाना आपने याद कराया है, ये गाना बेदर्द जमाना क्या जाने, बेदर्द जमाना क्या जाने 1960 के करीब ये फिल्म रिलीज हुई थी, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी और अशोक कुमार, निरुपमा राय और जबरीन जलील इसमें काम किया था इन लोगों ने। तो ये भी एक पारिवारिक फिल्म थी जिसमें ये कहानी बताई गई थी। तो भरत व्यास जी इस गाने को लिखे थे, मुकेश जी ने गाया था, कल्याण जी आनंद जी का संगीत से सजा ये गाना हमारे श्रोताओं के लिए आखिरी में हम लोग देंगे और जाते जाते हम लोग इस गाने को सुनाते ही जाएंगे। लेकिन साथ में मैं कहना चाहूंगा विभा जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और एन अक्षर वाले इतने अच्छे कलेक्शन आपने हमें सुनाए तो हमें बहुत अच्छा लगा। जी
1: थैंक यू सनी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप सबके साथ जुड़ती हूँ, ये इस पे इन गानों पे काम कर रही होती हूँ, उसको सुन रही होती हूँ और उसमें चुन चुन के रहती हूँ कि कौन सा हमारे श्रोताओं को गाना अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बड़े पुराने गाने हैं और पुराने गाने सुनने वालों का जो टेस्ट है वो ध्यान में रखते हुए हम उसको चुनते हैं। तो मैं खुद भी बहुत इंजॉय करती हूँ और अपने श्रोताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ सुनने के लिए और अपना इनपुट देने। थैंक यू
0: अगेन। थैंक यू विभा जी, बहुत ही अच्छे कलेक्शन आपने सुनाए एंड बहुत ही अच्छा लगा, हमें मजा भी आ गया और हमारे श्रोताओं को भी उतना ही आनंद आया होगा जितना मुझे। और जाते जाते एक लाइन उनके लिए कहना चाहूंगा हमारे सभी श्रोताओं को, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज। चलिए साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, अगले एपिसोड में होगी फिर मुलाकात। तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ। सलाम नमस्ते, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: बाहर से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली, सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी, और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली, और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड, मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: वेलकम बैक श्रोते हो। प्रत्येकाला जरासा विसावा हवा असतो या धकाधकीच्या जीवनात, या धावपळीच्या युगात आपण जराही विसावा घेत नाही। आणि खूप वेळा असं होतं की आपण धावता धावता धावता धावता एवढे थकून जातो की आपल्याला भानच राहत नाही की आपलं शरीर मन हे किती थकून गेलेलं आहे। आणि जेव्हा कुठेतरी क्षणभर विसावा मिळतो त्यावेळी आपल्याला प्रसन्न वाटतं, आपल्याला वाटतं की खरंच आपल्याला विसाव्याची गरज होती आणि कुठेतरी तो विसावा मिळतोय। मी माझ्या एका चारोळीमध्ये लिहिलंय की आपुलकीचा एक शब्द उधार दे, बदल्यात आनंदाचे क्षण घे हजार। आपुलकीचा एक शब्द दे उधार, बदल्यात आनंदाचे क्षण घे हजार। चालून चालून खूप थकलो आहे, चालून चालून खूप थकलो आहे, विसावा हवा जीवाला नको हे वार। चालून चालून खूप थकलो आहे, विसावा हवा जीवाला नको हे वार। ही माझी एक चारोळी होती। आणि माझ्या दुसऱ्या कवितेमध्ये लिहिलंय की जीवन जगणे कला असते नाही ते रडगाणे, जीवन जगणे

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई। लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
2: नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबने कई बार सुना होगा ना कि सूरज को दिया दिखाना मूर्खता होती है, ऐसे ही आज के जो हमारे अतिथि हैं उनके बारे में अगर मैं आपको कुछ ज्यादा जिक्र करूं तो मैं ही मूर्ख कहलाऊंगा, क्योंकि वो और उनकी आवाज अपने आप में किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। बात कर रहा हूं मैं हमारे प्यारे साथी दिवाकर जी का, जिनके आवाज ने देश के दिलों को छुआ है और पूरी दुनिया के दिल में जगह बनाई है। आइए दोस्तों, इस एपिसोड में भी हम दिवाकर जी से जानते हैं उनके जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में जो उन्हें यशस्वी भारत का यशस्वी पुत्र बनाता है। दिवाकर जी, दोबारा आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब आप गुरु शिष्य परंपरा में तालीम लेना शुरू किया अपने संगीत का, तो आपके गुरु ने आपको भारतीय शास्त्रीय संगीत सिखाया और आज आप हर तरीके के संगीत के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको पेश भी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत में ऐसी क्या खास बात है जो कि आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे?
3: ये इतना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल सवाल है, मुझे आज इतना मजा आ रहा है आपके साथ ये सारी बातें शेयर करते हुए, क्योंकि मैं ऑनेस्टली कहूंगा इन पहलुओं पर बहुत कम बातचीत होती है किसी भी इंटरव्यू में किसी भी जगह पर मेरे साथ जी। तो इट्स अ प्लेजर टू यू नो रियली टॉक अबाउट ऑल दिस। थैंक यू सो मच फॉर यू नो गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। शास्त्रीय संगीत जो हमें यू नो अपनी पूरी जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उन सबसे मिला है, जो विरासत में मिला है, और हजारों सालों से जो हमारे पास है, जो उससे भी पहले वेदों में इतना प्रतिष्ठित है, इतना उसकी जड़े है, यू नो उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि दैट इज द रूट ऑफ ऑल म्यूजिक बेसिकली। मतलब अगर कोई गाना है, कोई रचना बनती है, कोई चाहे वो गजल हो, चाहे वो एक प्योर यू नो एक साधा सीधा साधा भजन हो, चाहे वो एक फोक की धुन हो, उसके जो सुर हैं, उसके जो स्वर हैं, उसका जो एक यू नो पूरा वो है, वो उन सातों स्वरों से ही उत्पन्न होता है और वो किसी ना किसी राग में ही उसकी पहचान होती है, किसी ना किसी राग में उसकी एक्सप्रेशन होती है। That is the beauty of Indian classical music because that gives form to all forms of music.
2: तो अगर इसका मतलब मैं इसको ऐसे कहूँ कि ये बीज है, ये सार है, ये रूट है, तो बाकी का जो संगीत जगत आज हम देख रहे हैं वो उसका विस्तार है, वृक्ष है, राइट?
3: वो सारे वृक्ष हैं, सारे फल हैं, सारे फूल हैं जो आपको अलग अलग रंग रूपों में मिलते हैं उन्हीं के।
2: तो इसका मतलब अगर किसी को काफी अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई मैं संगीत में वाकई में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करूं, तो उसको वास्तव में जड़ों पे जाना होगा, जड़ों को समझना होगा, राइट?
3: एग्जैक्टली। एंड ये मतलब जस्ट टू क्लैरिफाई, ये दोनों ही किसी भी फॉर्म ऑफ जो क्लासिकल म्यूजिक, वो सारे इसी रोल को फॉलो करते हैं, इसी रोल को पूरा करते हैं, चाहे वो आपका
2: या इंडियन क्लासिकल हो, बेसिकली क्लासिकल मतलब ही वो रूट्स है, राइट?
3: एग्जैक्टली, बेसिकली, या एग्जैक्टली। बिकॉज मैं इसी बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, ये बहुत खूबसूरत बात है कि हम सब अगर संगीत को, अगर कोई सच्चा संगीत को फॉलो करता है तो वो संगीत को फॉलो करता है, दैट्स वर्ल्ड म्यूजिक। वही ईस्ट है, वही वेस्ट है, वही नॉर्थ में, वही दक्षिण भारत में, राजद, तो इट्स बेसिकली म्यूजिक। और वो सारे म्यूजिक, उनका जो क्लासिकल जो एक्सप्रेशन है, वही आपको हेल्प करता है इसको एक्सप्रेस करने में, वही आपको हेल्प करता है उसे पेश करने में, क्योंकि जैसे अगर हमारे मंदिरों में है, वही चर्च में जो क्वायर्स होते हैं, जो बिल्कुल आपको पता है कितनी एंजेलिक साउंड होती है उनकी, वही बात है। तो जैसे परमात्मा के रूप है, नाम है, लेकिन है तो एक ही, वैसे ही संगीत के, क्लासिकल के भी अलग अलग रंग है, मतलब उसकी मैनिफेस्टेशन है, बट उसकी डेस्टिनेशन और उसका जो रास्ता है वो एक ही है।
2: इतना खूबसूरत आपने पेश किया इस सिंपल एंड पावरफुल स्टेटमेंट की, संगीत जो है वो संगीत है, न वो भारतीय है, न वो यू नो वेस्टर्न है, या ये तो हमारे समझने के लैंग्वेजेस हैं, लेकिन संगीत वास्तव में संगीत है। और मैं समझता हूँ ये अगर कोई ट्रूली संगीत को फॉलो कर रहा है तो वो बेसिकली बहुत स्पिरिचुअल भी है, बहुत आध्यात्मिक भी है।
3: यस यस, होना चाहिए राजन, बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि जो जिनमें ये कला होती है उनमें एक यू नो इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, यू नो वो असुरक्षित रहते हैं अंदर से, अक्सर वो ये चाहते हैं कि यू नो उनका एक फोकस नैरो हो जाता है कि हम जो कर रहे हैं वही यू नो सर्वश्रेष्ठ है, हम जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वही दैट्स द ओनली वे टू गेट टू यू नो गॉड, और दैट्स द ओनली वे टू गेट टू देयर स्पेसिफिक गोल्स बेसिकली, बट दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल। अगर सीखना और अपने गुरु को फॉलो करना समर्पण है तो सबसे तो एक समर्पण भाव और भी है कि संगीत है या आपकी जो संगीत वो आपकी अंदर की, अगर वो आपकी अंदर

0: मेडिटेशन बन जाए, अगर आप यू नो उसमें जब उसमें तैरते हुए बिना किसी डेस्टिनेशन को माइंड में रखते हुए आप उसमें बहते जाएं, यू नो फ्लोटिंग एमलेसली विदाउट एनी डेस्टिनेशन ऑन अ रिवर, दैट इज ट्रू सरेंडरिंग योर सेल्फ. एंड उसके बिना आप में चाहे वो गुण भी हो लेकिन आपका फोकस नैरो हो जाएगा, अगर आप उसके अगर आप अपने आप को अपनी जो इनहिबिशन को अपनी जो अंदर बनाई हुई बाउंड्रीज को ना छोड़ें तब तक आप बंद के रह जाएंगे.
1: So basically you're saying that you must trust the river also.
0: Yeah, just flow along with the river.
1: संगीत पे भी उतना ही निष्ठा होना चाहिए कि इफ आई एम अ ट्रू साधक तो संगीत भी मेरे साथ बना रहेगा. वेरी ट्रू.
0: यस एग्जैक्टली.
1: तो ये बड़े बड़े सवालों में से एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि देशभक्ति या राष्ट्रवाद या भारतीयता क्या है आपके लिए?
0: सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि अपनी जड़ों के लिए और अपने जो मेरे लिए देशभक्ति और देश का भाव ये है कि जो अपनी जड़ों के लिए अपने रूट्स के लिए अपने मदरलैंड के लिए प्रेम, उसके लिए रिस्पेक्ट, उस पर गर्व, उस पर फक्र, क्योंकि उसने मुझे हम सबको और हमारे जो जितने हमारे पूर्वज हैं जितने आदरणीय पूर्वज उन सबको जन्म दिया, उन सबको एक पहचान दी, उन सबको एक यू नो एक आइडेंटिटी दी, उन सबकी जो लाइफ की जर्नी है वो शुरुआत उनकी जड़ों से हुई. एंड दैट प्लस जिस रफ्तार से हमारा भारत जा रहा है उसके जो जिस तरह हमारे कल्चर और हमारे संस्कृति का नाम हो रहा है उसपे हर एक भारतीय को हर एक साधक को हर एक इंडिविजुअल को गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारी स्पिरिचुअलिटी एंड अगेन आई वांट टू से ऑन द सेम नोट एज आई बिफोर आई फॉरगेट कि इट्स नॉट कि हमारी स्पिरिचुअलिटी हम उसे एक्सप्रेस करते हैं अपने अंदाज में, हम उसे एक्सप्रेस करते हैं अपने एक सादे सिंपल अंदाज में, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी काफी लोगों में भी है इरिस्पेक्टिव ऑफ वो कहाँ से बिलोंग करते हैं. जैसे मैं लोगों से मिला हूँ जो इंडिया से बाहर है, या काफी लोग जो उस इंडियन कम्युनिटी का हिस्सा नहीं थे उस टेम्पल में कोरेसाव में, बट वो भी उस वाइब को फील कर रहे थे, वो भी उनकी नेचर ही इतनी अच्छी थी कि इट डिडंट मैटर कि दे वर नॉट इंडियंस बट दे वर एज स्पिरिचुअल एज इंडियंस एज वी बिलीव ओनली इंडियंस टू बी. तो आपकी अपनी नेचर और आपकी अपनी जो जो आपकी अपनी जो एक समर्पण और आपके अपना जो अंदर का जो साफ अंदर की साफ भावना वो अगर हर एक भारतीय में आ जाए तो उससे बड़ी देशभक्ति कोई हो नहीं सकती. भारत की जो हाइट्स ऑफ जो इमोशंस हैं, जो प्योरिटी है, अगर हर एक वासी वो उसको आगे लेकर चले तो हर एक भारतीय देशभक्ति बन जाएगा.
1: ब्यूटिफुली सेड. आई थिंक श्रोता साथियों ये है हमारे दिवाकर भाई का हम सब के लिए बहुत ब्यूटिफुल मैसेज कि हमारे अंदर जो हमारी आत्मीयता है, जो हमारा अपनापन है अपने देश के लिए, उसमें कोई खोट ना हो, वो पूरा सच्चा साफ और एकदम प्योर हो, और
0: ये गोल को पाने के लिए ना हो, वो किसी को आपको एक्सपेक्ट करने के लिए ना हो, वो आपको अपने ही परिवार में एक बड़ा सदस्य बनाने की होड़ में ना हो, तभी वो सफल होगा, तभी वो एक भारतीयता आत्मीयता एक प्योरिटी कहलाएगी.
1: एग्जैक्टली. तो इस मैसेज के साथ अब मैं शुरू करूंगा एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड दिवाकर जी आपके साथ. आई होप यू आर रेडी. तो इस राउंड में मैं आपको एक सवाल पूछूंगा और उसका जवाब आपको एक शब्द या एक लाइन में देना है, ठीक है? तो इजी वाला शुरू करते हैं, राइट? योर फेवरेट सॉन्ग.
0: बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत सारे हैं, इतने सारे.
1: मुझे लगा ये इजी वाला होगा.
0: ये तो बल्कि सबसे मुश्किल था.
1: अच्छा.
0: लाइक थाउजेंड.
1: तो उसमें से जो भी सबसे पहला आपको याद आता हो.
0: ओके. लता जी का लग जा गले.
1: वेरी नाइस. फेवरेट स्टोरी जो बचपन में सुनी हो या देखी हो या जो भी.
0: जो भी सबसे. ये भी बहुत सारी थी, मेरी फेवरेट्स भी थी, लेकिन जो इमीडिएटली माइंड में आती है मेरे लिए सबसे फेवरेट स्टोरी थी यू नो सिंड्रेला. आई लव दैट, सो ब्यूटीफुल.
1: वेरी नाइस. फेवरेट राग या रागिनी.
0: यमन कल्याण.
1: वेरी नाइस.
0: क्लोज टू माय सोल. एंड जबकि हर राग एज आई टोल्ड यू कि हर एक चीज एक भावना एक्सप्रेस करती है, खुशबू होती है, लेकिन यमन एक्सप्रेस इज माय इनर स्पिरिट.
1: सो हाउ अबाउट जस्ट हैविंग लिटिल आरोग्रो यमन कल्याण.
0: यस, अ कंपोजिशन इन दैट यू नो दैट इज सेमी क्लासिकल फॉर एवरीबॉडी यू नो.
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल.
0: ये एक सूफी कंपोजिशन है यमन में.

0: Wow. Thank you so much.
1: Thank you so much. Thank you so much.
0: So, अभी हम प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शांति क्या है?
1: जब आपको ऐसा लगने लगे कि वक्त थम गया और बहुत बहुत तेज भी और बहुत धीरे भी चला, क्योंकि आप उसमें बहुत धीरे हर वक्त को हर मोमेंट को जीते हुए चल रहे, और तेज इसलिए क्योंकि आपके आसपास की चीजें आपसे भी ज्यादा तेज चले, वो शांति है.
0: वाओ, लिविंग एवरी मोमेंट बेसिकली.
1: यस, मैं इस पे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, फिर माइंड एक छोटी सी बात इसी पे, कि जैसे मैंने कहा कि जिंदगी बहुत तेज और धीरे दोनों चले. धीरे आपके लिए क्योंकि आप मतलब एक शून्य में पहुंच गए, और तेज क्योंकि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो तेज चला, लाइक हाई स्पीड कैमरा विद स्लो मोशन इफेक्ट.
0: वाओ, वेरी नाइस. संगीत क्या है?
1: संगीत अपनी अंतरात्मा की जो एक्सप्रेशन है उसकी भाषा है, केवल और कुछ नहीं.
0: कर्तव्य क्या है?
1: सबका उद्धार और हर बुरे पहलू से जूझना और उसको परास्त करना.
0: वाओ, भारत क्या है?
1: अपनेपन का प्रतीक्षीकरण.
0: वाओ, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिवाकर क्या है?
1: वो आग जो सौम्य रोशनी भी और रुद्र की आग भी.
0: ब्यूटिफुल. तो मुझे लगता है कि आपसे अच्छा जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया इन रैपिड फायर राउंड का. सो यू हैव अगेन एक्सेल्ड. मुबारक.
1: थैंक यू सो मच. आई वाज सो नर्वस कि आई होप आई एम एबल टू यू नो डू जस्टिस टू दिस, बट थैंक यू सो मच.
0: तो चलते चलते मैं चाहूंगा कि आप एक मैसेज हमारे श्रोता साथियों को दे, भारत को दे, कि भारत क्या है, क्या फीलिंग आती है भारत के ऐसे साथी आपके दिल में, क्या विजन है आपका भारत के लिए, क्या विजन आप शेयर करना चाहते हैं हमारे श्रोता साथियों के लिए. यू कैन गिव अ सेंटेंस, एक वाक्य में, एक मैसेज में आप एक मैसेज दे सकते हैं, और फिर चाहे तो कुछ गुनगुना भी सकते हैं.
1: बिल्कुल बिल्कुल. मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, जब इस हाईटेक दुनिया में हाईटेक होते हुए भी और उन हाईटेक चीजों को प्रयोग करते हुए हर एक भारतवासी, हर एक युवक, जिन बातों पे, जिन पहलुओं पर हमने आज गौर किया, उनको एक्सपीरियंस करें, उन्हें एक्सप्रेस करें, और उन्हीं को आगे लेकर जाए, और उन्हीं साधनों से, उन्हीं इन चीजों के माध्यम से जो जिस कर्तव्य की मैंने बात की थी, वही कर्तव्य हर कोई निभाए, और जितना हो सके अपनी जो ऑनेस्टी और अपनी सच्चाई के राह पर हर अपने फील्ड में आगे चले, तो वो भारत की और वो हमारे जो संस्कृति की, हमारे कल्चर्स की, वो सबसे बड़ी जीत होगी. दैट बी द विक्ट्री ऑफ द इंडियन वैल्यूज, द इंडियन मेंटेलिटी, द इंडियन स्पिरिचुअलिटी. और मैं जो आपने कहा कि इसी बात को एक गीत में एक्सप्रेस करना चाहता हूँ मैं, एंड ये गीत जो स्पिरिचुअल भावना है उसको कहते हुए, उसको शेयर करते हुए आप सबके लिए, और सबके लिए एक मैसेज है, क्योंकि मैं भी ब्रह्म कुमारीज में कुछ टाइम पहले आया भी था, वहां पर मैंने इस गीत को सबके सामने पेश किया. एंड ये गाना इस बात की सबसे बड़ी जो एक्सप्रेशन है, तो आई वांट टू जस्ट सिंग द फ्यू लाइंस ऑफ दिस सॉन्ग फॉर यू.

0: Thank you so much.
1: Wow, thank you so much. I think इससे अच्छा अंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक आदि का शुरू, एक आदि का आगाज है कि अंतर मन में अगर हम ज्योति जगा लेते हैं तो हम न केवल खुद को प्रकाशमान रख सकते हैं लेकिन अपने आसपास भी अंधेरा मिटा सकते हैं। और भारत शब्द का भाव ही ये है कि प्रकाश में लीन, ज्ञान के प्रकाश में लीन। तो दिवाकर जी, आपने न केवल शब्दों से, न केवल भावनाओं से, बल्कि सुरों से भी हम सभी को, हमारे सभी श्रोताओं को ये जरूर जरूर अनुभव कराया कि प्रकाश, पावर एंड टुगेदरनेस। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच। ओम शांति।
1: ओम शांति। आपके फ्यूचर की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सब की तरफ से। उम्मीद है आप हमसे दोबारा जुड़ेंगे, हमारे श्रोता साथियों को दोबारा सौभाग्य देंगे आपसे सुनने का, रूबरू होने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: भारत देश की महिमा हमने पढ़ी है, हमने देखी है, सुनी भी है, लेकिन आज दिवाकर जी के बातों से भारत का वो पहलू हमारे सामने आया है जो एक युवा अपनी धड़कनों में लेकर के घूमता है। एक ऐसा नौजवान इस देश का जो अपने सुरीले स्वरों से पूरे देश के कोलाहल को सुरीले संगीत में बदलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे नौजवान सिर्फ अकेले दिवाकर ही नहीं, मैं समझता हूँ हमारे श्रोता साथियों में भी कई हैं। तो साथियों, आप जो हैं, जहाँ हैं, जिस जगह पे हैं, वहां पर आप जो कर रहे हैं पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से देश के लिए करते जाएं। मैं समझता हूँ हर कोई यशस्वी भारत की यात्रा में, यशस्वी भारत बनाने की यात्रा में जरूर कामयाब होगा। इन्हीं शुभ भावनाओं, शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा आपके साथ यशस्वी भारत कार्यक्रम के एक और एपिसोड में एक नए अतिथि के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए 90.4 FM रेडियो मधुबन।
2: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब

ख्वाब और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पीछे हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: क्रांतिकारी सुरेंद्र साय का संबंध उड़ीसा के संबलपुर राजघराने से था।

0: अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति ने सुरेंद्र साय को युद्ध का सहारा लेने पर मजबूर किया था। अंग्रेजों ने चिर परिचित अंदाज में छल का सहारा लिया और संधि के बहाने आमंत्रित कर सुरेंद्र साय को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया। 1857 की क्रांति की लहर का लाभ उठाकर सुरेंद्र साय विद्रोही सैनिकों की मदद से जेल से भागने में सफल हो गए। इस बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। फिर वही छल। अंग्रेजों ने सफेद झंडा फहराकर संधि वार्ता के बहाने उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया। इस बार वे संबलपुर जेल से 3 दिनों के भीतर ही भाग निकले। 1858 से 1863 तक उन्होंने अंग्रेजों को कई मोर्चों पर हराया और उनकी सेना का विनाश किया। अजय वीर को तीसरी बार फिरंगियों ने नहीं अपनों ने छला। एक गद्दार अभिन्न मित्र की सूचना पर वे अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार हो गए। 2 बार जेल तोड़कर भागने वाले क्रांतिकारी को तीसरी बार घोर जंगल में बने असीरगढ़ के किले में सघन पहरे के बीच रखा गया। 28 फरवरी 1884 को इसी किले में उन्हें फांसी दी गई। क्रूरता की पराकाष्ठा ये थी कि फांसी से पूर्व उनकी आंखों और कानों को गर्म सलाखों से फोड़ा गया।
1: क्या बात है छोटू, अभी तक काका की परछाई भी इधर नजर नहीं आ रही। काका को ढाबा नहीं चलाना है क्या?
2: अब मुझे क्या मालूम भैया, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। काका आए नहीं आए उससे मुझे क्या।
1: अबे बहुत बोलता है, जा काका को देख कर आ।
2: अच्छा भैया अभी आता हूँ। अरे सत्तू भैया, अब समझ आया काका क्यों नहीं आ रहे।
1: क्यों क्यों नहीं आए?
2: अरे अपना रेडियो तो चालू करो जल्दी जल्दी।
1: अभी हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था। अरे आज तो हिंदुस्तान हमारा आ रहा होगा। बस काका लगे होंगे सुनने।
2: अच्छा हाँ भैया, मैं चाय लगा के आता हूँ। अब जल्दी लगाइए ना, अब बताइए ना किसका आने वाला है।
1: अरे भैया रुक तो, देखने तो दे सुनने तो दे यार। अरे अच्छा सुरेंद्र साय का आने वाला है।
3: उड़ीसा का संबलपुर गांव, सुरेंद्र साय एक निस्वार्थ निश्चल प्रकृति के इंसान गांव के अपने दोस्त दया से मिलने आए हैं।
4: क्या बात है दया, आज बड़े उदास नजर आ रहे हो, कुछ हो गया क्या?
5: कुछ नहीं सुरेंद्र, बस यूं ही।
4: यूं ही? यूं ही क्या, कुछ आगे भी तो बोलो।
5: अरे बस इस साल की सारी फसल राजस्व देने में निकल गई, घर में खाने को नहीं है, बहन की शादी भी है, पता नहीं इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे होगी। और तो और अंग्रेजों ने ऐसी की तैसी कर रखी है।
4: चिंता मत कर, थोड़े दिनों की बात है, हम सब मिलकर अंग्रेजों को निकाल बाहर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एकजुट होंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे।
5: वो तो ठीक है, लेकिन
4: लेकिन लेकिन क्या?
5: मैं कह रहा था कि यदि मुझे कुछ पैसे मिल जाते तो मेरा काम हो जाता, घर में कुछ राशन भी आ जाता और बहन की शादी भी करनी है।
4: अरे उसकी चिंता तुम मत करो, जितना चाहिए कल आकर मुझसे महल में ले लो।
5: लेकिन महल में मुझे किसी ने रोका तो?
4: कोई नहीं रोकेगा, तुम आ जाना। कहना राजकुमार सुरेंद्र साय का सबसे जिगरी दोस्त हूँ मैं, दरबान को इसकी सूचना आज ही दे दूंगा।
5: ये ठीक रहेगा।
4: चल अब तो खुश हो जा यार।
3: राजमहल में सुरेंद्र साय की दादी रानी राजकुमारी अपने पोते का इंतजार कर रही हैं और कुछ ही देर में सुरेंद्र साय पहुंचते हैं।
4: आप अभी तक सोई नहीं दादी माँ?
6: तू कहाँ रह गया था रे, कब से मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ।
4: कुछ नहीं दादी माँ, संबलपुर की माटी को सूंघने चला गया था, बस वहीं दया मिल गया, उससे बातें करते करते देर हो गई।
6: अच्छा कैसा है दया?
4: अरे क्या बताऊं दादी माँ, बता रहा था कि इस बार वार्नर खुद गांव आया था और सारी फसल ले गया।

0: खाने को कुछ नहीं बचा है और बहन की शादी भी है।
1: अंग्रेजों की नीयत ठीक नहीं है बेटा। जब से ये लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर बनकर आया है तब से रियासतों का कुछ ज्यादा ही लगाम कसने की तैयारी हो रही है।
0: दादी माँ, उससे बड़ी चिंता मुझे जनता से उनके व्यवहार को लेकर है। वे अत्याचार कर रहे हैं। राजस्व के रूप में सारी फसल ही नहीं ले रहे बल्कि रियासत की बहु बेटियों पर अत्याचार भी कर रहे हैं।
1: बहु बेटियों से अत्याचार कर रहे हैं?
0: हाँ दादी माँ, दया कह रहा था कि अगली बार आएंगे तो और ज्यादा कर चाहिए, अगर नहीं मिला तो घर की सारी चीजें जब्त कर लेंगे, यहाँ तक कि बहु बेटियों को भी नहीं छोड़ेंगे।
1: ऐसा कहा उन्होंने?
0: हाँ दादी माँ, मेरा तो खून खौल रहा है। इच्छा हो रही है कि वार्नर जब आए तो मैं उसका खून कर दूँ।
1: नहीं बेटा, इतनी हड़बड़ी ठीक नहीं। ऐसा करने से तो स्थिति और बिगड़ जाएगी और हमारे पास सेना भी बहुत कम है।
0: तो नई भर्ती कर लेते हैं ना दादी माँ?
1: अभी सेना की नई भर्ती कैसे होगी? खजाना भी तो लगभग पूरा खाली हो चला है।
0: फिर क्या उपाय हो सकता है दादी माँ?
1: अंग्रेजों से तो छुपके लड़ने में ही दिमागदारी है, बस यही एक उपाय है।
0: लेकिन दादी माँ, क्या ये छल नहीं होगा?
1: जो आपसे छल करे उससे छल करना कैसा छल? वैसे भी ये लड़ाई तो लोकहित के लिए है और लोकहित में साम दाम दंड भेद सब जायज है।
0: लेकिन ये होगा कैसे?
1: सबसे पहले अपने जैसे लोगों को चुनो, उनको रास्ता सुझाओ, उनसे सलाह लो और अंग्रेजों का काम तमाम करो।
0: ये आपने अच्छी राह बताई दादी, मैं कल से ही सक्रिय हो जाता हूँ।
1: इतनी जल्दी नहीं बेटा, पहले खुद को तो साध लो।
0: मतलब
1: ये कि पहले अपना राज तिलक तो करवा लो बेटा।
0: अरे दादी, मुझसे बेहतर तो आप ही हो और जो बेहतर होता है उसी को राजा होना चाहिए ना।
1: अरे अब मेरी उम्र कहाँ रही, कुछ इस उम्र का भी तो ख्याल कर बेटा।
0: ठीक है दादी, जैसी आपकी आज्ञा।
1: बस जल्दी ही मैं मुनादी करवा देती हूँ कि अब सुरेंद्र सिंहासन का अधिकारी होने जा रहा है। अब जा कुछ खा ले और सो जा। अरे जा ना।
0: दादी मैं ये कह रहा।
1: हाँ हाँ बोलो बेटा।
0: कल दया आएगा दादी, उसे कुछ
1: क्या
0: रुपये की जरूरत है, उसने कहा है कल आएगा।
1: ठीक है, देखती हूँ।
2: सुनो सुनो सुनो, आने वाले महीने की 24 तारीख को रियासत के राजकुमार सुरेंद्र साय का संबलपुर रियासत की राजगद्दी पर राज्याभिषेक होने वाला है। सभी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो।
3: वार्नर साहब, अब तो आपने सुनी लिया ना कि रियासत में सुरेंद्र राय का राज्याभिषेक हो रहा है।
4: हमने सुना कि सुरेंद्र को किंग बनाया जा रहा है। हम तुमसे पूछता है कि तुमको क्यों नहीं बनाया जा रहा है?
3: वो तो रानी राजकुमारी को ही पता होगा।
4: अब मतलब सुरेंद्र तुमसे ज्यादा अच्छा है, ज्यादा काबिल है?
3: नहीं, ऐसी बात नहीं है।
4: फिर क्या बात है?
3: दरअसल मैं सुरेंद्र मुझसे काबिल नहीं, बस उम्र में बड़ा है और फिर मैं चचेरा भाई हूँ ना, इसलिए राजा बनने का हक उसी का है।
4: अच्छा, तो तुम्हारे स्त्रिया

0: में ऐसा सिस्टम है?
1: हाँ वार्नर साहब, ऐसा ही होता है।
0: ठीक है ठीक है, हम तुमको राजा बना देगा, पर बदले में तुम हमको क्या देगा? हुँ?
1: आप जो चाहे साहब, खून मांगेंगे तो खून भी दूंगा।
0: हमको खून नहीं चाहिए, हमको बहुत सारा रुपया चाहिए, यू नो मनी। और हाँ, हमको तुम्हारी सेना भी चाहिए।
1: रुपया लगभग कितना चाहिए?
0: 10 लाख।
1: ये तो बहुत ज्यादा है, मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा?
0: राजा बनना आए तो इतना तो देना पड़ेगा, नहीं तो तुम जा सकता है नारायण सिंह।
1: नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं रुपए देने के लिए तैयार हूँ।
0: इट्स गुड, तुम अपने आप को किंग समझो।
1: लेकिन अगले महीने तो सुरेंद्र का राज्य अभिषेक है।
0: इसके चिंता मत करो, अपने आप को किंग समझो नारायण सिंह।
1: अच्छा
0: Pio, now you are my friend.
1: लेकिन मैं ये पीता नहीं।
0: Take it. Now you are a king.
1: लेकिन
0: Okay, Pio, शर्माओ
1: नहीं। नहीं नहीं वार्नर साहब।
0: Pio.
1: But...
2: अरे सुरेंद्र बेटा, बहुत अच्छे समय पर आ गए तुम।
3: क्या हुआ दादी माँ?
2: ये देखो, कोई चिट्ठी आई है।
3: अरे इसमें तो अंग्रेजों का ठप्पा लगा हुआ है।
2: अंग्रेजों का ठप्पा लगा हुआ है?
3: हाँ दादी, अंग्रेजों का ठप्पा।
2: जरा जल्दी से खोल के देख तो क्या लिखा है इन अंग्रेजों ने।
3: जी दादी, इसमें तो
2: क्या लिखा है बता भी। अब
3: इसमें लिखा है कि ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया है कि संबलपुर की रियासत अब सीधे सरकार के अधीन रहेगी।
2: सीधे सरकार के अधीन रहेगी?
3: हाँ दादी, और आगे।
2: आगे क्या है सुरेंद्र?
3: आगे ये भी लिखा है कि अब रानी राजकुमारी को पेंशन दिया जा रहा है तो वो राजमहल में नहीं रहेंगी।
2: हे राम, दुष्ट अंग्रेज कहीं के।
3: दादी माँ, इसमें ये भी लिखा है कि रियासत का काम काज देखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कुंवर नारायण सिंह को नामित किया है।
2: अच्छा?
3: आशीर्वाद दो दादी माँ, मैं इन अंग्रेजों को नहीं छोड़ूंगा। कोई राजमहल में आकर दिखाए तो मैं उसका खून कर दूंगा। और ये नारायण सिंह, इसको तो मैं।
2: ज्यादा उत्तेजित ना हो बेटा, धैर्य से काम लेने का समय है। ये समय समझदारी दिखाने का है, ना कि वीरता।
3: दादी, जिस राजमहल को सजाने में आपने अपनी सारी उम्र निकाल दी, उससे दूर मैं आपको नहीं देख सकता।
2: और जिस सुरेंद्र को मैंने अपनी गोद में पाला हो, उसका बुरा मैं भी नहीं देख सकती। इसलिए मुझे फैसला लेने दो बेटा, जैसा कहती हूँ वैसा कर।
3: तो क्या करना है दादी माँ?
2: मैं राजमहल छोड़ूं, उससे पहले तू ये राजमहल छोड़ दे बेटा, क्योंकि अंग्रेज और नारायण सिंह दोनों सबसे पहले तुझे ही मारने की कोशिश करेंगे।
3: अरे मैं अकेला उनके दांत खट्टे करने के लिए काफी हूँ दादी माँ।
2: अभी जोश नहीं, होश की जरूरत है बेटा। बस जैसा कह रही हूँ वैसा करते जा।
3: ठीक है दादी माँ, मैं राजमहल छोड़ दूंगा, फिर आगे क्या करूँगा?
2: आगे तुम्हें अपने जैसे युवाओं की खोज करना है और वतन की सेवा में लग जाना है। जब तक रियासत अंग्रेजों से मुक्त ना हो जाए, तब तक चैन की सांस नहीं लेना।
3: ऐसा ही होगा दादी माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए।
2: विजयी भव बेटा, विजयी भव।
4: मुझे मालूम था महाराज कि राजा बनने के अधिकारी तो आप ही हैं।
1: मेरा क्या, बस मेरी काबिलियत और ऊपर वाले की इच्छा का संयोग समझो।
4: वही तो मैं कह रहा था।
1: कहो, आने का प्रयोजन कैसे हुआ?
4: बस पास से ही गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलकर बधाई देता चलूं।

0: अब महाराज की जय हो। अच्छा तो महाराज अब मैं चलूं?
1: आइए आइए वार्नर साहब आइए, बस आपका ही इंतजार हो रहा था।
2: कुंवर नारायण सिंह, तुम्हारा राजपाट कैसा चल रहा है?
1: राजपाट तो ठीक चल रहा है वार्नर साहब।
2: तुम्हें मालूम है कि सुरेंद्र तुम्हारे स्टेट पर अटैक करने वाला है।
1: अच्छा, मेरे राज्य पर चढ़ाई?
2: तुम्हारा नाई नारायण सिंह, हमारा बोलो आवर स्टेट।
1: आप हंस रहे हैं, लेकिन सुरेंद्र आक्रमण क्यों करेगा?
3: तुम उसका राज्य छीनेगा और वो आक्रमण नहीं करेगा नारायण सिंह।
1: अब क्या होगा?
3: तुमको हम मदद करेगा, तुमको डरने का नहीं नारायण सिंह, तुम तो बस खिलाओ।
1: ये लीजिए वार्नर साहब।
4: तुम कौन हो?
1: ये हमारा मित्र है दया।
4: गुड गुड, ये व्हिस्की बहुत अच्छा है। चीयर्स।
0: क्या कहा?
1: अरे चीयर्स कहो, चीयर्स।
0: चीयर्स।
5: 1833 से 1857 तक का समय सुरेंद्र साय के लिए बहुत उथल पुथल भरा रहा। सुरेंद्र साय ने कई बार अंग्रेजों से लोहा लिया, नारायण ने हर बार अंग्रेजों का साथ दिया। इतिहास गवाह है कि कई स्थानों पर उन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। 1950 के आसपास अंग्रेजों ने छल से सुरेंद्र साय को संधि के लिए बुलाया और बंदी बना लिया। बंदी बनाकर उन्हें बिहार के हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। इस दौरान उनकी पत्नी ने अंग्रेजों का सामना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
2: नारायण, हम तुमको शाबाशी देना चाहता है। 1857 के रिवोल्ट का तुम्हारे स्टेट में कोई ज्यादा असर नहीं आए, बस एक प्रॉब्लम आए।
1: अरे समस्या बताइए साहब, मैं चुटकियों में उसका समाधान निकालता हूँ।
2: वो तुम्हारे चुटकी का खेल नहीं है नारायण सिंह।
1: फिर कौन है?
2: इट्स सुरेंद्र सिंह। वो सुरेंद्र सिंह आए जिसने तुम्हारा और हमारा दोनों के नाक में दम कर रखा आए।
1: लेकिन वो तो हजारीबाग के जेल में बंद है।
2: हमको अभी अभी खबर मिला है कि वो अपने आप साथियों के साथ जेल से भाग गया है।
1: अरे बाप रे, अब मरे।
2: तुम डर रहा है नारायण, तुम डर रहा है?
1: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं।
0: सुरेंद्र दा, आप? वो भी इतनी रात को?
6: हाँ।
0: आओ सुरेंद्र दा, अंदर आओ।
6: मैं अकेला नहीं, मेरे साथ आज साथी भी हैं।
0: अरे तो इसमें क्या बात है, आप सभी अंदर आ जाइए।
6: और बता दया, रियासत के क्या हाल है?
0: रियासत के बारे में मुझे ज्यादा खबर नहीं है सुरेंद्र। जब से आप राजमहल से निकले हैं तब से मेरे कदम भी नहीं पड़े वहां पर।
6: वो तो पता चल ही जाएगा। इस बार बेहतर तैयारी के साथ दुर्ग पर आक्रमण करना होगा। विद्रोह की वजह से अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बना है, इसे भुना लेना चाहिए।
0: हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस बार मौके को भुना लेना चाहिए।
5: हजारीबाग जेल से निकलकर सुरेंद्र साय ने अपने साथियों के साथ मिलकर युद्ध शुरू कर दिया। इस बार वो अंग्रेजों के दुर्ग पर अधिकार करने की स्थिति तक पहुंच गए, परंतु इस बार भी अंग्रेजों ने चालाकी से काम लेते हुए दुर्ग पर सफेद झंडा फहरा दिया। संधि वार्ता के लिए जब सुरेंद्र साय दुर्ग में पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और संबलपुर जेल में डाल दिया गया। पर सुरेंद्र सिंह जैसे वीर को साध पाना अंग्रेजों के बस में नहीं था। मात्र 3 दिन के अंदर ही फिरंगियों की आंखों में धूल झोंक कर वो फरार हो गए। इस बार 1858 से 1863 तक उन्होंने अंग्रेजों से कई मोर्चों पर युद्ध किया और हराया।

0: बिहार और मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्र भी सुरेंद्र साय ने अपने कार्य क्षेत्र में शामिल कर लिया। सुरेंद्र साय के इन कामों से अंग्रेजी सरकार बौखला उठी।
1: नारायण, तुम अभी तक सुरेंद्र को नहीं पकड़ सका आए। तुम्हारे लोगों पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं आए।
2: अरे ये केवल मेरी विफलता थोड़े है, सुरेंद्र के पीछे लगे तो आप भी हैं, वो भी पूरी सेना के साथ।
1: क्या बकता है नारायण?
2: सर मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो बस
1: हम तुमको आदेश देता है कि एक महीने में हमको सुरेंद्र सिंह चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारा स्टेट वापस ले लेगा।
2: नहीं नहीं सर, ऐसा मत करिएगा।
1: तो आपको सुरेंद्र चाहिए जिंदा या मुर्दा?
2: सर वो कितना चालाक है ये तो आप जानते ही हो, दो बार जेल तोड़कर फरार हो चुका है, वो पकड़ में आता ही नहीं।
1: नारायण हमको इस बार कोई फॉल्ट नहीं चाहिए, नीट एंड क्लीन काम चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारा स्टेट छीन लेगा।
2: मैं कोशिश करता हूँ।
1: कोशिश नहीं नारायण सिंह, आई वॉन्ट सुरेंद्र साय।
2: ठीक है सर, सुरेंद्र आपको मिल जाएगा।
1: ग्रेट, सुरेंद्र मिल जाएगा। नारायण वट गिलाओ,
2: ये लीजिए सर।
1: तुम भी बनाओ?
2: हाँ हाँ सर।
1: चीयर्स।
2: चीयर्स।
1: सुनो हम तुमको एक बात बताता है।
2: क्या सर?
1: अगर तुम इंडियन हमारी मदद नहीं करेगा तो हम सरकार चलाने को नहीं सकता।
2: वो तो है सर।
1: चीयर्स।
2: चीयर्स।
0: दया सुरेंद्र साय की रणनीति जानने के लिए बहाने से उन्हें जंगल में बुलाता है।
3: इतने दिन तक कहाँ थे दया के निधि? अभी 3 सप्ताह पहले तुम्हारे घर गया था लेकिन तुम्हारा कोई अता पता नहीं था।
4: अरे मैं किसी काम से कहीं बाहर चला गया था, शायद इसीलिए।
3: आज फिर अचानक इस जंगल में मुलाकात करने का प्रयोजन?
4: कुछ नहीं सुरेंद्र भाई, देश प्रेम हिलोरे मार रहा है। फिर तुमसे बड़ा देशभक्त मेरे सामने अभी है भी कौन जिसकी मदद मैं कर सकूं?
3: चलो दया, आखिर उम्र के इस पड़ाव पर तुम्हें देशभक्ति का मतलब तो समझ में आया।
4: बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ?
3: अभी अगले सप्ताह बस्तर से सतपुड़ा तक की तरफ कूच करना है।
4: अच्छा,
3: तुम हमारे साथ रहोगे और हमारी कार्य प्रणाली को समझोगे।
4: ठीक है, मैं तैयार हूँ।
3: बस एक बात का ध्यान रखना।
4: वो क्या?
3: कभी मरना भी पड़े तो मर जाना, लेकिन अपने साथियों के नाम अंग्रेजों को मत बताना।
4: लेकिन मुझे अभी कोई जिम्मेदारी चाहिए इसमें।
3: अच्छा ठीक है, ये पत्र तुम्हें बिलासपुर तक सकुशल पहुंचाना है, इसके बाद हम सीधे सतपुड़ा में मिलते हैं।
4: ठीक है,
3: काम ठीक से करना, हम जल्द मिलेंगे।
2: अरे वार्नर साहब ये लीजिए, विस्की पीजिए।
1: What happened नारायण, तुमको क्या हो गया है?
2: अरे पता चल गया।
1: क्या पता चल गया?
2: अरे सुरेंद्र का पता चल गया है, आज ही मेरे पास ये दया की चिट्ठी आई है।
1: Great, I can't believe this. Really, दया तो कमाल का आदमी है।
2: अरे पूरे 2 लाख में सौदा हुआ है सर।
1: ठीक है, अगर खबर सही है तो 2 लाख में सरकार से दिलवा दूंगा।
2: ये बहुत अच्छा रहेगा सर, ये लीजिए सर। चीयर्स।
1: ये इस समय व्हिस्की पीने का समय नहीं है नारायण।
2: सर आप कहाँ जा रहे हैं?
1: जिधर हमको जाना चाहिए। फिर भी तुम अच्छा काम किया नारायण सिंह, उसके लिए तुम पियो। यो कैरी ऑन।
2: ठीक है सर।
0: इसके बाद वार्नर ने अपने सहयोगी हैमिल्टन के सहयोग से सुरेंद्र साय को पकड़ लिया। उन्हें पकड़ने के बाद बुरहानपुर के पास असीरगढ़ के अभेद्य किले में कैद कर दिया गया। दया और नारायण के सहयोग से वार्नर ने सुरेंद्र के रिश्तेदारों को भी पकड़ लिया।
1: आखिर तुम हमारी मुट्ठी में आ गया महाराज सुरेंद्र सिंह।
3: तुम तो क्या, तुम्हारी पूरी पलटन की मुट्ठी भी चाहे तो मुझे कैद नहीं कर सकती वार्नर। मुझे तुम जैसे नीच और कायर अंग्रेजों से नफरत है। मैं थूकता हूँ तुम्हारे ऊपर।
1: आपको गाली देता है, हम तुम्हारा टांग खींच लेगा।
3: मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
1: अभी तुमको फर्क पड़ेगा सुरेंद्र साय। सिपाही, कहाँ है सुरेंद्र का फैमिली?
3: मेरे रिश्तेदारों को?
1: यस, तुम्हारे फैमिली को, तुम्हारा रिश्तेदारों को। देखो तुम्हारे आँख के सामने हम उनका कैसा हाल करेगा।
3: मेरी आंखों के सामने मेरे रिश्तेदारों को कत्ल मत करो। मैं ये सब नहीं देख सकता।
1: ठीक आए, तुम रिश्तेदार क्या, आप तुम कुछ भी नहीं देख सकेगा। आप तुम सिर्फ सुन सकेगा सुरेंद्र साय।
3: कायर अंग्रेज मेरे रिश्तेदारों को सताएगा।
1: ये लो तुम्हारा आ गया सुरेंद्र साय।
3: ओह,

0: मेरे कान अभी बाकी हैं कमीने, और मैं सुनना भी नहीं चाहता।
1: ओके ओके, हम तुम्हारा ये विश भी पूरा करता है।
2: ओह ओह,
0: ओह ओह।

0: पात्रम।
1: इस प्रकार से असीरगढ़ के किले में सुरेंद्र साय को अंधा, गूंगा और बहरा बना दिया गया। एक एक करके उनके पुत्रों और अन्य रिश्तेदारों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद उड़ीसा के इस महान क्रांतिकारी को 28 फरवरी 1884 को फांसी की सजा दी गई और सुरेंद्र साय के विद्रोह का दमन कर दिया गया। लेकिन सुरेंद्र साय ने उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के लोगों के मन में स्वतंत्रता की जो अलख जगाई, उसे अंग्रेज कभी नहीं बुझा सके।
2: निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: Assertiveness without generating anger, तभी वो real मायने में assertiveness होगा, क्योंकि assertiveness inner stability। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल हैं। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुणे रेडियो आवाज में 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। नए बिलीफ सिस्टम्स के साथ आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि अब हमें समझ में आया कि बिलीफ सिस्टम्स भी, या जिन पर हमारा पूरा जीवन खड़ा है, वो कुछ मान्यताएं हम खुद तैयार कर सकते हैं, खुद क्रिएट कर सकते हैं। सबसे बड़ी मान्यता जो अब हम क्रिएट कर रहे हैं वो ये कि खुशी यानी कि हैप्पीनेस मेरी अपनी क्रिएशन है। किसी भी स्थिति में, किसी भी समय मैं चाहूं खुश रह सकती हूं। अमेजिंग, व्हाट अ पावरफुल थॉट एंड व्हाट अ पावरफुल एक्सपीरियंस। आई थिंक आप सब अब उसे अनुभव कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि अब पिछली कड़ी से जो हमने बात करनी शुरू की है, सॉल्यूशंस पर आएं। ये तो एक नया हमने बिलीफ सिस्टम किया कि मैं खुद अपनी खुशी क्रिएट कर रहा हूं। अब बाकी जो बिलीफ सिस्टम्स हैं उन पर काम कैसे करना है और कैसे नए बिलीफ सिस्टम्स को बनाते जाना है, और इसमें हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अमेजिंग, यू नो द वे नाउ लाइफ लुक्स। मतलब अभी तक पूरी तरह से डिपेंडेबिलिटी थी कि जो जो हो रहा है उसके आगे हम हताश थे, हमारे सामने कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक स्पार्क शुरू हुआ है, एक यू नो एक्साइटमेंट आई है कि यस नाउ आई कैन क्रिएट माय ओन लाइफ, सो थैंक यू सो मच। और ज्ञान की जहां हम बात करते हैं तो एक डेप्थ में जाकर हम समझ पा रहे हैं चीजों को। थोड़ा सा रिकैप लेते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे बिलीफ सिस्टम नए जो है उन्हें क्रिएट नहीं करने देते, क्या कुछ मुझे करना है।
1: हमने ये देखा कि जो हमारा स्ट्रेस है, टेंशन है, जिसको आज दिन तक हम समझते कि बाहर से आ रहा है, ये हमारी अपनी क्रिएशन है। अब वो तो समझ में आ गया, लेकिन अब अपना ध्यान कैसे रखें, यू नो क्या क्रिएशन, बट देन इट गेटिंग क्रिएटेड, सो व्हाट डू आई डू दैट इट डजंट गेट क्रिएटेड। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी सॉ इज टू प्रैक्टिस बींग क्वाइट। अंदर जो ये सारा दिन बहुत शोर चलता है संकल्पों का, इसको अटेंशन रख के धीरे करना है। और उसके लिए अगर अंदर नहीं हो रहा है तुरंत से, तो पहले यहां से शुरू करें। और हमने देखा कि अगर हम अभ्यास करें कि कम बोले, मीठा बोले, धीरे बोले, और कभी कभी मौन भी रखे। दूसरा हमने देखा कि बहुत सारी बातें हैं जो हमने पकड़ कर रखी हुई हैं। इट इज सिचुएशंस जो हुई, लोगों ने कुछ कहा, या मेरी अपनी अटैचमेंट्स, मेरे अपने बिलीफ, मेरे साथ गलत हुआ, आई एम द विक्टिम, यू नो दिस काइंड ऑफ थॉट्स हमने पकड़ कर रखी हैं, और शायद पूरी जीवन उसको पकड़ कर रखेंगे। और पकड़ने से और किसी का नुकसान नहीं होता,
0: मेरा ही होता
1: है, मैं ही दर्द में रहते हो। स्पेशली दिस फीलिंग ऑफ यू नो आई एम द विक्टिम, मेरे साथ लोगों ने बुरा किया, क्योंकि मेजोरिटी आर फीलिंग लाइक दिस। तो वो पकड़ के रखना इज वेरी डैमेजिंग फॉर मी। तो एक सिंपल तरीका है कि साइलेंस में बैठे, उस बात को ले, बात के दर्द में ना चले जाएं फिर से, डोंट लिव थ्रू द होल एक्सपीरियंस ऑल ओवर अगेन, लेकिन एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर उस सीन को देखें, समझें कि दर्द हम क्रिएट कर रहे थे, एंड लेट गो नाउ। कई बार कई भाई बहने कहते इतना इजी नहीं है, आई कैन नॉट लेट इट गो लाइक दिस। आप एक बार करो, दो बार करो, दस बार करो, फाइनली तो वो चला ही जाएगा।
0: लेकिन हो ये रहा है कि बार बार वही सिचुएशन भी आ जाती है फिर से।
1: वो सिचुएशन तब तक फिर से आएगी जब तक कि मैंने वो बात अंदर पकड़ी हुई है। यू सी वी सो पहले भी कि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो फिर से प्रेजेंट में क्यों क्रिएट होते, क्योंकि हम थॉट्स वही वाली फिर से क्रिएट करते, तो हम वही एनर्जी ट्रांसमिट करते।

0: सकते, वही फिर मेरे साथ हो जाता है। एंड सपोज वो सिचुएशन कुछ और है जो बाहर से आ रही है, लेकिन अगर मैंने लेट गो किया है अपने हर्ट को, तो अब क्या होगा, भले वही वाली सिचुएशन आ सकती है, आप हर्ट नहीं होंगे। सी फॉर मी व्हाट इज द सिचुएशन, फॉर मी द सिचुएशन इज द रिस्पॉन्स दैट आई क्रिएट टू द सिचुएशन। सपोज आप यहाँ बैठ कर कुछ बड़ा बुरा भला ऐसे कह रहे हैं, मुझ पर इफेक्ट क्यों हो रहा है,
1: क्रिएटिंग
0: हर्ट। लेकिन जिस दिन वो मुझ पर इफेक्ट होना बंद हो गया, उस दिन मेरे लिए वो कोई सिचुएशन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट समवन सिटिंग देयर एंड saying what they feel like saying.
1: Is it like I switch off actually under se?
0: It's not I switch off, I change my perspective.
1: Haan.
0: Switch off agar hum kahenge to then I say ki maine jaise ki
1: apne aap block kar liya.
0: Haan, duniya se alag kar liya hai. Main yahan sochna, feel karna band kar deti hu. That's not true. Do tarah ke thoughts or feelings create kar sakte na, ya to hurt ke ya fir
1: हैप्पीनेस के,
0: कंपैशन के। इस केस में
1: अगर वो दूसरे व्यक्ति की अपनी पेन है,
0: आई एम सिटिंग हियर, आई एम वॉचिंग यू क्रिएटिंग यू नो समथिंग विच इज ट्रबलिंग यू, मुझे ये समझ में आ रहा है इनकी अपनी कुछ चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं। एक है गुस्सा होना, एक है नफरत करना, एक है दर्द में चले जाना मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं, और एक है अपने दर्द को नहीं क्रिएट किया, तो फिर सेकंड किसके बारे में सोचने
1: तो लग गया कि ओहो ये बेचारे को क्या प्रॉब्लम
0: है। क्या होता है, व्हाई आई एम नॉट एबल टू सी यू, व्हाई आई एम नॉट एबल टू फील एनीथिंग फॉर यू, कि ये क्यों दर्द में है, व्हाट कैन आई डू टू हेल्प और व्हाटएवर, बिकॉज मैं ही तो दर्द में चली गई। तो जैसे ही मैं दर्द में चले गई, तब मुझे एक ही दिखाई देता है, एंड दैट इज मी एंड माई पेन एंड माई हर्ट। बाकी कौन लोग मेरे आसपास हर्ट है, it doesn't matter. So then I really am not giving anything into relationships. I'm occupied with my own pain, and pain ko bhi main theek nahi par pa rahi, main bas us dard mein jeevan ko jeete ja rahi. Lekin jab khud ka dard धीरे धीरे खत्म होगा, तो एनर्जी स्टेबिलिटी की होगी, स्विच ऑफ नहीं होगी। स्विच ऑफ मतलब मेरा आपके साथ कनेक्शन फिनिश्ड, आई हैव नथिंग टू डू विद यू, नो, इट्स जस्ट दैट आई विल नॉट क्रिएट पेन, so I will create love. See, hum kehte hain I love you, I really really love you, but when I'm creating pain, I'm not creating love. You know, even in a parent child and in a husband wife, I'm kehenge but I love you, but there's so much of pain while we're saying that, there's so much of hurt, that's not energy of love. Ek formula jo hame yaad rakhna hai, ek time pe wo sirf ek energy ho sakti hai, when we don't need anyone to tell us ki wo kaun si wali hai, wo hame khud अंदर पता चलता है कि ये अच्छी अच्छी वाली है, विच मेक्स मी फील गुड आफ्टर दैट, और इट मेक्स मी फील लो, एंड फिर वही वाली क्रिएट
1: अगेन। यू नो वी एक्चुअली लुकिंग एट द न्यू सेट ऑफ लाइफ एंड सेट ऑफ यू नो बिलीफ सिस्टम फॉर अस। द फर्स्ट वाज दैट आई क्रिएट एवरीथिंग, आई क्रिएट माई हैप्पीनेस, आई क्रिएट माई हेट्रेड, आई क्रिएट लव।
0: अगर पता चल जाता है, देखो अवेयरनेस के स्टेप्स क्या है, पता चल गया आई एम फीलिंग लो, तुरंत एक थॉट को चेंज करना है, आपकी फीलिंग तो अपने आप चेंज हो जाएगी। अवेयरनेस के साथ चलना शुरू करें, डोंट इग्नोर योरसेल्फ। अभी हम इग्नोर कर रहे हैं अपने आप को। आपका मूड अगर आज खराब मुझे दिखाई देता, आई एम अवेयर, मुझे पता चलता है। अगर आपका और मेरा थोड़ा भी कोई रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता नहीं चाहिए, थोड़ा भी रिश्ता है, तो मुझे पता चलता है कि आपका मूड ठीक नहीं है। सेकेंड स्टेप में क्या करूंगी, आपका मूड ठीक नहीं है आज, क्या हुआ, दिस इज कंसर्न, एंड देन इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प। अगर हम औरों के साथ ये कर सकते हैं, अपने साथ
1: तो हाँ, मूड को मतलब ये वेरी ट्रू,
0: अपने साथ नहीं, क्या जिसके साथ पहला रिश्ता है, तो मेरा मूड ठीक नहीं है, आई डोंट इवन स्टॉप टू सी व्हाई माय मूड इज नॉट ओके, कौन सी वो थॉट है। जैसे आपको मैं पूछूंगी, किसने क्या कहा आपको जिससे यू नो आपका मूड ठीक नहीं हुआ, तो हम सोर्स तक जाने की कोशिश, इनफैक्ट हम सोर्स बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम ट्राई तो कर रहे हैं ना, आपको किसने क्या
1: कौन सी सिचुएशन थी, क्या हो गया था, कैसे हुआ, यस
0: देन यू विल से यू नो देन दे सेड दिस, देन आई फेल्ट दिस, व्हाटएवर, एटलीस्ट वी टेक टाइम, एंड दिस इज हाउ अ रिलेशनशिप डेवलप्स।
1: एंड इनफैक्ट यू नो देन इफ आई एम गोइंग टू टेल यू कि उसने ऐसे ऐसे किया, तो आप जो थर्ड पर्सन है, यू विल बी एबल टू टेल मी कि नहीं उसने ऐसा इसलिए कहा होगा,
0: व्हाटएवर, बट दिस टेक्स टाइम ना। लेकिन सपोज आप आ रहे हो, आपका मूड ठीक नहीं है, लेकिन आई एम नॉट बॉदर्ड, एंड मैं पूछू भी नहीं, इट डजेंट इवन यू नो कम इन टू माई माइंड, नहीं है नहीं है, मुझे क्या करना, बैठे रहें दर्द में, काम तो करें ना, बैठ के काम करने आया ना आप यहाँ पर, भले आप दर्द में हैं, आप काम करो, what kind of relationship is this? There is no sensitivity towards the other person, so isliye we are very very sensitive to other people, but we're not very sensitive to ourselves. Khud ko hum kahenge dard mein hai na, tension hai, koi baat nahi, kaam karo apna, this is being so

0: इनसेंसिटिव टू योर सेल्फ के रहने दो ना अंदर दर्द में, मेरे जीवन का लक्ष्य काम करना।
1: और उसका तो कुछ हो नहीं सकता ना। सबसे बड़ी बात हमें ये लगता है कि हमारे अपने दर्द का कोई इलाज नहीं है।
0: कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 2 मिनट। औरों की प्रॉब्लम डिस्कस करने में 10 मिनट लग सकता, लेकिन अपनी जब करेंगे ना अपने साथ, 2 मिनट्स, जस्ट टेक आउट 2 मिनट्स, सिट बैक। एंड कोई काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो 2 मिनट निकालने से कुछ रुक जाएगा।
1: हम दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बाकी सारी चीजें छोड़ देते हैं।
0: हम एक एक घंटा बैठ सकते हैं किसी और के साथ क्या अगर कोई प्रॉब्लम में है, और ये 2 मिनट अगर अपने साथ निकालते हैं, अपने को ठीक करते हैं, फिर काम करने जाते हैं, wouldn't the performance be very effective?
1: Of course, I'll be so light.
0: Yes, you know, when we're talking of this journey of self-transformation, जरा भी फील हो कि दर्द है, अनकम्फर्टेबल है, डोंट कंटिन्यू विद इट।
1: Take a pause.
0: Yeah, yes. It is just 99 fever. Don't continue. Take something immediately. नहीं तो वो शाम तक बढ़ता जाएगा और फिर वो सिर्फ मेरे तक न रहकर मेरे रिश्तों में भी जाता है, मेरे काम पे भी इफेक्ट होता है, और इतनी सी बात फिर
1: इतनी बड़ी बन जाती है। इनफैक्ट ये दैट इज वाई टू चेक योर हैप्पीनेस इंडेक्स एवरी आवर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
0: जो वो दूसरा वाला इंडेक्स होता है फाइनेंशियल, उसको तो हर थोड़ी देर के बाद चेक करते हैं ना, टीवी पर, इंटरनेट पर, आपस में भी बात करते हैं, कहां तक पहुंचा, गिर क्यों गया इतना, व्हाट हैज हैपेंड इन द वर्ल्ड, अच्छा बढ़ गया, कितना अवेयरनेस है। सिर्फ एक ही चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं है, अंदर क्या हो रहा है। एंड दिस शोज लैक ऑफ लव फॉर दिस सेल्फ। If I don't take care of you, it shows I don't, you know, you don't matter to me. Similarly, I think I don't matter to myself anymore. एक रिश्ता है जिसको हमने totally ignore कर दिया है, वो अपने आप के साथ है। आप सोचो कोई रिश्ता है जिसमें ना हम time देते, ना हम बात करते कभी, ना हम उनका ध्यान रखते, ना हम उन पर ट्रस्ट करते, ना हम उनसे प्यार करते, ना हम उनकी रिस्पेक्ट करते, वो रिश्ते का क्या होगा?
1: इट डज नॉट एग्जिस्ट एक्चुअली।
0: दैट्स विद द सेल्फ, दैट इज विद द सेल्फ। नो टाइम, नो कॉन्वर्सेशन, नो लव, नो केयर, नो ट्रस्ट। दैट्स वाई आई से वैक्यूम है अंदर, वैक्यूम है, खालीपन है। क्यों? अंदर से कोई अपने आप से कनेक्टिविटी फील ही नहीं हो रही। और फिर जब ऐसी बात सुनते तो कहते हैं अपने आप से रिश्ता वो क्या होता है?
1: लेट्स चेक हमारा अपने आप से रिश्ता कहां तक है।
0: कुछ भी नहीं करना है।
1: और आज जैसे समझ में आया कि मतलब जिस तरह से आपने वो सारे जो बातें जो हम लोगों के साथ रिश्तों में ढूंढ रहे होते हैं, अपने साथ तो हमने उसे कायम ही नहीं किया।
0: जब तक अपने साथ नहीं कायम करेंगे, वे नॉट डूइंग जस्टिस आउटसाइड। हम नहीं, आई जस्ट कांट लव समवन एल्स विदाउट लविंग माई सेल्फ फर्स्ट। क्योंकि जब तक यहां प्यार नहीं है, यू नो, लविंग माई सेल्फ मतलब मुझे स्मृति है कि आई एम अ लवफुल बींग, देर इज एनर्जी ऑफ लव हियर, देन दैट विल फ्लो विद एनर्जी ऑफ पेन हियर, गिविंग लव टू अदर्स।
1: इट इज नॉट पॉसिबल,
0: एब्सोल्यूट चीटिंग विद माई सेल्फ एंड विद अदर पीपल, जिनको हम कहते हैं कि आई रियली लव यू,
1: आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू, मेरे से मैं अपने आप को भुला के आपके लिए काम करती हूँ। यू नो कितनी बार हम
0: बिलीफ सिस्टम, ये तो बिलीफ सिस्टम बना लिया ना कि अपने लिए करना ये स्वार्थ है, दूसरों के लिए करना ये प्यार है। दूसरों के लिए करना बहुत प्यार है, लेकिन वो होगा नहीं,
1: वो हो ही नहीं रहा,
0: वो होगा नहीं।
1: तभी तो हमारे रिश्तों में कितना कुछ करने के बाद, थॉट्स भी देने के बाद, आई नो समवे, यू नो, नाउ देयर इज समबडी हु सेज कि अच्छा मैंने बात समझ गया, मैं समझ चुका हूँ कि थॉट पर काम होता है, तो मैं उनको बहुत अच्छे पॉजिटिव थॉट्स देता हूँ। बट अगर मैं अपने आप के अंदर ही पॉजिटिव नहीं हूँ,
0: सी मेनी पीपल आर सेइंग दिस कि अच्छा हमें समझ में आ गया कि जो रिश्ते हमारे थोड़े से ऊपर नीचे हैं, हमें बैठकर उनको गुड विशेस भेजने हैं, हमें उन खुद की स्थिति गुड विशेस भेजने की चीज ही नहीं है,
1: वो अपने आप चले जाते हैं। आई नो हम टेंशन में बैठ के, यू नो, कि मतलब
0: उनको गुड विशेस भेजनी है, या यस यू आर अ लवफुल बींग, यू आर अ प्योर बींग, यू आर अ पीसफुल बींग, ये भेजने की चीज नहीं है। वाइब्रेशन है जो यहाँ है, वो आप चाहो ना चाहो, इट्स गोइंग टू स्प्रेड इन टू द एनवायरमेंट। एंड दैट्स वाई राजयोग टीचर्स अस कि कुछ मेहनत नहीं है रिश्तों में, इट्स ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, एवरीबडी एल्स इज ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ। तो उसके लिए हर रोज थोड़ा समय अपने लिए निकाले, सुबह का समय अपने आप के साथ 5-10 मिनट जरूर स्पेंड करें, इवन इफ यू आर लेट, इवन इफ यू आर लेट। यू नो हम सोचेंगे नहीं लेट हो गया, तो वो लेट तो हर ऑलमोस्ट थोड़े दिन बाद होता ही रहता है, लेकिन जैसे भले लेट हो जाए फिर भी आप फटाफट तैयार तो होते ना, फटाफट नाश्ता तो कर, इसी तरह ये टाइम भी उसको एक अपनी उसमें फिट करना है रूटीन में कि माय डे स्टार्ट्स विद 5 मिनट्स फॉर माय सेल्फ। अदर

0: sacrifice, it's not going to be an effective day. Ye mujhe apne aap ko prioritize karna padega. It has to start with 5 minutes of yourself. And wo 5 minute apne yahan thodi si programming kare, apne thoughts ko create kare. Sara din mein dekhna mushkil lag raha hai na, awareness nahi aa rahi. To din ki shuruaat wo create karke honi chahiye. I am a very powerful being. Irrespective of whatever the situation, today, the day is going to be in my control. Aaj ka din, main experience karna chahte hoon. Patience, love. Chahe kuch bhi ho jaye, I am not getting irritated today. You know, it's planning how you're going to be today. So, jaise we plan what to do, hume aaj kya karna hai, let's start planning how to be. इसलिए हम बार बार यही याद रख रहे हैं हम ह्यूमन डूइंग्स नहीं है हम ह्यूमन बीइंग्स हैं सो हाउ एम आई गोइंग टू बी टुडे बिकॉज डिपेंडिंग ऑन हाउ आई एम गोइंग टू बी दैट इज व्हाट आई विल डू देखो आप कितनी भी अपनी डायरी प्लान कर लो कि आज ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे अगर आपका मूड खराब हो गया किसी चीज से आपका तो पूरा शेड्यूल ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा सारा और अगर करोगे भी 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11 लेकिन वो मूड तो हर घंटे के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस करता है और फिर वो पूरी मीटिंग्स डिस्कशंस जैसी होनी चाहिए उस लेवल पर नहीं जाती क्योंकि आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ व्हाट टू डू लेट्स स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ हाउ टू बी यू नो दैट बीइंग पार्ट की भी एक डायरी नहीं तो एक इंटरनल तो डायरी लिखना शुरू करें और हर रोज एक चीज एटलीस्ट अपने लिए डिसाइड करें क्योंकि वैल्यूज ऐसी चीज है एक से सारी interconnected hai aap ek cheez decide kar lo aaj chahe kuch bhi ho jaye I'm not getting irritated agar mere andar irritation ki aadat hai choti choti I'm not getting irritated today is stability totally ab subah decide kar liya apne aap ko visualize kar lo ये करते हुए देख लो अच्छी तरह से कि सारा दिन ड्राइवर के साथ ऑफिस में ये क्रिएट दैट सीन दिस इज प्रोग्रामिंग फॉर द माइंड आपने फीड कर दिया अब आप निकले अपने सारा दिन के लिए तो कई बार सुबह की बात थोड़ी सी भूल जाती है तो फिर हर एक घंटे के बाद एक मिनट ब्रेक 1 मिनट आफ्टर एवरी 1 आवर इज फॉर माई सेल्फ इसको हम भले बहुत बार सुन चुके हैं बहुत बार बोल चुके हैं लेकिन अगर अभी तक नहीं करना शुरू
1: तो
0: किया है
1: आपने,
0: लेकिन अब आप देखो हमने जब पिछली बार ये डिस्कस किया उसके बाद से आपने अलार्म लगाना शुरू किया उसके पहले हमने कितनी बार डिस्कस किया लेकिन जब तक अलार्म लगाना नहीं शुरू किया वो नहीं होता है यू नो इट्स नॉट समथिंग लाइक हम सोचे हाँ ठीक है हम कर लेंगे वो नहीं होगा We have to initially use some external aid, koi alarm, koi computer per reminder, put it into, it's like a homeopathy medicine.
1: And you know, ab kya hota hai, ab apne aap hi, I'm just like, now
0: absolutely.
1: Apne aap wo click kar jate hai, and I start waiting ki bajega.
0: And so wo, you know, now wo, kyunki body clock hai na, wo aapka reminder aapko a jayega, aur jaise hi aapko yaad aayega ek ghanta, utni der mein wo wahan se bajega.
1: You know, in fact, main ye exercises karne mein sabse zyada lazy hua karti thi, because mujhe lagta tha ki ye mujhe samajh mein to aa gaya hai. Aur aisa hi ek jo humne belief systems ko likhna shuru kiya hai.
0: Right.
1: Amazing hai jo aapne kaha tha ki wo, in fact, I would like to share ki hum sab kar शुरू कर दे जस्ट टेक आउट दोस 5 मिनट्स यू नो
0: उससे पता क्या होगा जब जैसे बहुत सारे भाई बहने कह रहे हैं हम सुनते हैं प्रोग्राम वी बीन वॉचिंग इट फॉर ऑलमोस्ट वट एवर 2 ईयर्स एंड अच्छा लग रहा है लेकिन हो नहीं रहा अभी तक तो एक ही स्टेप तो बचा सुन भी लिया समझ भी लिया अंडरस्टैंड भी हो गया एक्सेप्ट कर लिया या दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्योंकि जर्नी है ना शुरू शुरू में नहीं एक्सेप्ट किया था बहुतों ने कहा कि ये कौन सी बातें हैं कि गुस्से के बिना काम होगा ये पर धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे ट्राई किया कभी रिजल्ट मिला कभी थोड़ा नहीं मिला लेकिन एक्सेप्ट होते गए अब उसको अगर पूरी तरह से अपने जीवन में डालना है थोड़े छोटे होमवर्क कर लेने चाहिए बहुत कम टाइम लगाते हैं 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट लेकिन दे कैन बी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इमेजिन इतनी सी इन्वेस्टमेंट 5-10 मिनट की और पूरे जीवन परिवर्तन हो जाए रिश्ते बदल जाए इट्स नॉट टू मच ऑफ टाइम इज इट
1: एंड इट्स वंडरफुल इट बिकम्स यू नो वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली जब हम खुद को देखें हमारा ना सारा ध्यान बाहर से एक्चुअली हटने लग जाए
0: तो उसी तरह हमने ये सीरीज शुरू की थी ना अपना ध्यान रखना दैट्स व्हाट वी स्टार्टेड कि स्पिरिचुअलिटी को आज दिन तक हम कहते थे ध्यान करना इट्स बेसिकली ध्यान रखना अपना ध्यान रखते जाओ बाकी सब चीजें विल जस्ट फॉल इनटू प्लेस रिश्ते आपको पता ही नहीं चलेंगे कि कहां वो कॉन्फ्लिक्ट जो था वो खत्म होता गया क्योंकि आपने उस चीज पर ध्यान रखना शुरू किया जहां कंट्रोल पॉसिबल है
1: तो अब जो पहले थॉट बिना क्रिएट किए जो पेन आ जाता

0: या पेन मैं क्रिएट कर लेती थी वो अब नहीं हो रहा है. आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, क्योंकि मुझे ही प्रॉब्लम आई थी पहले कि थॉट कहाँ आता है, फीलिंग ही पहले आ जाती है.
1: True.
0: पर ये अगर थोड़ा सा एफर्ट करते हैं तो फीलिंग तक जा नहीं पाते, जाते नहीं है आप. सिचुएशन
1: देखो, इतनी सी मेहनत करने से हम उस स्टेज तक पहुंच गए हैं जहां वो फीलिंग आती नहीं, उससे पहले हमें पता चल जाता है ओके दिस इज थॉट एंड चेंज करना इट्स नॉट डिफिकल्ट. और इतनी सी मेहनत करने से आपकी हेल्थ ठीक, आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक, रिश्ते ठीक, करियर ठीक, दिस इज सक्सेस.
0: सबसे बड़ी बात है डिसीजन मेकिंग ठीक.
1: सो एवरीथिंग यू सी देयर विल बी वन हार्मनी. जो हार्मनी आज तक हम जीवन में ढूंढ रहे थे, वी सेड हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, दैट यूज टू बी द इश्यू, कि संबंधों में कैसे वो हार्मनी लेकर आए, वो कभी नहीं आ सकती. आप कितना भी ट्राई करो, जब तक इंटरनली देयर इज नो हार्मनी, ये स्मूथ फ्लोइंग होना चाहिए, एनर्जी फ्लो हो रही है, यहाँ इतना ब्लॉक हो
0: जाता है, मतलब अदरवाइज वो कुछ जा नहीं रहा होता है, और वो जो जा रहा होता है वो वही कचरा.
1: वी कीप डूइंग दिस वन मिनट. वन मिनट में हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट रुकते साफ कर देते, फिर थोड़ी देर बाद अगर कुछ इकट्ठा हो गया, फिर एक मिनट आता, फिर साफ कर देते. जैसे ये टेबल है, अगर हम इसको हर एक घंटे के बाद साफ करें, विल दिस एवर गेट डर्टी? इसलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इवन इफ अगर ये अभी गंदी हो चुकी है थोड़ी, लेकिन हर एक घंटे के बाद इसको आप एक कपड़ा मारते जाओ, उसके बाद तो ये कभी गंदी दिखनी नहीं, क्योंकि इसकी रेगुलर सफाई हो रही है. यहाँ लास्ट कब सफाई की थी? याद ही नहीं, अक्यूमुलेटेड है. और बहुत प्राउडली बोलते हैं 20 साल पहले वो बात हुई थी, मैं तो अभी तक नहीं भूला.
0: क्योंकि ये था, क्योंकि और ये था कि दूसरों के ऊपर डिपेंड हो रहा था ना, कि दूसरे. अभी भी एक मिनट के लिए मैं आपसे यही कहूंगी, जो एक मिनट वाला था, जब मैंने शुरू किया शुरू में, तो मैंने जैसे ही एक मिनट पे आती थी, मैं बाकी सारी चीजें भी देखती थी लोग, यू नो, और उसमें वो एक मिनट के अंदर वो बहुत टाइम निकल जाता था. सो इसीलिए देन आई रियलाइज कि एक मिनट मुझे करना काम अपने साथ है, यू नो, कि कौन सी इमोशन किसके कारण हुई, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट.
1: एग्जैक्टली, जैसे ही हम ये सोचने लगे आई एम हर्ट किसके कारण, तो फिर मेरा फोकस सारा कारण पर चला जाएगा, उनके कारण, और फिर उसके बाद सीरीज ऑफ थॉट होगी कि उनको कैसे चेंज होना चाहिए. यू नो, दैट्स हाउ द फोकस गोज ऑफ अगेन टू द अदर पर्सन. मैं हर्ट हुई हूँ, किसके कारण इज नॉट इम्पोर्टेंट, मुझे उस चोट को ठीक करना है, सो दैट आई कैन गो इन टू माई नेक्स्ट आवर. एंड उसमें भी मैं हर्ट हुई हूँ, उसको ठीक करना, दैट्स ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि मुझे ये पता है हर्ट मतलब नेगेटिव थॉट, ठीक करने के लिए क्रिएट अ पॉजिटिव थॉट. सो डोंट इवन थिंक व्हाई आई एम हर्ट, पेन है, जस्ट स्टॉप, क्रिएट अ पॉजिटिव थॉट. तो उससे क्या होगा, अगर कुछ क्रिएट हुआ भी होगा पिछले एक घंटे में, इट गेट्स डिलीटेड. एंड धीरे धीरे मन, क्योंकि जिसको प्रैक्टिस नहीं है बहुत समय से ऐसे पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने की, कर करके जैसे नेगेटिव थिंकिंग आदत बनी, वैसे धीरे धीरे
0: पॉजिटिव थिंकिंग
1: आदत बनती है. वो वन मिनट में जो हम करते हैं, वो वन मिनट में नहीं रहता ना, फिर सिर्फ उसका इफेक्ट इट पासिस ऑन टू द नेक्स्ट वन आवर. जब हम शुरू में ये करते तो एक मिनट का इफेक्ट अगले 5-1 मिनट तक पहुंचता, 10 मिनट तक, फिर उसके बाद वी गो टू आवर ऑर्डिनरी वे. फिर 2-3 दिन में आप देखेंगे उस एक मिनट का इफेक्ट 10-15 मिनट पहुंचता. एंड धीरे धीरे यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग कि मोस्ट ऑफ द वन आवर आप स्टेबल हैं. आपको अब क्या होगा, आप उस वन मिनट पे भी डिपेंडेंट नहीं है. धीरे धीरे यू विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन दैट वन मिनट. अब आपको अवेयरनेस आने शुरू हो गई कि जैसे ही दर्द क्रिएट होता है, आपको पता चल जाता है. तो आपको वेट थोड़ी करना कि जब नेक्स्ट अलार्म बजेगा तब मुझे उसको क्रिएट करना.
0: वेरी ट्रू, यू नो.
1: सो नाउ दिस इज बिकमिंग कि जो हम आज दिन तक कह रहे थे कि मन को कैसे देखें, वो देखना अब नेचुरल हो गया. तो बिकम वेरी वेरी सिंपल.
0: अब तो आप मन के साथ ही चल रहे हो, यू नो, लाइक योर जर्नी एक्चुअली इज विद योर ओन सेल्फ.
1: पहले भी चल रहे थे साथ में.
0: हाँ, वो पहले हमें पता नहीं था ना.
1: इट्स लाइक आपका बच्चा है और अब उसका हाथ आपके साथ है, और वो आप जहां जहां जा रहे हो वो आपके साथ साथ है. लेकिन एक है आप सारा दिन, यू नो, लाइक अ चाइल्ड इज गोइंग विद यू टू वर्क, आपका बच्चा आज आपके साथ काम पर जा रहा है, कंटिन्यूसली आपका हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है उसकी तरफ. वो कभी वहां गिर रहा है तो भी आप ऐसे ही घसीट रहे हो, उसको चोट लग रही है आप तो भी नहीं रुक रहे हो, आप उसको ऐसे ही घसीटे जा रहे हो घर, उसको भूख लग रही हो, शोर मचा रहा है, आप सुनते ही नहीं हो. तो क्या है, तो वो फिर भी साथ में. अब क्या है, अब भी वो साथ में है, अब भी आप सारा काम कर रहे हो, लेकिन एक नजर सब ठीक है. और अगर उसको थोड़ा सा भी वो किसी बात पर रोने लग रहा है, आप एक मिनट अपने काम से निकाल सकते हो, वो ऐसे चुप हो जाएगा बहुत जल्दी, उसको सिर्फ एक मिनट देखना है कि क्या
0: तो हम अपने

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। इन दिनों हम बात कर रहे थे गुस्से की। हमने ये जाना कि गुस्सा जो है वो हमें कोई और नहीं करवाता, हम खुद गुस्सा कर रहे होते हैं। उसके बाद शांति की भी बात की, एक और एस्पेक्ट जिसे हम अपनी जिंदगी के उस एस्पेक्ट को ले रहे थे जब हम हर्ट हो जाते हैं, कैसे छोटी छोटी बातें जो हैं वो हमें हर्ट कर देती हैं और फिर अंदर ही अंदर हम उसे अपने पास रखते हैं। हर्ट के बाद हम क्या करते हैं, हम कभी रिवेंज लेना चाहते हैं, कभी हम ये कहते हैं कि हम उसे रिफॉर्म कर देंगे, कभी ये कहते हैं कि पनिश करना चाहिए, या फिर फॉरगिवनेस की बात आती है, फिर फॉरगेट करने की बात आती है। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस जो पूरा का पूरा हमारा एक जिंदगी जीने का तरीका है उसको एक नए एस्पेक्ट से देखते हैं। और इस पर बात करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, हर्ट होने के वो एस्पेक्ट हमने जरूर खूब डीपली देखे, क्योंकि यही एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो लोगों के पास आती है कि पता भी नहीं चलता कि कब हम किसकी बात से, किसी के होने से भी कितनी बार हर्ट होने लगते हैं, या हमें वाइब्स अच्छी नहीं मिल रही होती, या कभी कभी मतलब कोई चेहरा अच्छा नहीं लग रहा होता और समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो उसकी वो एस्पेक्ट हमें देखे कि हम किस तरह से उससे रिएक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वजह समझ में आती गई कि वो हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन एक छोटा सा आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा हम रिकैप करें कि क्या है जो एस्पेक्ट जो हमने देखा जो हम रिएक्ट करते हैं।
1: हम क्योंकि इस इल्यूजन में चलते हैं कि वो हर्ट आपने मुझे कॉज की है, तो जिम्मेवार आप हैं, तो आपको उसका रिजल्ट तो मिलना ही चाहिए। तो इसलिए नॉर्मल रिस्पॉन्स एक जो माइंड में आता है वो है रिवेंज लेने का। और छोटे छोटे रूप से हम बदला लेते हैं, जैसे हम बात करना बंद कर देते हैं, हम सहयोग देना बंद कर देते हैं, हम विड्रॉ हो जाते हैं, आप अपना करो मैं अपना, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं। और कई दिनों तक जैसे हमारा आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं,
0: फिर हम ये भी बड़ी आसानी से कहते हैं कि मैं आपको थोड़ा कुछ कह रहा हूँ,
1: हाँ मेरा मन नहीं है ना, मतलब मेरा, बट एक्चुअली इंटरनली सबकॉन्शियसली इट्स अ वे ऑफ गिविंग यू पेन, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं आपसे बात नहीं करूंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और मैं चाहती हूं कि आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब आपने मुझे दर्द दिया तो आई हैव अ राइट कि मैं आपको अब दर्द दूं। तो रिवेंज बहुत अलग अलग फॉर्म्स में हम लेते, और जो हमने देखा वो था फॉरगिवनेस, क्षमा करना, वो भी आज के दिन में उसकी परिभाषा बहुत ज्यादा बदल चुकी है, क्योंकि हम समझते एक तो क्षमा करना बहुत मुश्किल लगता, और अगर कर देते हैं तो एहसान जता के क्षमा करते हैं, और जैसे बार बार उस सामने वाले व्यक्ति को याद दिलाएंगे कि मैंने आपको फॉरगिव किया, तो वो भी एक वापस वही नेगेटिव एनर्जी भेजने का एक वो माध्यम बन जाता है। जबकि अगर हमें समझ में आ जाए कि मुझे हर्ट मैंने खुद ने किया है, सामने वाले ने तो जो किया सो किया, लेकिन जो मेंटल पेन है वो मेरी अपनी क्रिएशन है, तो फिर फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट ही पूरा चेंज हो जाता। आपने मुझे हर्ट नहीं किया, मैंने खुद अपने आप को हर्ट किया, तो मुझे आपको नहीं फॉरगिव करना, मुझे अपने आप को फॉरगिव करना है, क्योंकि मैं ये भूल

0: जाता कि अंदर एक डर हमेशा बना रहता कि ये जो मैं गलत कर रहा हूँ इसका रिजल्ट
1: मिलना है मुझे,
0: क्योंकि अगर मुझे कार्मिक फिलोसफी को पकड़ कर चलना है तो ये मेरे ऊपर हमेशा एक अटेंशन या एक हावी रहेगी ये बात कि ये जो तुम कर रहे हो बे, तुम्हें याद है कि इसका रिजल्ट मिलने वाला है, और जो कर रहे हो मतलब सिर्फ गलत काम नहीं,
1: थॉट्स।
0: इफ आई रिमेम्बर देन एवरी टाइम आई क्रिएट अ रॉन्ग थॉट, अ नेगेटिव थॉट, दैट बेल विल रिंग इनसाइड व्हिच विल से डू यू नो व्हाट यू आर डूइंग, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, ये एनर्जी जो आप क्रिएट कर रहे हो ये आपके पास वापस आने वाली है, एंड आई डोंट लाइक दैट, क्योंकि दैट मीन्स कि मुझे पूरा टाइम अटेंशन में चलना पड़ेगा कि नॉट टू क्रिएट एनी नेगेटिव वेस्ट टॉक्सिक थॉट्स, बिकॉज आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो क्रिएट किया वो मेरे पास वापस आएगा, तो आई कन्वीनियंटली ज्ञान होते हुए भी आई कीप इट असाइड एंड आई कंटिन्यू विद माई जो सोचना है जो करना है वो करते जाओ। और तीसरा एक कॉन्स्टेंट ये भी अटेंशन रहेगा कि जो कुछ मेरे पास आ रहा है वो रिजल्ट मेरा है, तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो स्वीकार करना बहुत इजी हो जाएगा। एक दिन के लिए, अगेन वी हैव टू ट्राई इट आउट, एक दिन के लिए करके देखें। सारा दिन में चल रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत कुछ हमारे साथ होता है, बहुत लोग बहुत कुछ बोल कर जाते हैं। जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ, ये जो कुछ आपको मिल रहा है ये आपका ही किए हुए का रिजल्ट है। वेरी इजी। हर थॉट जो आप क्रिएट कर रहे हैं इट्स एनर्जी, वो वायुमंडल में जा रही है और वो वापस मेरे पास आएगी। और पहली बात तो वो है कि जब वो क्रिएट करते हैं तभी मुझे मिल जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये अभी चुक तो हो रहा है, यू नो ये मैंने ये कर्म किया था ये उसका रिजल्ट मिल रहा है, या ये मैं एक नया कर्म कर रहा हूँ। नाउ देर इज नो वे ऑफ नोइंग दिस, बट इफ आई रिमेन स्टेबल इनसाइड, मुझे हमेशा ये स्मृति रहती कि हर चीज जो हम कर रहे हैं, हर कर्म राइट फ्रॉम थॉट लेवल, ये एक कॉज भी है तो ये एक इफेक्ट भी है। हर थॉट एक कॉज भी है और ये एक इफेक्ट भी है। क्योंकि मेरे पास अगेन कोई चार्ट नहीं है जो बताएगा कि ये पहले वाले का रिजल्ट है या ये अभी नया क्रिएट हो रहा है, तो मुझे दोनों चीजों की स्मृति रखते हुए अटेंशन रखनी पड़ेगी। अगर मैं किसी बात से हर्ट हो रही हूँ तो मुझे अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि ये एक इफेक्ट है, कि मैंने कुछ किया था उसका रिजल्ट मुझे अभी ये मिल रहा है। एट द सेम टाइम ये थॉट एक कॉज भी है कि अब जो ये मैं थॉट क्रिएट कर रही हूँ इसका इफेक्ट भी मुझे
1: ये मिलेगा, क्योंकि मैं हर्ट हो रही हूँ तो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो। ओह, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी
0: केयरफुल, दैट्स व्हाई। सो यू नो डोंट, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज्ड इन दिस कि अभी मैं इसको कैसे लूँ, कि ये अब मेरा चुक तो हो रहा है या नया क्रिएट हो रहा है, दोनों चीजें हो रही है। आई हैव टू रिमेम्बर एवरी थॉट, हर थॉट, और ये जितनी बार हम अपने आप को इसका कॉन्शियसली याद दिलाएंगे ये समझ में आता जाएगा। मे बी एकदम फर्स्ट टाइम इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन एवरी थॉट एक कॉज भी है और एक इफेक्ट भी है। वो एक एनर्जी है जो मुझे मिली है क्योंकि मैंने दी थी, एंड येट एट द सेम टाइम मैं थॉट अभी क्रिएट कर रही हूँ तो वो एनर्जी मैं ट्रांसमिट भी कर,
1: वो एनर्जी मुझे मिलेगी, क्या क्रिएट कर रही हूँ उस पर डिपेंड करेगा। आई रिमेम्बर अनदर लेडी हू हैड आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि उन्हें किसी से पैसे लेने थे और उन्होंने पैसे मना कर दिया, उन्होंने बहुत अच्छी दोस्त थी उनके, उन्होंने पैसे मना कर दिया कि नहीं हम दे चुके हैं या कुछ था। तो शी केम टू मी, आई वॉज वॉकिंग एंड शी सेड कि मुझे एक बात का जवाब दो कि क्या ये मेरा कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है या ये नया अकाउंट क्रिएट हुआ है, अब उनको चुकता करना पड़ेगा फिर आगे। मेरा उनका तो आप भूल जाओ, लेकिन मतलब मुझे ये लगा कि आपसे मैं पूछती हूँ कि इसका जवाब क्या होगा। मेरा जवाब ये था कि आपका हो सकता है जो भी था अकाउंट वो सेटल हो गया, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप इरिटेट होती रही क्योंकि ये थॉट आपके साथ है, या तो हम ये समझ लें कि वो अकाउंट सेटल हो गया तो देन फिनिश हो गया,
0: एग्जैक्टली
1: फॉरगेट हो गया कि खत्म हो गया बस। लेकिन अगर वो साथ साथ रहा कि उसने मुझे पैसे ऐसे नहीं दिए, मेरे देने हैं, तो एक नया अकाउंट क्रिएट हो,
0: तो दोनों चीजें हो रही है ना साथ, सेटल भी हो रहा है तो हमें समझ में आता है कि ये इफेक्ट है, लेकिन एक कॉज भी है क्योंकि नेक्स्ट क्रिएट हो रहा है। उन्होंने नहीं दिया वापस

0: के पास्ट में हुआ था मतलब फ्यूचर में भी हो गए, तो क्या होगा? फ्यूचर कुछ नया बनता ही नहीं है क्योंकि पास्ट की हर्ट फ्यूचर पर प्रोजेक्ट होती जाती है। नहीं मेरे साथ तो बुरा ही होगा, नहीं मेरे बच्चे तो टाइम पे नहीं आए मतलब कुछ गलत ही हुआ है, नहीं आज तो कुछ, तो एवरी टाइम दैट वरी का जो संस्कार है चिंता का
1: वो इतना स्ट्रांग हो जाता है,
0: वो बार बार इमेज सामने
1: और इनफैक्ट अमेजिंग थिंग इज कि चिंता को हम इतना नेचुरल मानते हैं, उसे हम मानते ही नहीं कि वो कोई प्रॉब्लम है या कहीं ना कहीं हमें परेशान कर रही है।
0: अब हमें उसको रोक कर कट करना पड़ेगा कि एफर्ट करना पड़ेगा अपने ऊपर कि हर चीज जो मुझे समझ में आ रही है गलत होने वाली है वो नहीं। एवरी टाइम सेइंग द वर्ल्ड इज बैड, द वर्ल्ड इज लाइक दिस, लाइफ इज मिजरेबल, नो चेंज, कॉन्शियसली अपने थॉट्स को शिफ्ट करके लाइफ इज ब्यूटिफुल, लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू क्रिएट वट एवर आई वॉन्ट टू क्रिएट, आई एम क्रिएटिंग पेन, इट्स माई चॉइस,
1: लेट्स क्रिएट हैप्पीनेस, लेट्स क्रिएट लव, दैट्स एक्चुअली द आई थिंक द अंडरलाइंड स्टेटमेंट ऑफ द डे। सिस्टर शिवानी, आज एक बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट को हमने लिया, लेकिन ऐसा एस्पेक्ट जिसको हम हर रोज सुन रहे थे, हर रोज मानते थे, लेकिन समझ में ही नहीं आ पाता था कि किस कार्मिक फिलॉसफी को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इसी कार्मिक फिलॉसफी को। आज की इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात की थी रिवेंज की, हमने बात की थी पनिशमेंट की, रिफॉर्म की, फॉरगिवनेस की और फॉरगेटफुलनेस की, लेकिन अगर हम कार्मिक फिलॉसफी को मानते हैं, ये मानते हैं कि अगर मैं हर्ट हो रहा हूं, जो हुआ जिसने हर्ट किया वो तो एक अलग बात हो जाती है, अभी मेरा हर्ट होना या मुझे गुस्सा आ रहा भी आगे इसका भी मुझे अकाउंट सेटल करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये थॉट मुझे रोक सकता है उस पूरी पेन में जाने के लिए। एंड लेट्स क्रिएट हैप्पीनेस, लेट्स क्रिएट लव। आज इसी बात पर आपसे लेते हैं विदा। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका हर बार की तरह हम स्वागत करते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9999334666, 9873666655, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। आपको बता दें कि आपके बहुत सारे ईमेल्स और फोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं, बहुत से ऐसे सवाल हैं जिन्हें हम अपनी आने वाली कड़ी में शामिल करेंगे और मिलकर जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। अब दीजिए इजाजत, ओम शांति।

0: हम कहां तुम कहां हम कहां ताल कहां सम कहां तुम कहां हम कहां तेरे कर तुम ना कर तुम तेरे कर तुम ना कर तुम हम तुम लता हात की पाता लता हात पता पात मेरा कट करामत
1: ताते चेता ताते चेता ताते चेता ताते चेता थैया थैया थै तकतदुम तकतदुम तकतन्या तप

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

वतन करा के श्रोताओं को सुधा अनुपम का नमस्कार। मौलाना बरकतुल्ला का जन्म 7 जुलाई 1854 को अविभाजित भारत की मातृभूमि पर हुआ था। उनका पूरा नाम अब्दुल हाफिज मोहम्मद बरकतुल्ला था। उनके पिता एक छोटे से स्कूल में अध्यापन का कार्य करते थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। वे सर्व इस्लाम आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले क्रांतिकारी थे और उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का खुलकर विरोध किया। उन्होंने भोपाल के स्कूल से अरबी फारसी की माध्यमिक और उच्च शिक्षा के साथ हाई स्कूल तक की अंग्रेजी शिक्षा हासिल की। शिक्षा के दौरान ही उच्च शिक्षित अनुभवी मौलवियों और विद्वानों को मिलने और उनके विचारों को जानने का उन्हें अवसर मिला। शिक्षा के बाद वे उसी स्कूल में अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए। मौलाना बरकतुल्ला अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के लीडर शेख जमालुद्दीन अफगानी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। उस समय शेख साहब सभी देशों के मुसलमानों में एकता और भाईचारे के लिए दुनिया के तमाम देशों का दौरा कर रहे थे। उनको इंग्लैंड पहुंचाने में प्रवासी हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों के सबसे बड़े प्रोत्साहक श्यामजी कृष्ण वर्मा का सबसे ज्यादा योगदान मिला। इंग्लैंड की चकाचौंध और विलासिता से मौलाना का जीवन एकदम अछूता रहा। वे गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक से अत्यधिक प्रभावित हुए। उनकी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध और स्वराज की मांग से बरकतुल्ला उनके मुरीद हो गए। मौलाना बरकतुल्ला उर्दू, अरबी और फारसी के विद्वान तथा अंग्रेजी के अच्छे खासे जानकार थे। इसके साथ ही उन्होंने जर्मनी, फ्रांसीसी, टर्की और जापानी भाषा का ज्ञान भी हासिल किया। अरबी फारसी के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि पाने के साथ साथ मौलाना की पहचान राजनीति और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी स्थापित होने लगी। ब्रिटिश हुकूमत की कुटिलता के कारण हिंदुस्तान के बिगड़ते आर्थिक हालात पर मौलाना के भाषणों और लेखों को खूब सराहा गया। उन्होंने वास्तविकता का बखान अपनी भाषा कौशल से किया।

जीवन यापन के लिए अपनी योग्यता के आधार पर लंदन में 7-8 सालों तक अरबी भाषा के अध्यापक और स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम करने के बाद मौलाना बरकतुल्ला लिवरपूल यूनिवर्सिटी के ओरिएंटल कॉलेज में फारसी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। बरकतुल्ला के लिए ब्रिटेन में ज्यादा समय तक टिकना संभव नहीं हो सका क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ने उन पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिए। 1899 में अमेरिका पहुंचने के बाद मौलाना बरकतुल्ला ने वहां के स्कूलों में अरबी पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध अपनी क्रियाशीलता को उन्होंने लगातार जारी रखा। बरकतुल्ला ने 21 फरवरी 1905 में हिंदू मुस्लिम एकता की जरूरत पर लिखे गए समाचार पत्र के संपादकीय को पढ़कर एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने हसरत मोहानी के विचारों की प्रशंसा करते हुए लिखा था कि बड़े अफसोस की बात है कि 2 करोड़ हिंदुस्तानी भूखे मर रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार हिंदुस्तान को अपने मालो सामान का बाजार बनाने की नीति को आगे बढ़ाने पर तुली हुई है। इसके चलते देश के लोगों के काम धंधे टूटते जा रहे हैं। ब्रिटिश हुकूमत खेती के आधुनिक विकास का भी कोई प्रयास नहीं कर रही। भारतीयों को अच्छे और ऊंचे ओहदों से वंचित किया जाता है। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा हिंदुस्तान और उसकी जनता पर हर तरह का बोझ डाला जा रहा है। उसकी धरोहर को भी नष्ट किया जा रहा है। देश को इस दशा से मुक्ति दिलाने के लिए जरूरी है कि देश की आजादी की लड़ाई के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया जाए। ब्रिटिश हुकूमत और उसकी नीतियों के विरोध को आगे बढ़ाने का काम बरकतुल्ला और उनके अन्य साथियों का प्रमुख मिशन बन गया। इस मिशन में ब्रिटिश हुकूमत से पीड़ित हर देश के लोग उनके साथ खड़े थे।

वे हर जगह ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने के लिए लोगों का आह्वान करते और इस बात पर जोर देते कि हिंदू मुसलमान और सिखों की एकता को बढ़ाने की जरूरत है।

1905 के अंत तक जापान पहुंचने के साथ उनकी ख्याति एक महान क्रांतिकारी के रूप में हो चुकी थी। इसी के चलते जापान में ब्रिटिश हुकूमत के प्रतिनिधि के दबाव के चलते मौलाना को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, लेकिन मौलाना का यह विरोध समाचार पत्रों तथा बैठकों सम्मेलनों के माध्यम से निरंतर चलता रहा। इसी सिलसिले में वे फ्रांस गए, इसके बाद दोबारा अमेरिका। तब तक अमेरिका के प्रवासी हिंदुस्तानियों द्वारा गदर पार्टी के निर्माण के लिए प्रयास आरंभ हो चुका था। गदर पार्टी का उद्देश्य ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़कर देशवासियों के जनतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की स्थापना करना था। गदर पार्टी के इन उद्देश्यों घोषणाओं को निरूपित करने में बरकतुल्ला ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका सरकार पर गदर पार्टी पर रोक लगाने और उसे प्रतिबंधित कराने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। इसके चलते बरकतुल्ला, लाला हरदयाल और कई अन्य क्रांतिकारियों को अमेरिका छोड़ना पड़ा। मई 1919 में मौलाना बरकतुल्ला, महेंद्र प्रताप, मौलवी अब्दुल रब और दिलीप सिंह के साथ हिंदुस्तान की आजादी का उद्देश्य लिए मॉस्को पहुंचे, जहां उन्होंने लेनिन से भेंट की। लेनिन ने उनके उद्देश्य को न्यायसंगत बताते हुए उनका समर्थन किया। आम धारणा है कि ब्रिटिश शासन के दौर में बनी पहली हिंदुस्तानी सरकार आजाद हिंद फौज की सरकार थी, लेकिन सच्चाई यह है कि पहली हिंदुस्तानी सरकार 1915 में अफगानिस्तान में बनी हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार थी, जिसके राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप सिंह और प्रधानमंत्री मौलाना बरकतुल्ला थे। मौलाना बरकतुल्ला ने कहा था कि जीवन भर मैंने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपने देश की आजादी के लिए प्रयास किए। मैं अपनी कोशिशों में कामयाब न हो सका, मगर मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि मेरे बाद सैकड़ों हजारों बहादुर जांबाज इस लड़ाई को गति देने के लिए आगे बढ़ आए हैं और उसे जारी रखेंगे। मैं पूरे यकीन के साथ देश का भाग्य उनके हाथों में सौंप कर जा रहा हूं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सन 1970 में भोपाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसे 1988 में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का नाम दिया गया। ये नामकरण प्रोफेसर बरकतुल्ला भोपाली के सम्मान में किया गया, जिन्हें इतिहास भारत के महान राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के रूप में याद करता है। जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन करार। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्रा ने, समन्वय किया संजय यादव ने और इसे पेश किया सुधानुपम ने।
1: ये वतन का
2: ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झक्कास रेडिओ स्टेशन पुणेरी आवाज।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट्स भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आनंदीरा हा आनंदवान
1: विद ब्रह्मा कुमारी। नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू सो मच।
1: आज आप शक्तिशाली लग रही हैं।
2: तो आज हम मुरली पढ़ेंगे, इसलिए जैसे ही मुरली पढ़ते हैं परमात्मा के महावाक्य डायरेक्टली, तो वो शब्दों में एक अलग ही पावर होती है सारे। चाहे शब्द हमने कई बार सुना हो, लेकिन वो परमात्म महावाक्य जो होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि उसको सुनने और पढ़ने से भी आत्मा की एम्पावरमेंट हो जाती है।
1: सोचने से कि आज मैं पढ़ने वाली हूँ,
2: हाँ, उससे भी एम्पावरमेंट हो जाती है। राइट। आज जो हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे
1: जी,
2: कि हमारे संकल्प ये एक सहयोग है जो दूसरों को और दुनिया को हम देते हैं। द पावर टू कोऑपरेट, सहयोग की शक्ति। आज दिन तक हम सहयोग मांगते थे, सहयोग चाहते थे, लेकिन हम क्या सहयोग दे सकते हैं एक दूसरे को? हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है औरों के प्रति और पूरी दुनिया के प्रति? तो उसके बारे में मुरली थी। सो आई थॉट वी शेयर इट विद एवरीवन।
1: जी।
2: जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार, मतलब आत्मा उड़ती कला एम्पावरमेंट पे है या गिरती कला पे है, डिसएम्पावरमेंट हो रही है, उसका आधार दो बातें हैं, भावना और भाव। दो ही शब्दों से, जिसको हम कहते हैं ना, भाव और भावना क्या थी उनकी, तो भाव और भावना से या तो आत्मा की उड़ती कला होगी या आत्मा की गिरती कला होगी। अगर किसी भी कार्य में कार्य के प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है, तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। अगर किसी भी काम में काम के प्रति या काम करने वाले व्यक्ति के प्रति अगर हमारी भावना श्रेष्ठ है, तो उसका फल ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ ही प्राप्त होने वाला है। एक है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। अब हम चेक करें हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारी इंटेंशन। भाव एंड भावना मींस इंटेंशन एंड फीलिंग। एक है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। क्या हमारी ये भावना है कि हर एक का कल्याण किस चीज में हो? दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना। हम किसी को सहयोग देते हैं, किसी को हम कहते हैं इनके साथ नहीं हम कर सकते, आई कैन नॉट कोऑपरेट विद दिस पर्सन, आई कैन नॉट वर्क विद दिस पर्सन। तो परमात्मा ने कहा कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना। तीसरी है सदा हिम्मत और उल्लास बढ़ाने की भावना। हमारी इंटेंशन ये हो कि हम जो कहें जो करें वो औरों का भी उमंग उत्साह उससे बढ़ना चाहिए। चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना, बिलोंगिंगनेस। आत्मा मेरे परिवार की है,
1: ये वाला थोड़ा मुश्किल है,
2: थोड़े वाला मुश्किल है ये। और पांचवी है इन सब का फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना, सोल कॉन्शियसनेस। फर्स्ट थी सबके प्रति कल्याण की भावना, दूसरे थी कोई कैसा भी हो स्नेह और सहयोग की भावना, तीसरा है सदा उनके हिम्मत और उल्लास को बढ़ाने की भावना, चौथी है अपनेपन की भावना, और पांचवी इन सब की फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, ये अगर फाउंडेशन में भावना होगी तो फिर ऑटोमेटिकली सबके कल्याण की भावना वो इजी हो जाएगी। सब अपने हैं, हर आत्मा प्योर है, हम सब, जब हम देखो हम दुनिया में कितनी बार कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वसुदेव कुटुंबकम, हम सब कनेक्टेड हैं। और आज तो हम एक ही घर में कनेक्टेड नहीं फील करते एक दूसरे से, तो सोल कॉन्शियसनेस जब तक नहीं होगी वो कनेक्टेड फील नहीं होगा। मैं आत्मा हूं, ये आत्मा भाई है,

0: के थ्रू हर सीन को जब देखेंगे तो परमात्मा कहते हैं मिस अंडरस्टैंडिंग का भाव ही अनुभव होगा। वो अच्छा भी करेगा ना, लेकिन आपकी भावना अच्छी न होने के कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव ही दिखाई देगा। और ये ऐसा होता भी है कि जब हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से कॉन्शियसनेस में फिट हो जाता है ये ऐसे ही है, फिर उसके बाद वो कुछ भी बोले, अच्छा भी बोले, लेकिन हम उस बात को वो जैसी है वैसे देख नहीं सकते।
1: एक बार कोई इंसान चोरी कर ले,
0: हाँ वैसे ही,
1: तो उसको बार बार जब भी मैं बोलूं इसको अकेले कमरे में मत भेजना,
0: हाँ।
1: इसको अकेले पेट्रोल भराने मत भेजना।
0: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर कभी भी कोई चीज मिसिंग हो,
1: हाँ,
0: तो सबसे पहले हम उसी को याद करेंगे, जबकि उस दिन उसने उसको संभाल के अच्छे से रखा होगा, लेकिन क्योंकि हमारी भावना में वो फिट हो चुका है तो हम उसके अच्छे को भी गलत ही देखेंगे।
1: और संभालते समय अगर आपने देख लिया तो आप बोलेंगे तो जेब में डाल रहा था,
0: क्योंकि भावना वो है। कितना डिफरेंस हो जाएगा कि सत्य क्या है और हम अपनी भावना के थ्रू क्या देखें?
1: वो संभालने जा रहा है,
0: हाँ,
1: और हमने उसके हाथ में देख लिया,
0: हाँ, और हमने अपनी पुरानी एक्सपीरियंस के कारण जो हमारी भावना बनी तो हमारा प्रेजेंट कर्म भी फिर कैसा हो गया, अच्छा भी हमें फिर गलत दिखाई देने लगा। तो भावना भाव को बदलने वाली है, तो चेक करो कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ भाव रहता है। भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाजा बन जाती है। भाव भावना क्लीन नहीं तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस। आप देखो, इसीलिए फाउंडेशन ऑफ अ रिलेशनशिप कितनी इम्पोर्टेंट है। जहां फाउंडेशन स्ट्रांग है, आपकी कॉन्शियसनेस में वो फिट है, प्यार फिट हुआ हुआ है, रिस्पेक्ट फिट हुई हुई है, अब कितनी भी आर्ग्यूमेंट हो जाए ऊपर, कितना भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, बात आती है बात खत्म हो जाती है। लेकिन जहां फाउंडेशन में डाउट है, जहां फाउंडेशन में हर्ट है, वहां छोटी सी लाइन भी सामने से एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्रिएट कर देगी। तो भावना में क्या फिट हुआ हुआ है? आजकल के साइंस के साधन भी वेस्ट, खराब माल जो होता है उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं। तो प्रसन्नचित आत्मा साइलेंस की शक्ति से, चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरा अनुभव होता है, लेकिन वो बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारणा करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति दे देगी।
1: बाप रे,
0: कितनी सारी चीजें करेगी। जैसे साइंस वेस्ट को बेस्ट बना सकती है, ऐसे प्रसन्न चित आत्मा जो खुद खुश है, क्लीन है, प्रसन्न चित्त है उसका, प्रसन्न साइलेंस की शक्ति से, जो प्रसन्न है और साइलेंस की शक्ति से, मतलब वो अपनी ओरिजिनलिटी से कनेक्टेड है।
1: साइलेंस हियर आल्सो मींस नॉट स्टेबल,
0: स्टेबल
1: अनडिस्टर्ब।
0: साइलेंस की शक्ति मींस माइंड इज नॉट डिस्टर्ब एट ऑल। वो शक्ति से चाहे बात बुरी होगी, संबंध बुरे अनुभव होते होंगे, लेकिन वो बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में धारण करेगी। मतलब कोई बुरे सीन में से भी कुछ अच्छा ढूंढ कर स्वयं में धारण करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। सपोज जैसे आपने कहा, इवन इतनी सी चीज कि अगर सपोज हमने किसी को चोरी करते हुए देख लिया, वो एक्चुअल चोरी ही कर रहे थे वो, राइट? तो सीन ठीक नहीं, सीन गलत है, लेकिन उस सीन में अगर आप स्टेबल रहे, आप स्टेबल रहे, तो आप कैसी थॉट क्रिएट करेंगे उस आत्मा के प्रति?
1: उठा के संभाल रहा होगा।
0: सपोज वो चोरी कर रहा है,
1: हाँ।
0: देखो लाइन क्या है कि गलत हो रहा है, वी हैव टू कन्वर्ट वेस्ट टू बेस्ट। गलत हो रहा है, बात बुरी है, कोई आपको स्टाफ चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है, अजम्पशन नहीं कि वो चोरी कर रहा था, एक्चुअल वो कोई चोरी कर रहा है, आपको वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट करना है।
1: ये ऐसा हुआ था इसके ऊपर, हाँ। कि हमारे यहाँ एक कुक थी, उसको आंटी

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन

0: ये कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स, कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माय हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वॉन्ट देन नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं क्रिएट इट।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा तीन दिन बिल्कुल नहीं, तो वो तीन दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू। आप सच बोलेंगे, देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: मस्ती की पाठशाला वेदांत, पंकज, आकाश, यश, आदित्य, सैंडी, वरदान, आदित्य प्रकाश, उन्नति। लेखिका सुधापुरी।
2: ओए क्या हो गया है सबको आज?
3: हैं? क्यों, क्या हुआ?
4: कुछ जल्दी से सोचो ना क्या खेलें? टाइम वेस्ट कर रहे हो सर।
5: टाइम वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, हंस नहीं रहे क्या? चलो इसको पकड़कर इसे गुदगुदी करके हंसाते हैं।
6: ओह नहीं नहीं।
4: अच्छा बस बस, अब नहीं कहूँगा ऐसे।
2: घर घर खेले जैसे हम बहुत पहले खेला करते थे, अब थोड़ा बड़ों की तरह खेलेंगे। झूठी मोटी रॉब जमा कर, या दादा दादी की एक्टिंग करके, या कुछ भी पड़ोसी के साथ पंगा, या जैसे पिकनिक।
4: मतलब जैसे कोई कॉमेडी शो करेंगे।
5: बस बस, जब देखो घर घर या स्कूल स्कूल।
3: स्कूल स्कूल कब खेला?
4: उस दिन खेला नहीं था जब हमने टीचर बन के मेक इन इंडिया को समझाया था, क्लास ली थी।
7: ओह वो तो हमारी मस्ती की पाठशाला थी।
8: पर कुछ भी हो मज़ा बड़ा आया था, दीदी ने खेल खेल में मज़े करा दिए थे।
9: खेल खेल में मज़े या खेल खेल में ज्ञान,
2: दोनों ही।
5: चलो एक रैप सॉन्ग गाते हैं ताली बजा बजा कर।
3: पहले लिख तो ले लिरिक्स क्या होंगे।
4: साथ साथ बनाएंगे, मजा आ जाएगा।
10: ठीक है शुरू करो।
7: क्या शुरू करो अंताक्षरी?
8: ये सब रैप सॉन्ग वगैरह हमारे अंताक्षरी का ही तो दूसरा रूप है।
9: हाँ हाँ बिल्कुल ठीक।
2: ये चांद सा रोशन चेहरा,
5: नदियों का रूप सुनहरा,
3: ये झील सी नीली आँखें,
4: आँखों पर ज्ञान का पहरा।
7: इन आँखों को समझाओ जी,
8: इन्हें हंसना सिखाओ जी,
9: हर पल सीरियस न रहकर
0: खिलखिलाकर हंसना बताओ जी।
10: चलो एक बार और, बड़ा मजा आया। ठीक है।
2: वाह भाई वाह।
5: क्या भाई क्या?
3: एक चीज मिलेगी।
4: क्या भाई क्या?
7: बहुत सारे पटाखे और फुलझड़ियाँ।
8: क्यों भाई क्यों?
9: त्योहारों के लिए और भाई क्यों?
2: पर पटाखों से होता है
10: प्रदूषण।
5: बस भाई बस।
3: क्या भाई क्या?
4: ज्ञान की बातें और क्या।
0: आज बहुत मस्ती में हो सब, चलो एक गेम खिलाती हूँ सबको। इसमें कोई गहरा ज्ञान तो नहीं, पर एक मजेदार एक्सरसाइज है।
10: हाँ दीदी हाँ, ठीक है।
0: देखो हम सब एक ही अक्षर से शुरू करके अधिक से अधिक सही मीनिंग वाली बातें बोलने की कोशिश करेंगे।
2: वो कैसे?
0: जैसे चंदू की चाची ने।
2: समझ गए, चंदू की चाची ने।

0: चंदू के चाचा को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाने का निश्चय किया।
1: समझ गए ना, एक ही अक्षर से जो जितनी देर तक सही मीनिंग वाली बात बोलेगा वही जीत जाएगा।
0: ठीक है, जैसे बंदर बैलून बदल बदल कर बुलबुले बनाते बनाते बोला, बड़ बड़ बड़ बड़ बड़ बड़ी बना रहे हो बड़हवास, बैठे बैठे बेहूदी बातें बना बना बल खा रहे हो।
2: अच्छा मेरी बारी। ट्विंकल ट्विंकल टमाटर ताल, टोमी टाटा कर टेम्पो, और टू व्हीलर पर टकलू टिम्पी के साथ टेटे टम टम करता।
3: जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारी बात का कोई मतलब नहीं बनता।
2: क्यों, बनता तो है।
0: जी नहीं, नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं होता।
1: अच्छा अब मैं करके दिखाता हूँ।
4: ठीक है, चलो चलो।
1: सीमा सामने से सतर्क हो समझ सारसों से स्नेह स्वर से सहलाते हुए सी सी स्वर समेत सरकती सरकती साथी को बुला लाई। ठीक है ठीक है, अच्छी कोशिश कर रहे हो तुम सब।
5: अब मैं।
4: ठीक है।
5: मटकती मैना मिली मुझे मटक मटक के मन से बोली, मीना और मेमने मचल मचल कर मन मारते नहीं, मान मर्यादा मदन मन को समझाते। मम मम
6: रुक रुक रुक रेलगाड़ी रुक, रमैया रमती हुई रहना रेन।
7: ये देखो मैं क्या लाया हूँ।
0: क्या है क्या है? आहा, गोलगप्पे।
7: हाँ मेरी मम्मी ने इसका पानी बनाया है।
2: पानी घर में बनाया है?
7: बिल्कुल, उन्हें हमेशा से मेरा बाहर से गोलगप्पा खाना पसंद नहीं था। कहती थी पता नहीं पानी साफ भी है या नहीं।
0: मेरी मम्मी भी खाने नहीं देती थी, पर इसके लिए शायद मान जाए, क्योंकि ये तुम्हारी मम्मी ने हम सब के लिए साफ पानी से बनाए होंगे।
7: और क्या, बल्कि मैंने भी सीख लिया है पानी बनाना, आज तुम सबको मैं सिखाऊंगा भी।
4: वाव, ग्रेट, मजा आ जाएगा, हम तो रोज बनाकर पिया करेंगे भाई।
7: बहुत आसान है, पहले कुछ पुदीने के पत्ते लो जैसे एक छोटी गड्डी के।
4: ठीक है।
7: स्वाद अनुसार हरी मिर्ची लो, जैसे ज्यादा तीखा चाहते हो तो तीन या चार, नहीं तो एक या दो।
4: अच्छा।
7: इनको अच्छी तरह से धोकर मिक्सी में पीस लो, फिर खटाई के लिए आमचूर पाउडर या कच्ची अम्बी डालकर पीस लो मिक्सी में, फिर इस मिक्सचर को ठंडे पानी में घोल लो, नमक अपने स्वाद अनुसार चख के ठीक कर लो बस।
3: और क्या मसाले पड़ेंगे इसमें?
7: मम्मी ने इसमें आधा चम्मच हींग डाली है और एक चम्मच काला नमक, ये सब हाजमे के लिए बहुत अच्छे हैं। बाद में एक चम्मच भुना हुआ जीरा पीस के डाला है।
1: अब इसे देखते ही रहोगे या खाओगे भी? आओ मैं खिलाती हूँ सबको। लाओ ये गोलगप्पों का पैकेट मुझे दे दो, ये भी मम्मी ने बनाया है क्या?
7: नहीं दीदी, ये बाजार से ऐसे ही मिल जाते हैं पैकेट में।
1: कई लोग तो इन्हें भी घर पर ही बना लेते हैं सूजी या आटे के।
7: देखो दीदी, मैं पत्ते के दोने भी लाया हूँ, सबको एक एक बांट देता हूँ, सब मिलकर खाते हैं।
1: आह, तुम्हारी मम्मी ने तो आलू और चटनी भी मिक्स करके दिए हैं।
5: लाओ मैं मदद करता हूँ, सब गोलगप्पे मैं थोड़ा थोड़ा भर देता हूँ, फिर दीदी इसमें पानी भर भर के एक एक को देती जाएंगी।
4: ठीक है पर दीदी तुम भी तो खाओ ना।
1: खा लूंगी, पहले तुम सब खा लो।
4: नहीं नहीं, आप भी साथ साथ लो।
1: अच्छा लेती हूँ लेती हूँ। देखो ध्यान से, ये वाला गोलगप्पा बहुत बड़ा है।
0: हाँ हाँ, कितना बड़ा मुंह खोलना पड़ रहा है।
2: हाँ, अरे अरे फूट गया सारा पानी।
1: आधा हाथ में ही आ गया।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। परिस्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: भरे दो प्याले जिनको तरसे दुनिया वाले। आई बात समझ में?
1: आई।

0: फांदे, पाप कीरे सूट पहन कर कैसा कूदे फांदे, पाप कीरे सूट पहन कर कैसा कूदे फांदे। कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे, अपने दुम में बांधे,
1: अपने दुम में बांधे।
0: अरे क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा, क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा। लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा, क्या समझे तुम नीचा। मेरा वो सब जाहिल बन गया, इस साला में तो साहब बन गया। Attention! Salam.

0: तेली
1: क्या गंगू तेली
0: तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा तुम सब काला लोग का किस्मत हम साला बदलेगा हम साला बदलेगा सीना देखो कैसा तन गया साला मैं तो साहब बन गया साहब बन के कैसा तन गया।

तो सफर लंबा तुझे होने वाली बरसात है, फिर साथ अकेली लड़की, फिर साथ अकेली लड़की, दिल कैसे कोई संभाले।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर।